बिन सजाती सुमिल बात न चलावे। जब तक कोई अपने भाव के अनुकूल हृदय न मिले तब तक चर्चा ना की जाए, इस रस की तो कदापि न की जाए। सेवक जी महाराज कहते रसिकन सो प्रीतम कहे, रसिक हृदय के सन्मुख अपने हृदय की बात कहनी चाहिए। अनेक भांति भजन भक्ति के भेद तैसे ही भक्त हैं, जैसो जाको भाव है तैसी सिद्धि होए, ताते औरन सो प्रयोजन नाही। यही मैं आपको निवेदन कर रहा हूं भाई, जैसे जिसकी भावना है। कबीर सिखाते हैं आर्ट ऑफ लिविंग, जीवन जीने की कला। राम झरोखे बैठ के

अरे करेगा सो भरेगा, तू क्यों होत उदास। कहते तहां बखानो है तोए बिगानी कापरी तू अपनी निबेर। अभी तो अपना ही कार्य नहीं हुआ। रामकृष्ण परमहंस कहते थे पहले आत्म कल्याण कर ले, पहले अपना कल्याण कर ले, तत्पश्चात ईश्वर की आज्ञा हो तो धर्म का उपदेश करें, उसको माया से लिप्त होने का भय नहीं होगा, नहीं तो निश्चित रूप से स्खलन होगा। हो ही जाता है भाई, यही भगवान की माया का प्राबल्य है। आपको अपने छोटे से अनुभव से कहूं, माया का प्राबल्य क्या है कि वो अनुचित को अनुचित लगने ही नहीं देती, यही तो माया है। जो है सो दीसत नहीं, जो दीसत सुनाई। आपको लगेगा कि उचित है वो अनुचित होगा, और आप उचित समझकर बस करते चले जाएंगे, यही भगवान की माया है। वो हित और अहित का, उचित और अनुचित का, सत और असत का जो भेद है वो आपकी दृष्टि के सामने प्रकट ही नहीं होने देती। और माया क्या है, यही तो है। संसार अपना लगता है, प्रभु दूसरे लगते, यही तो माया है और क्या है। बार बार साधु आपसे कहता है, संत आपसे कहता है, गुरुजन आपसे कहते हैं, कहां समझ में आती, यही भगवान की माया है। पाए रतन चीनो नहीं दीनों करते डार, ये माया श्री कृष्ण की मोयो सब संसार। तो कहते हैं आपको यो चाहिए औरन सो मत्सरता छाण अपनो रस लिए रहे, और याही रस के उपासकन सो अंतर खोल संग करे। और यहां मैं फिर कहूंगा, भगवान ने नवदा भक्ति के उपदेश में बल देकर ये बात कही है कि सुपने हूं नहीं देखाऊं पर दोषा। एक और बात मैं विनम्रता पूर्वक कहूं आपसे, साधक को जितनी हानि परदोष दर्शन से होती है उतनी और किसी भी वृत्ति से नहीं होती। परदोष दर्शन ही है जो साधक के मन चित्त को कलुषित कर देता है, भजन के अनुकूल नहीं रहने देता। इससे बचने का तो भाई भरसक प्रयास करना चाहिए, और प्रयास क्या, ऐसा तो करना ही है। यही बात अपने और अंतर में रखिए, ऐसा तो करना ही है। ये और भजन साथ साथ नहीं रह सकते, आप में दोष दृष्टि ना हो। सुपने हूं नहीं देखूं पर दोषा। श्री व्यास जी के वचन, व्यास विवेकी भगत सो दृढ़ कर की जय प्रीत, अविवेकी को संग तज यह भक्त की रीत। व्यास जी कह रहे बिना कुछ निंदा स्तुति के प्रपंच में पड़े, जो अनुकूल ना हो दूर हो जाइए, जो अनुकूल हो उसका संग करिए, यही विवेक है। तो विवेकी कहा, अब विवेक बताते हैं क्या है। विवेकी तासो कही है, जो भली गहे बुरी छाणे। अविवेकी बोले भली बरी कछु ना समझे, सब गहे सब छाणे। अब आज तो संसार में ही रमे हैं हम, जैसे किसी का प्रवचन सुन लिया अगले दिन वृंदावन आ गए, बोले अब वृंदावन में ही रहेंगे। और इत व्यवहार ना उत परमारथ, और बीच ही बीच जन्म गमायो। इसीलिए मैं कई बार आपसे निवेदन कर देता हूं, भाई जहां हो वहीं से मार्ग बनाना आरंभ करो, अपने हृदय को पात्र बनाना आरंभ करो। विश्वास रखो जिस दिन आप पात्र हो जाओगे, प्रकृति एक क्षण भी आपको वस्तु से वंचित नहीं रखेगी, क्योंकि ये द्वार तो कभी बंद हुआ ही नहीं, खुला ही है। जीव विमुख है, ठाकुर जी तो सदा सन्मुख है, जीव विमुख है। अपने आप को पात्र बनाना आरंभ करिए। और जो कुछ देर पूर्व आज चर्चा हुई, जीवन इसीलिए रचा है रचनाकार ने, ये संसार इसीलिए रचा है। सीखिए समझिए, चोट भी लगती है तो वो आपको सुंदर बनाने के लिए, सुघड़ बनाने के लिए लगती है। बिना पिटे कोई पहलवान भी नहीं बनता है, चोट भी खानी पड़ती है, वो भी आवश्यक है। बस इसी प्रकार आगे बढ़िए। तो कह रहे अविवेकी भली बुरी कछु ना समझे, सब गहे सब छाणे। इसी को मैं कुछ देर पहले संतुलन कह रहा था, जैसे ही अनुपात बिगड़ेगा वैसे ही स्वाद बिगड़ेगा। आप दाल रोटी भी बनाते हो, दाल में भी नमक का अनुपात बिगड़ जाए स्वाद बिगड़ जाएगा कि नहीं। ऐसे ही जीवन है, इसमें प्रत्येक वस्तु का एक अनुपात है। अनुपात में रहेगी वस्तु तो आपको जीवन का स्वाद आएगा, जीवन में सुख मिलेगा, नहीं तो स्वाद बिगड़ जाएगा। अच्छा एक और बात, व्यर्थ यहां पर कुछ भी नहीं है, निरर्थक यहां पर कुछ नहीं है भाई, सबकी उपयोगिता है। इसीलिए मैंने कहा कब लेना है, क्या लेना है और कितना लेना है, यह सीख लीजिए। आपको कब लेना है, क्या आपके लिए नहीं है, सब अच्छी वस्तुएं भी आपके लिए नहीं होंगी भाई।
एक वस्तु किसी के लिए गुणकारी होती है, वही वस्तु किसी के शरीर को हानि पहुंचा देती है। अपनी अपनी प्रकृति है। और सबसे महत्वपूर्ण, आपको कितना लेना है। यहां पर आकर व्यक्ति अपने अंतर्मन को दूषित कर बैठता है, वो आवश्यकता से अधिक चाहता है। और आवश्यकता से अधिक तो भाई जल भी पी लो तो वह आपको रोगी कर देगा। एक तरफ कहते हैं जल ही जीवन है, पर आवश्यकता से अधिक तो जल भी पी लिया जाए तो आपको रोगी बना देगा, शरीर को हानि पहुंचाएगा। जीवन की आवश्यकता निर्धारित करनी चाहिए शास्त्र और गुरुजनों की आज्ञा में रहकर। फिर कहते हैं ताते सजाती सो मिल बात जुगल बिहार की करे बिचारे तिनकी जूठन खाए चरणोदक पीवे बिजाती को परस सुना करे। जो अपने भाव के अनुकूल हैं, जो अपने भाव के साधक हैं और जो आपके भाव के ही सिद्ध जन हैं, शुद्ध जन हैं, रूपदास जी कहने उनका संग करें, उनके संग बैठकर प्रियालाल की चर्चा करें, वार्ता करें, चिंतन करें, तिनकी जूठन खाए चरणोदक पीवे बिजाती को परस होना करें। और जो अपने भाव से साम्य नहीं रखता, जिसके हृदय में आपके जैसा भाव नहीं है, बोले उसका तो संग त्याज्य ही है, भरसक प्रयास करना चाहिए ऐसे संग से दूर रहने का। और वृंदावन चंद एक प्रीति ही माने, कोटि भांति भावे अपरस रहो भावे सपरस रहो, अनेक आचार करो पर उनको एक प्रीत की सच्चाई सो काम है। हमारे प्रिया लाल को न तो किसी व्रत उपवास से कोई लेना देना है, न अपरस सपरस से, वो तो एक प्रीति माने। ध्रुवदास जी कह रहे हैं कुछ भी करो, विविध भांति व्यंजन करो पर लौन बिना सब फीक। प्रेम ही इष्ट है भाई, प्रेम ही आराध्य है, प्रेम ही प्राप्य तत्व है। अब जब ध्रुवदास जी ने यह कहा कि भाई चाहे अनेक आचार कर लो, तब एक ने कही कि आचार ना करें, अरे नहाने धोने की आवश्यकता ही नहीं है क्या। तो ध्रुवदास जी कह रहे हैं थोड़ो बहुत करें, सदाचार के लिए करें। देखो आपके मन में आग्रह ना हो जाए किसी भी बात को लेकर। एक संत थे, विरक्त थे, अब उनका नियम था कि वो पत्तल में ही पाते हैं भोजन। एक बार किसी के यहाँ जाना हुआ, उनका रात्रि के भोजन के लिए उन्होंने बुलाया था, गांव में वो लोग रहते थे। अब उनके मन में भाव कुछ और था, संत भगवान पधारे हैं तो जो उत्तम से उत्तम व्यवस्था थी वो उन्होंने उनके लिए की। चांदी के बर्तनों में उन्होंने भोजन परोसा। अब वो संत जी कहने लगे, बोले हम तो भाई पत्तल में ही पाते हैं। अब पत्तल कहाँ से आए, पत्तल उस समय उपलब्ध नहीं हो रही। वो जो महात्मा है वो अपना आग्रह छोड़ नहीं रहे। तो ऐसा आग्रह मन में ना हो, किसी भी स्थिति को लेकर आग्रह मन में ना हो। महर्षि एक बार श्री उड़िया बाबा जी महाराज ने श्री अखंडानंद जी महाराज से पूछा, चर्चा हो रही थी कि एक दुशाला रखा है, एक फटा कंबल, एक विरक्त को क्या ग्रहण करना चाहिए। श्री अखंडानंद जी महाराज ने तत्काल उत्तर दे दिया, बोले निश्चित रूप से फटा कंबल उठाना चाहिए। उड़िया बाबा हंस दिए, बोले नहीं, बोले जिसके लिए फटा कंबल और दुशाला एक से है ना, वो विरक्त है। उसके हिस्से जो आ जाए वो विरक्त है। कहने वाला बड़ी सुंदर बात कहता है, बोले कि मर्जी हुई गर यार की तो घर छोड़कर बैठे, मर्जी हुई गर यार की घर छोड़कर बैठे, जिधर मोड़ दिया मुख वहीं मोड़ कर बैठे, गुदड़ी जो उड़ाई तो वही ओढ़ कर बैठे, अब दे दिया है शॉल तो फिर शॉल में खुश हैं, और पूरे हैं वही मर्द जो हर हाल में खुश हैं। बोले ये वो विरक्त है, इसके मन में आग्रह ना हो। आग्रह हृदय को कठोर करता है भाई, आग्रह से हृदय में ग्रंथि पड़ जाती है। प्रभु की इच्छा से, प्रभु के विधान से जो मिले। रांका बांका जी की कथा बड़ी प्रेरक है, बड़ा अद्भुत प्रसंग है। कहते हैं कि भक्ति उनकी ऐसी अद्भुत, और उनकी जो आर्थिक स्थिति

नामदेव जी वृक्ष की ओट में खड़े थे, बोले देखना। ठाकुर जी ने कहा, बोले हम आपसे विनती करते हैं। राका माका कहने लगे, अब तो सच में ही कलयुग आ गया। बोले क्यों? बोले मायापति भी अपने भक्तों को माया ही देने का प्रयास कर रहे हैं, माया में ही उलझाने की चेष्टा कर रहे हैं। बोले प्रभु, यदि आप हमें ये देना चाहते हैं तो हमारी आपसे विनती है, आप पुनः यहाँ आने का कष्ट ना करें। नामदेव जी को तब विश्वास हुआ कि जाही न चाही कबहु कछु, बस तुम संग सहज स्नेह। टाका बाका कहने लगे, प्रभु आप हमें दरिद्र समझते हैं जो देने के लिए आए, हमारे हृदय में ये जो आपका प्रेम उच्छलित है, हम स्वयं को सर्वश्रेष्ठ जानते हैं, सर्वोपरि समझते हैं। तब नामदेव जी ने देखा, वही राका बांका एक दिन जंगल में लकड़ी बीन रहे थे, राका आगे आगे चल रहे थे, उनकी पत्नी बांका वो पीछे पीछे चल रही थी। आगे देखा मोहरों की एक थैली रखी है, राका फटाफट से उस पर मिट्टी डालने लगे। बांका पीछे से आई, उन्होंने देख लिया कि ये क्या कर रहे हैं। उन्होंने कहा, क्या करते हैं आप? बोले नहीं नहीं कुछ नहीं। मुस्कुराते हुए कहा, बताइए क्या कर रहे थे आप? बोले यहाँ ये स्वर्ण रखा था और मुझे लगा कि इसको देखकर तुम्हारे मन में कहीं कोई अन्यथा भाव न आ जाए तो मैं इस पर इससे पहले कुछ बोलते। बोले इसीलिए मिट्टी पर मिट्टी डालने का प्रयास कर रहे थे। अरे पराया धन है हमारे लिए तो वैसे भी मिट्टी है। तब राका ने कहा, आप सच में बांका है, आपका भक्ति का भाव सच में बांका है, निराला है। मेरे लिए तो अभी स्वर्ण और मिट्टी में भेद है, पर आपके लिए तो स्वर्ण और मिट्टी में भेद भी नहीं रहा। तो ध्यान रखना भाई, कभी कभी आचार के नाम पर हमारे हृदय में आग्रह हो जाता है और कभी कभी तो हम किसी का हृदय और दुखा बैठते हैं अपने आग्रह और दुराग्रह के कारण। ऐसा ना हो, ध्यान रखना, अंतिम भावना जो प्रभु तक पहुंचेगी वो प्रेम ही है, वो आपके हृदय की विशुद्ध प्रीति ही है। अनंत अनंत भक्तों ने भगवान को भोग लगाया होगा, लगा रहे हैं और लगाते रहेंगे, पर याद किसको रखा जाता है? जूठे फल शबरी के खाए, बहुविध भोग लगाई और दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग विदुर घर खाई। स्मरण तो इन्हीं का किया जाता है। जब श्री जी की सेवा पाक करें तहां आचार करें, बोले जब श्री जी के लिए रसोई करें तो शुद्धता का ध्यान रखें, और फिर भी कह रहे हैं जैसो संभव है, जहां तक संभव हो सके। अब बहुत सारी माताएं कई बार लिखकर प्रश्न पूछती हैं कि भाई घर में हमारी रसोई में तो सब प्रकार की वस्तु बनती है, हम किस प्रकार ठाकुर जी की सेवा करें? आपके ठाकुर जी आपके हैं, आप आपके ठाकुर जी हैं, उनके बीच में न कोई आता है और न किसी को आने की कोई आवश्यकता है, और ना ही आप अनावश्यक रूप से किसी को लाइए, जो आपसे संभव हो। बस प्रेम की कमी ना होने पाए, भाव की कमी ना होने पाए। प्रसाद ही कोटि, फिर कहते हैं अपने प्रसाद पाएवे को बहुत आचार न करें। प्रसाद ही कोटि आचार को स्वरूप है, भोग लागे पाछे बहुत आचार उचित नाही। शास्त्र हूं मैं कही है, अति आचार अनाचार समान है। रांधे अन्न विषय कछु ना माने, जो भोग श्रीजू को लागे हो तो सब बराबर, कहा काचो कहा पाको, के लिए आचार करें। मन में विश्वास ना धरे कि यही ते कारज सिद्ध होएगो। यहाँ कहने का तात्पर्य ये है कि भाई आचार भी करे कब? जब प्रभु को वस्तु निवेदन करनी हो। जब श्री ठाकुर जी को भोग लगा, उसके बाद जब स्वयं प्रसाद पाए तो बोले बहुत अधिक आचार विचार का ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं है। प्रसाद ही कोटि कोटि आचार का स्वरूप है। कोटि कोटि एकादशी महा प्रसाद को अनेक अनेक आचार के पालन करने का जो फल है, हो धन धन।

0: वृंदावन।
1: कह रहे रांधे अन्न विषय कछु ना माने, ठाकुर जी को भोग लगा उसके बाद बहुत अधिक विचार करने की आवश्यकता नहीं है, उसमें वस्तु बुद्धि भी ना करिए, कच्चा पक्का भी देखना नहीं चाहिए, ऐसा भी नहीं करना चाहिए। बहुत लोग तो मैं देखता हूँ जाड़े के दिन होते हैं, ठाकुर जी को भोग लगाया फिर वही प्रसाद कुछ देर के बाद पाते हैं तो उसे फिर पुनः चढ़ा देते हैं चूल्हे पर, ऐसा करना अनुचित है। प्रसाद के साथ ऐसा नहीं किया जाना चाहिए, प्रसाद को प्रसाद स्वरूप में ग्रहण करना चाहिए।

प्रसाद ठंडा गर्म नहीं है, प्रसाद कच्चा पक्का नहीं है, प्रसाद ऐसा वैसा नहीं है, प्रसाद प्रसाद है। प्रसाद का जो परिणाम है ना, सब सुख एक सीथ के स्वाद, वो तो प्रसाद को प्रसाद रूप में पाने पर ही है। आप प्रसाद को वस्तु समझ कर पाओ तो उसका वो फल नहीं है, उसका वो प्रसाद नहीं है। प्रसाद का भी तो एक प्रसाद होता है ना, प्रसाद का प्रसाद है प्रभु के चरणों का अनुराग और दृढ़ होता चला जाए। अरे भक्त तो भगवान के प्रसाद के बल पर माया को विजय करने की बात करते हैं। उद्धव जी श्री ठाकुर जी से कहते हैं एकादश स्कंध में, ठाकुर जी ने कहा तुमको भी हमारी माया से डर लगता है? उद्धव जी ने कहा हम आपका प्रसाद पाते हैं, आपकी माया हमारी ओर दृष्टिपात भी नहीं कर सकती। ये प्रसाद की महिमा है, पर प्रसाद को प्रसाद जानकर पाया जाए। फिर कह रहे वैष्णव तो सदाचार के लिए आचार करे। हाँ, जब आप ये देखें कि आपका अनुसरण कोई और कर रहा है तो जहां तक संभव हो सके, और वैसे भी मुझे लगता है भाई शुद्धता स्वच्छता पवित्रता ये तो एक साधक के जीवन में होना ही चाहिए, पर ये मन में विश्वास नहीं रखना चाहिए कि यदि हम बहुत शुद्ध और स्वच्छ रहेंगे और कोई कम रहेगा तो हमारा कार्य पहले सिद्ध होगा, उसका नहीं। हो सकता है उसके हृदय की प्रीति हमसे अधिक गाढ़ी हो। अब कर्मा बाई तो जूठे दातुन से ही भोग हिलाकर जगन्नाथ जी को पवा देती है, शबरी चक चक कर फल देती है, लक्ष्मण जी नहीं खाते, रघुनाथ जी प्रेम से आरोगते। श्री जी की टहल कोटि कोटि आचार को स्वरूप है। यहां ध्रुवदास जी कह रहे भाई सब साधनों की सिद्धि क्या है,

प्रिया जी की जो टहल है, जो सेवा है, ये सब पुण्यों का फल है, सब साधनों की सिद्धि है, और मुझे लगता है यही परम प्रसाद है। त्रिजी की सेवा प्रसाद है। बहुत आचार ते हियो अति कठोर हो जाई, हे मैं आपसे कह रहा था, बहुत आग्रह से हृदय कठोर हो जाता है, ऐसा ही करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। अच्छा, ठाकुर जी को ऐसा हृदय अच्छा भी नहीं लगता, ठाकुर जी को ऐसा हृदय अच्छा नहीं लगता जो पहले से ही सोच कर आए ऐसा करेंगे वैसा नहीं करेंगे। ठाकुर जी को कैसा हृदय अच्छा लगता है? बोले जैसा तुम चाहोगे वैसा करेंगे। तभी हमारी भोली सखी गाती है,

ऐसा होना है ना हमें वैसा होना है, जैसा आप चाहेंगे वैसा होना है, जैसा आप चाहें। जय विधि तोहे अति प्यारी लागो, इसे कहते हैं मन और बुद्धि का समर्पण। ये भजन अति कोमल है और कोमल कठोर एक संग न बने। इसीलिए मैंने आपको कहा था भाई प्रयास करो आपके मुख से कठोर वचन ना निकले, रूखी बात मत कहिए किसी से। रूखी बात का परिणाम प्रतिक्रिया प्रकृति क्या देगी, एक बात तो निश्चित है, सर्वविदित सिद्धांत है, आप जो देते हैं वही आपके पास लौट कर आता है। आप कठोरता का प्रसार करेंगे, कठोरता आपके पास लौट कर आएगी, हृदय कठोर हो जाएगा, ठाकुर जी के भजन के योग्य नहीं रहेगा। तभी संत बल देकर कहते हैं ऐसी वाणी बोलिए मन

0: फल हो।
1: और मुझे लगता है मीठा बोल ये तो ऐसा दान है जो प्रत्येक व्यक्ति दे सकता है। सम्मान के दो शब्द तो प्रत्येक व्यक्ति दे सकता है। हमारे महाप्रभु जी का गुण है, हमारे महाप्रभु जी का ये गुण है, सबको मान देते, सभी मान प्रद आप अमानी। यही महापुरुषों का गौरव होता है भाई, सभी मान प्रद आप अमानी। अब साधारण मनुष्य जीवन भर इसी खींचातानी में मर जाता, हमें सम्मान नहीं मिला, हमें प्रेम नहीं मिला, हमें सम्मान नहीं मिला। मैं कहता हूं प्रेम बांटिए, प्रकृति का कण कण आप पर प्रेम की वर्षा करेगा। आप जहां जाएंगे आपको प्रेम ही मिलेगा, प्रेम ही मिलेगा। प्रेम दीजिए, बांटिए, सम्मान दीजिए, प्रकृति आपको सम्मानित करेगी। और मैं एक और बात आपको निवेदन करूं, जिसको समय सम्मान देता है वस्तुतः सम्मानित वही है, समय जिसका सम्मान करता है। और समय किसका सम्मान करता है? जो समय का सम्मान करता है। समय का सम्मान क्या है? सूत्र दे रहा हूं मैं आपको। समय का सम्मान क्या है? जीवन का आदर करना, यही समय का सम्मान करना है। और जीवन का आदर क्या है? कि जीवन का सदुपयोग करिए। जीवन का सदुपयोग क्या है? प्रसन्नता का प्रसार करिए, जिसके लिए प्रभु ने आपको मनुष्य बनाकर इस सृष्टि में भेजा है, इसीलिए आए हैं आप यहां पर। अपने जीवन के अर्थ को, मूल्य को पहचानिए। जो स्नेही भजनीक हैं तिनके घटबड़ क्रिया में मन न दे, आपको बड़ी हानि है, बड़ो अपराध है। अच्छा एक और बात यहां मैं आपको कहूं, साधु संत जैसे भी भजन करें, बस उनकी जय हो, जय हो, जय हो। ध्रुवराज जी कह रहे हैं उनकी घटबड़ क्रिया में मन न दे, पता नहीं उनके हृदय की, उनके भाव की पहुंच कहां तक है। अभी एक दो दिन पहले मैंने आपको सुनाया, गंगा किनारे लेटे वो साधु, एक युवान साधु कहता है, अरे 10 बज गई अब तक सो रहे हो। अब खबर नहीं वो सो रहा है कि भाव समाधि में है। अब क्या जरूरी है कि ऐसे ही बैठकर ही भजन किया जाए? और मैं तो कहता हूं किसी की भी, साधु की क्या, मैं कहता हूं किसी की भी घटबड़ क्रिया में मन देना ही क्यों है? कौन भला करता है, बुरा करता है? मैं कहता हूं इसका विचार आपको मुझे करना ही क्यों है, इसकी आवश्यकता क्या है? न कहिए न सुनिए। और संत हो फिर तो, नानक कहते हैं संत की निंदा नानका बहुर बहुर अवतार। संत हो तो फिर तो बहुत सावधान रही, न कहिए न सुनिए। कहीं ऐसे स्थान पर कुछ ऐसा होता हो उठकर चल दीजिए, सम्मिलित मत होइए। मौन रहना भी सम्मिलित होना है, ऐसा मत करिए। देवदास जी कह रहे हैं आपको बड़ी हानि है, बड़ो अपराध है। कह रहे हैं कोटि कोटि आचार उनके एक निमेश के रस भजन पर वार डालिए। अब देखने को तो रैदास जूता ही गांठ रहे थे, गोरखनाथ आए, प्रसाद का जल दिया, नहीं पिया। वो जल गया कहां? सिंध, कबीर जी की बेटी ने पिया, बड़े भाव से उसको ग्रहण किया, शिरोधार्य किया। गोरखनाथ जब मुल्तान पहुंचे तो कमाली ने एक क्षण में गोरखनाथ का वो खप्पर भर दिया जो बड़े बड़े सिद्ध नहीं भर पाते थे। तो गोरखनाथ ने पूछा ये कमाल किसका है? मैंने वो पानी जो आप छोड़ आए थे उसी पानी का कमाल है, वो जो आप छोड़ आए थे ये उसी पानी का कमाल है। तो दुर्दास जी यहां यही कह रहे हैं, अरे तिनके एक निमेश के रस भजन पर और सुख कोटि कल्पन के वार डारिए। ब्रह्मादिक सनकादिक या बात में भूले हैं और उनकी कौन चलावे। ब्रह्मा जी को भूल हो गई, ब्रज के ग्वाल वालों को साधारण समझ बैठे, साधारण समझ लिया। तो कह रहे ब्रह्मादिक सनकादिक या बात में भूले हैं औरन की कौन चलावे, जो यह बात मन में न आवे कह रहे तिन सब अनाचार किए। बोले किसी संत में दोष देखा तो उसके कोटि कोटि आचार बोले धूल में मिलते हैं, वो सब अनाचार है। भक्त द्रोह को जतन नहीं होत वज्र की लीक। देखो भाई यहां पर केला की कौपीन धारण करने वाले ने भी भगवत प्राप्ति की है और चक्रवर्ती सम्राट के पद पर बैठे महाराजा अम्बरीश ऐसे भगवत प्राप्त महापुरुष है कि भगवान उनके लिए कहते अहम भक्त पराधीना। यहां उन्होंने भी भगवत प्राप्ति की है। इसलिए भाई जिस रंग में रहो, जिस ढंग में रहो, जिस संग में रहो, बड़ी बात है। निर्मल मन जन सो मुहि पावा, प्रभु का भजन होता रहे, हरि का स्मरण ना छूटे, प्रभु का स्मरण ना छूटे। जो स्नेही भक्त हैं तिनकी पदरज कोटि आचार है, साधन सिद्ध तीर्थ है। श्री गुसाई कृष्णदास जी को पद साधु चरण रज सब सुख साधन, यह मेरे मत काज सुधी को। और श्री व्यास जी को पद साधु चरण रज मांज व्यास से कोटिक पतित समाद। कल ही प्रसंग मैंने आपको निवेदन किया था श्री शबरी जी का, कि जो जप से नहीं हुआ, तप से नहीं हुआ, योग सिद्धियों से नहीं हुआ, पुण्यों से नहीं हुआ, ज्ञान ध्यान से नहीं हुआ, विद्या से नहीं हुआ, वो कार्य शबरी की चरण धूल से हुआ। ये इसी के प्रतिष्ठा भगवान ने की कि साधु चरण रज मांज व्यास से कोटिक पतित समाद। और श्री गोसाई कृष्णदास जी तो कह

0: घर रमी रहे।
1: अनंत लीला अवतार अनेक दिन की ऐश्वर्यता को पारावार नहीं, ऐसे ही नाना प्रकार के भक्त हैं। श्री कृष्ण लीला तीन प्रकार की, तीनों में भेद भक्त बहुत हैं। जहां जहां जाको मन लाग्यो ते सब नीके हैं घट को नाही। दुर्गदास जी कहने भाई ठाकुर जी के अनेक अनेक रूप हैं, अनंत रूप रूप आए, हरि अनंत हरि कथा अनंता, ऐसी अनंत अनंत प्रकार के भक्त हैं। और ध्रुवदास जी कहते हैं श्री कृष्ण की ही लीला अनेक प्रकार की है, द्वारिका लीला है, मथुरा लीला है, ब्रज लीला है, उसमें भी सख्य लीला है, वात्सल्य लीला है, माधुर्य लीला है। पर ध्रुवदास जी कह रहे हैं भाई जहाँ जहाँ जाको मन लागे है ते सब नीके हैं, सब भले हैं, घट को नाही। कभी भी अपने मन में भावना है कि हम श्रेष्ठ भजन करते हैं, जो प्रभु का भजन करता है, जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का हो।
2: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये स्टेशन रेडियो महारानी है।

0: 69.6 FM
1: कुछ हटके।
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।
4: रेडियो महारानी पर आप सुन रहे हैं कृष्ण वाणी।
5: यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मनाम सृजाम्यहम् परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्थात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, मैं प्रकट होता हूँ, मैं आता हूँ जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं आता हूँ, जब जब अधर्म बढ़ता है तब तब मैं आता हूँ, सज्जन लोगों की रक्षा के लिए मैं आता हूँ, दुष्टों का विनाश करने के लिए मैं आता हूँ, धर्म की स्थापना के लिए मैं आता हूँ और युग युग में जन्म लेता हूँ।

0: दिन आप अपनी हंसी के मालिक खुद बन जाएंगे। उस दिन के बाद आपको कोई रुला नहीं सकता। रेडियो महारानी पर आप सुन रहे हैं लाइफ कोच और मोटिवेशनल स्पीकर सोनू शर्मा जी के विचार।
1: दुनिया की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट क्या है? अलग अलग लोगों से अलग अलग बात सुनेंगे, अलग अलग लोग अलग अलग जवाब देंगे। दुनिया में आगे बढ़ने के लिए, अमीर होने के लिए, पैसा बनाने के लिए कहां इन्वेस्ट करें? कुछ लोग आपको बोलेंगे इन्वेस्टिंग इन प्रॉपर्टी विल गिव यू द बेस्ट रिटर्न्स। नीति आयोग भी कहता है कि 2030 तक आते आते $1 trillion का ये बिजनेस होने वाला है और जीडीपी में 13% कंट्रीब्यूट करने वाला है। तो मैक्सिमम लोग आपको, पुराने लोगों से मिलिए तो बोलेंगे प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करिए, वो आपको बेस्ट इन्वेस्टमेंट है और वो आपको बेस्ट रिटर्न देती है। कुछ और लोगों से मिलिए, वो कहेंगे नहीं नहीं नहीं, स्टॉक्स में लगाइए, बॉन्ड्स में लगाइए, इंश्योरेंस में लगाइए, म्यूचुअल फंड्स में लगाइए, ये आपको बेस्ट रिटर्न देते हैं। कुछ लोग और आएंगे, कहेंगे नहीं नहीं नहीं, स्टॉक भी नहीं, बॉन्ड भी नहीं, इंश्योरेंस में नहीं, सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट है गोल्ड एंड सिल्वर। आज से 60 साल पहले गोल्ड इतने का था, आज इतने का है, उस समय लिया होता तो आज रईस होते। कुछ लोग गोल्ड और सिल्वर के लिए ऐसी ऐसी बात बोलेंगे। कुछ लोग कहेंगे नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं, इन्वेस्टमेंट इन कमोडिटीज विल गिव यू द बेस्ट रिटर्न्स। अलग अलग लोग इन्वेस्टमेंट की अलग अलग परिभाषाएं आपको बताते हैं कि पैसा बनाने के लिए कहां निवेश करना जरूरी है। आखिरी में कुछ बुद्धिजीवी लोग बहुत शानदार बात आपसे करेंगे, वो कहेंगे सब छोड़ दीजिए, सब बेकार की बात है, इन्वेस्टिंग इन चिल्ड्रन एजुकेशन विल गिव यू द बेस्ट रिटर्न्स। हाँ बिल्कुल ठीक है कि बच्चों की पढ़ाई में निवेश करने से आपको बेस्ट रिटर्न्स मिलते हैं। साथियों, आज मैं सोनू शर्मा, इंस्पिरेशनल स्पीकर, लीडरशिप कंसल्टेंट एंड लाइफ कोच, आपको बता देना चाहता हूं कि कहां इन्वेस्टमेंट आपको कंपाउंडिंग रिटर्न देता है। मैं जो बात आपसे करने वाला हूं वो धमाकेदार बात है। वो बात आपको बताएगी कि कैसे गरीब इंसान अमीर हो सकता है, कैसे कुछ लोग शीर्ष पर पहुंचे हैं, कैसे कुछ लोगों ने जिंदगी में वो फतेह हासिल की है जो बहुत सारे लोगों के लिए महज एक सपना है। मैं आपको अपना इन्वेस्टमेंट का बेस्ट ऑप्शन दे रहा हूं कि कहां निवेश करना चाहिए। सुनना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिरी तक देखिए। आज मैं आपके जिंदगी के कुछ अनछुए पहलुओं पे भी बात करूंगा, कहां इन्वेस्टमेंट आपको बेस्ट रिटर्न देती है। मैं बताता हूं, इन्वेस्टिंग इन योरसेल्फ विल गिव यू द बेस्ट रिटर्न। खुद के अंदर निवेश करें, अपने अंदर इन्वेस्टिंग कहां होनी चाहिए, सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत आपको है। इन्वेस्टिंग इन योरसेल्फ, आपको खुद को इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, ना स्टॉक, ना बॉन्ड्स, ना प्रॉपर्टीज, ना चिल्ड्रन एजुकेशन। लेडीज एंड जेंटलमैन, आपके अंदर इन्वेस्टमेंट की बेहद आवश्यकता है। इन्वेस्टिंग इन योर नॉलेज, योर स्किल्स विल गिव यू द कंपाउंडिंग रिटर्न्स। अगर आप ये जानते हैं पर कर नहीं रहे तो मान लीजिए आप नहीं जानते, अगर आप जानते हैं और कर नहीं रहे तो मान लीजिए आप नहीं जानते हैं। और आखिरी में, हम मिडिल क्लास फैमिली के लोग अपना सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र चलाते हैं, सबसे बड़ा वेपन चलाते हैं, जानते हैं क्या लिखता हूं, ये सब किस्मत का खेल है भाई, सब किस्मत का खेल है। वो रईस बन गया, उसकी किस्मत बहुत अच्छी थी। देखो सोनू शर्मा को 10वीं में मात्र 50% नंबर थे, क्या जबरदस्त नोट छाप रहा है। साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूं, यू नीड अ मेंटर इन योर लाइफ, बिकॉज सक्सेसफुल पीपल बिलीव इन कोचेस व्हाइल अनसक्सेसफुल पीपल नोज एवरीथिंग। हमें सब पता है, नहीं चलता, हमने दुनिया देखी है, यह भी नहीं चलता। आपका तजुर्बा आपको जहां तक ला सकता था ले आया, आगे का सफर आपके तजुर्बे से नहीं, नॉलेज से होगा। आज का वीडियो आखिरी तक देखें, आपकी जिंदगी बदलने के लिए यह 12-15 मिनट का वीडियो काफी है। आज मैं आपको वो 5 सफल सिद्धांत बता रहा हूं जिन्होंने कुछ लोगों को शीर्ष तक पहुंचाया। ऐसी पिटारा आपके सामने आज खोलने वाला हूं जो ना आपने सुना होगा ना आपने सोचा होगा। आज की वीडियो को अगर आपने आखिरी तक देखा तो मैं दावा दे सकता हूं कि आपकी लाइफ सुपर सेट हो सकती है। 5 सक्सेस प्रिंसिपल आपको बताना चाहता हूं। सबसे पहले ध्यान से सुनिए, गौर से सुनिए, क्या करने से सफलता मिलती है। प्रिंसिपल नंबर वन बहुत शानदार है। क्या? नंबर 1, स्टार्ट योर करियर एज अर्ली एज पॉसिबल। बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है गाइस, बहुत सफल सिद्धांत मैं आज आपको दे रहा हूं। स्टार्ट योर करियर सुपर अर्ली, जितनी जल्दी हो सके अपना करियर स्टार्ट कर डालिए। वॉरेन बफेट ने अपना करियर 11 साल की उम्र में चालू किया। पहली इन्वेस्टमेंट उन्होंने 11 साल की उम्र में की, दुनिया के टॉप 5 रईस लोगों में से हैं। इसमें भी वो एक बात कहते हैं कि मुझे और जल्दी शुरू करना चाहिए था। जानते हैं मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास फैमिली का प्रॉब्लम क्या है? मेरा बच्चा बड़ा छोटा है, धूप लग जाएगी, सर्दी में जाएगा तो जुकाम लग जाएगा, अभी उम्र बड़ी छोटी है, खेलने खालने की उम्र है। ऐसी बातें मिडिल क्लास फैमिली के लोगों को मिडिल क्लास कर देती है। सफल लोग जल्दी शुरू करते हैं। वर्जिन एटलांटिस के मालिक रिचर्ड ब्रांसन ने अपना करियर 16 साल की उम्र में चालू किया। जानते हैं दुनिया के सबसे रईस इंसान एलन मस्क ने अपना पहला सॉफ्टवेयर महज 12 साल की उम्र में बेच दिया। और हमारे यहां 12-13 साल की उम्र खेलने खालने की उम्र होती है, जिस उम्र में दुनिया के दिग्गज लोग अपना बिजनेस सेटअप कर रहे हैं। मैं आपको ये प्रिंसिपल देना चाहता हूं, इफ यू वांट टू बिकम सक्सेसफुल एंड इफ यू आर अ टीनेजर, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। आपका समय अभी शुरू होता है अगर आपकी उम्र 16-17 साल है, क्योंकि बिजनेस सेटअप करने के लिए आपको कम से कम 5-8 साल लगेंगे। अगर आज आप 17 साल में हैं, 8 साल और जोड़ लीजिए, 25 साल में आप एक सफल इंसान होंगे। जितनी कम उम्र में शुरू करेंगे उतना ज्यादा समय मिलेगा। प्रिंसिपल नंबर 2 आपको बता देना चाहता हूं, फेल क्विकली बट कीप मूविंग। फेल हो जाइए, नो प्रॉब्लम, मुझे कोई एतराज नहीं है। फेल क्विकली, जल्दी फेल होइए, मुझे कोई इश्यू नहीं है, बट कीप मूविंग, बढ़ते रहिए। मैं आपको एक सबसे अच्छी बात आपके लिए बता देना चाहता हूं, जो लोग अर्ली बिगनर हैं, आपके लिए सबसे बढ़िया बात यह है कि आप 100% फेल होने वाले हैं। अरे आप बोलेंगे सोनू सर ये कैसी बात कर रहे हैं, मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं इस दुनिया की, आप 100% फेल होने वाले हैं, सच है, क्योंकि आपने यात्रा बहुत जल्दी शुरू कर दी। अभी आपके पास ना स्किल है ना मार्केट का नॉलेज है, हो सकता है कोई मेंटोर भी ना हो जो आपको बचा सके। स्क्रैच से करोड़पति बनने का एक ही तरीका है, क्या? जितनी इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर सकते हो कर लो। इस उम्र में जितनी इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर सकते हो करो और कन्वर्ट करो उसको एक्शन के अंदर। जब आप मार्केट में चैलेंज फेस करो तो मान लो कि मार्केट आपका टेस्ट दे रही है। डरना मना है, फेलियर इज द पार्ट ऑफ द जर्नी। फेल हो जाइए, जल्दी फेल होइए, बट कीप मूविंग। तीसरा सफल सिद्धांत आपको देता हूं, एजुकेट योरसेल्फ। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर एवरी मिलेनियर एंड बिलेनियर, एजुकेट योरसेल्फ। निरंतर सीखते रहिए, बुक्स पढ़िए, इंटरव्यूज पढ़िए, केस स्टडीज पढ़िए सफल लोगों की, एनालाइज कीजिए बाकी लोगों के बिजनेस। और जानते हैं मजे की बात क्या है, क्वालिटी इंफॉर्मेशन बहुत चीपर है या एकदम फ्री है, कोई पैसा नहीं लग रहा आपको इस वीडियो को देखने का। फोकट में देख रहे हैं कितना कुछ सीखने को मिल रहा है। दुनिया में सबसे सफल बढ़िया ज्ञान फोकट में मिल जाता है दोस्त, बस अफसोस है कि हम सीखते नहीं है। 300 से ज्यादा वीडियो हैं हमारे चैनल के ऊपर, जरूर सब्सक्राइब करिए। 300 से ज्यादा फ्री वीडियो जहां पर आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो सकती है। मैं बार बार कहता हूं, एजुकेट योरसेल्फ, सीखिए, केस स्टडी से सीखिए, सफल लोगों की जीवनी से सीखिए और सारा का सारा इंफॉर्मेशन गैदर करके अपनी जिंदगी में लगाइए। जहां मेरे 20 साल के एक्सपीरियंस आज आपके YouTube के अंदर है, जिससे आप सीख सकते हैं कि कैसे अपन सफल हुए। इफ यू वांट टू रीड अ बुक, तुमको कोई लोन लेने का जरूरत नहीं है। मजे की बात तो यह है, अगर तुम एक सफल आदमी की जीवनी पढ़ना चाहते हो तो तुमको क्या लोन लेने का जरूरत है? मात्र 200-500 रुपए के अंदर एक सफल आदमी की किताब मिल जाती है। मिडिल क्लास फैमिली के लोगों को यह बहुत बड़ा काम लगता है। क्या बैंक से लोन लेना पड़ेगा किताब पढ़ने के लिए? नो लेडीज एंड जेंटलमैन, आप अपने बच्चे से पैसा बोरो करके भी एक सफल आदमी की किताब पढ़ के सीख के उसको जिंदगी में इंप्लीमेंट कर सकते हो। डोंट बी सीरियस इन लाइफ बट टेक लाइफ सीरियसली। एक ही जिंदगी है, इन्वेस्ट इन बुक्स, रिकॉर्डिंग्स, हर चीज जो आपकी स्किल को बिल्ड करे। और जितनी छोटी उम्र में स्किल्स डेवलप कर लोगे ना, उतने ज्यादा समय तक उन स्किल्स को यूज कर सकते हो। मैं रिपीट करता हूं, जितनी छोटी उम्र में स्किल्स डेवलप कर लोगे उतने ज्यादा समय तक स्किल्स को यूज कर सकते हो। कार अगर आपने 18 साल की उम्र में सीख ली और आप 80 साल जीते हैं तो 62 साल तक इसका फायदा उठा सकते हैं। लेकिन अगर आपने कार 60 साल की उम्र में सीखी और 80 साल तक जिए तो उसका फायदा सिर्फ 20 साल उठा सकते हैं। बिकम अ सेल्फ लर्नर, लर्न अबाउट टाइम मैनेजमेंट, हाउ टू टॉक, हर टॉपिक पर आपको मेरे चैनल पर वीडियो मिल जाएगा, सीखिए और आगे बढ़िए। प्रिंसिपल नंबर 4 आपको बता देना चाहता हूं, सांसें थाम के बैठिएगा क्योंकि आपको ये डेंट करने वाला है, आपको चोट देगा, आपको पीड़ा पहुंचाएगा कि सोनू सर आज क्या बताने के मूड में आए हैं। प्रिंसिपल नंबर 4, सेक्रीफाइस सोशल लाइफ।
2: यस बॉयज एंड गर्ल्स, सैक्रिफाइस सोशल लाइफ,
1: अपनी सोशल लाइफ को आपको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। गुर्बत और गरीबी से निजात पाने के लिए कीमत आपको देनी ही पड़ेगी, यह कीमत आपको चुकानी पड़ेगी। बिल्कुल एक रॉकेट की तरह जिसका सबसे ज्यादा फ्यूल ग्रेविटेशनल पुल से बाहर निकलने में लग जाता है। आपके जो शुरुआती साल हैं उसमें आपको सोशल लाइफ को बायकॉट करना पड़ेगा। जी हां, 40 घंटा अगर आप एक हफ्ते में काम करते हैं, मैं रिपीट करता हूं, अगर आप एक हफ्ते में सिर्फ 40 घंटा ही काम करते हैं तो यह सिर्फ आपके खाने की पूर्ति करेगा, आपके बिलों का भुगतान करेगा, दैट्स इट। अगर आप 40 आवर्स अ वीक मेहनत करते हैं तो सिर्फ बिल भुगतेंगे आपके, आप एक आम जिंदगी जिएंगे, मर जाएंगे। लेकिन अगर आपके वर्किंग आवर्स 40 से बढ़कर 100 हो जाते हैं, अगर एक हफ्ते में आप 100 घंटा काम करते हैं, यह आपको लाइफस्टाइल देगा, ये आपको जबरदस्त लाइफ देगा और आपको एक अमीर लाइफ को फील करवाएगा अगर आप 100 घंटे काम करते हैं। लेकिन 100 घंटे काम कब करेंगे? जब सोशल लाइफ को बायकॉट करेंगे। कोई फालतू की दोस्तों की रिश्तेदारी नहीं, कहीं फालतू का आना नहीं, फालतू का जाना नहीं, इधर उधर की गॉसिप में खोपड़ी नहीं लगाना, सिर्फ और सिर्फ फोकस करना अपने करियर और अपने गोल के ऊपर। बहुत सारे लोग ये नहीं कर पाते क्योंकि ये कीमत ही नहीं देना चाहते, क्योंकि ये बिल्कुल आसान नहीं है। आप भी बाकी लोगों की तरह आम जिंदगी जी सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। आप डिसाइड करिए कि आप कितने घंटे रोजाना अपने मोबाइल स्क्रीन पर ऐसी की तैसी कराकर अपना टाइम वेस्ट करना चाहते हैं। लोगों के मोबाइल स्क्रीन के ऊपर 7-7 8-8 घंटे के आवर्स हैं, कैन यू बिलीव इट। दुनिया भर का अनप्रोडक्टिव काम लोग बाग करते हैं, कभी इसकी शादी में जाना है, कभी उसके रिश्तेदारी में जाना है, कभी फालतू फंड का गॉसिप करना है, चार दोस्त बैठे हैं गप्पे मार रहे हैं। यू आर वेस्टिंग योर प्रीशियस टाइम। 24 घंटे खत्म होने के बाद, वो 24 घंटे दुनिया भर की संपदा देने के बाद भी आपके पास नहीं आते। आपको बॉयकॉट करना पड़ेगा सोशल लाइफ और फोकस करना पड़ेगा अपने करियर के ऊपर। पांचवी सबसे खतरनाक चीज, सराउंड यूर सेल्फ विद हाईली सक्सेसफुल पीपल एट एनी कॉस्ट। हाईली सक्सेसफुल पीपल एट एनी कॉस्ट। अपना वातावरण सफल लोगों के साथ बनाइए। कुछ भी ऐसा करिए कि आपके आजू बाजू में वो लोग हों जो आपको इंस्पायर कर सकें। कुछ ऐसा रास्ता ढूंढिए, कुछ ऐसी एसोसिएशन तलाशिए जहां पर आपके आजू बाजू के लोग बड़ी बात करने वाले हों, बड़े सपने देखने वाले हों, बड़े आइडियाज हों जिनके पास, और अर्ली बिगिनर्स हों जिनके पास गीता ज्ञान के नाम पर कुछ ना हो लेकिन एनर्जी सुपर फास्ट हो। इन सबकी एसोसिएशन में आप कमाल कर जाएंगे। बींग विद अ विनर मेक्स यू अ विनर एंड बींग विद अ लूजर विल मेक यू अ लूजर। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये 5 प्रिंसिपल अगर आप अपने जीवन में इंप्लीमेंट कर गए, मैं दावा दे सकता हूं ये साल आपकी जिंदगी का बेहद खूबसूरत साल है।

0: रॉकी भाई जैसा स्ट्रॉन्ग बनना है तो फॉलो करो KGF हेल्थ टिप्स
1: कोलार गोल्ड फील्ड।
0: नहीं, KGF मतलब कीप जिमिंग टू फ्लेक्सिबिलिटी।
1: ऐसे ही सिनेमैटिक हेल्थ टिप्स जानने के लिए सुनते रहिए रेडियो महारानी को छटके।

0: 89.6 FM
1: कुछ छक्के।
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।
4: जानते हो बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
5: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
4: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

आरजी अंजलि। गुड मॉर्निंग फरीदाबाद भाई, क्या हाल चाल है आप लोगों के? इस शानदार से ट्रैक के साथ आ गई हूँ मैं लेकर यहाँ पर मॉर्निंग एक्सप्रेस। आज अंजलि हूँ आपके साथ हर सुबह की तरह। भाई देखो, ये वाली सुबह भी होने वाली है एकदम मस्त, यानी कि यहाँ आपको अपडेट मिलने वाली है आपकी सिटी से लेकर देश दुनिया में क्या हो रहा है ये सब आपको बताऊंगी। वेदर से लेकर आज का स्पेशल डे क्या है ये भी आपको बताने वाली हूँ। तो भाई और क्या कुछ वायरल हुआ है इस बारे में भी बात करने वाली हूँ। तो बहुत सारी चीजें आज मेरे पास आपके साथ शेयर करने के लिए। तो बस यही कहना चाहूंगी, हो जाइए रेडी, फटाफट से मसाला वाली चाय अपने हाथ में रख लीजिए, अपनी कुर्सी की पेटियां बांध लीजिए और इस शानदार से ट्रैक को एंजॉय कीजिए। मिलते हैं इस म्यूजिक ब्रेक के बाद।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
1: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
2: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
3: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। मैं हूं एम्बुलेंस, हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती है। कुछ को मिल जाती हैं सांसें यहां, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां आगे के लम्हे जीना चाहती हैं।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: कबीर, ये हेलमेट तो बस चालान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
1: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
0: पर महंगा हेलमेट, थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
1: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
2: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

इस शानदार सुरक के साथ एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 FM पर। मैं हूँ अर्जुन छे आपके साथ और शो चल रहा है मॉर्निंग एक्सप्रेस। तो भाई अब टाइम हो गया वेदर अपडेट का। अगर आज हाईएस्ट टेम्परेचर की बात की जाए 38 डिग्री जाने वाला है, इसी के साथ अगर मिनिमम की बात की जाए 29 डिग्री रहने वाला है। ह्यूमिडिटी आपको मिलने वाली है 39%, साथ ही विंड स्पीड मिलेगी 10 और इसी के साथ दिन है सनी सनी, यानी कि टेम्परेचर थोड़ा सा डाउन हुआ है लेकिन गर्मी अभी भी उतनी है। तो इस बदलते मौसम में अपना ख्याल जरूर रखेगा। साथ ही सुनते रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM। मिलते हैं इस म्यूजिक ब्रेक के बाद।

0: अरे भाई, इतनी तेज रफ्तार में कहाँ जा रहा है?
1: भाई मैं तो लंबी रेस का घोड़ा हूँ, रफ्तार से ही जाऊंगा।
0: अरे भाई रुक तो जा, धीरे चलेगा तो दूर तक जाएगा, वरना हॉस्पिटल के बिल ही बढ़ता रह जाएगा।
2: सड़क पर चलते वक्त स्पीड का रखें खास ध्यान, किसी भी लापरवाही से मत बनिए हॉस्पिटल के मेहमान, क्योंकि आपकी सुरक्षा है आपकी जिम्मेदारी।
3: रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: making love songs.
1: सर आपका KYC अपडेट करना है, मैंने आपको एक लिंक भेजा है, उस पर क्लिक कीजिए, वरना आपका अकाउंट और ATM दोनों ही बंद हो जाएगा।
2: बट मेरा KYC तो ऑलरेडी अपडेटेड है।
3: सावधान, अनजाने कॉल्स, फर्जी टेक्स्ट, लिंक और जाली ऐप से अपना पिन, OTP, पासवर्ड कभी भी किसी के साथ शेयर न करें। आप रहेंगे सावधान तो नहीं होगा नुकसान। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: हाँ तो अर्ज किया है।
1: ओहो, अर्ज होता है अर्ज।
0: कर रहे हैं आप, सुनो तो
1: इरशाद।
0: स्कैम कॉल करने वालों का फोन हमारे नंबर पर आ गया।
1: तुम्हारे नंबर पे?
0: हाँ जी।
1: अच्छा,
0: और उन्होंने पूछा क्या?
1: क्या पूछा?
0: हाँ, पैसे दे दो वरना कार ठोकने के जुर्म में आपका बेटा जेल जाएगा, उन्होंने ये बताया।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ, हमने कहा भाई सिंगल हूँ मैं, ना तो मेरा कोई बेटा है ना मेरी कोई कार है।
1: अच्छा,
0: हमारी लाइफ में खटारा जी साइकिल है, वो भी बेकार है।
1: बिल्कुल तुम्हारी तरह। ओ पागल, तुम्हें कहना चाहिए था वो भी उधर हार ली हुई है।
0: नहीं नहीं, रेंट पे है, ईएमआई पे।
1: खैर, अब तुम बोलते रहो, हम सबको बता कर आते हैं कि स्कैम कॉल्स को वैसे ही इग्नोर करें जैसे तुम्हारी क्रश तुम्हारी कॉल को करती है।
0: इज्जत का फालूदा कर दिया यार।
1: बाय।
0: सुनो तो, कहाँ चली?
1: बाय।

जस्ट फॉर फन, या जस्ट फॉर फन के नाम पर ना हम कुछ भी कर देते हैं। वेलकम बैक टू रेडियो महारानी, मैं हूँ आरजे अंजलि आपके साथ और शो चल रहा है मॉर्निंग एक्सप्रेस, जहाँ पर ना मैं आज आपके लिए सोशल स्यापा लेकर आई हूँ। इन दिनों बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है और ये जस्ट फॉर फन ना सिर्फ कॉन्टेंट के लिए था। सो वेलकम बैक टू रेडियो महारानी, मैं हूँ आरजे अंजलि आपके साथ और शो चल रहा है मॉर्निंग एक्सप्रेस। सो मैं एक ऐसा इंसिडेंट लेकर आई हूँ जहाँ पर सुबह उठकर ना पुलिस को ये पता लगा कि एक स्कूल गोइंग टीनेजर बस लेकर 300 किलोमीटर दूर निकल गया। सो एक शॉकिंग इंसिडेंट सामने आया जहां पर एक टीनेजर बॉय जस्ट फॉर फन के नाम पर एक बस चुरा कर ले गया, और सबसे सरप्राइजिंग बात ये थी कि बस में कोई पैसेंजर भी नहीं था, लेकिन उन्हें जस्ट फॉर फन के लिए ये राइड करनी थी। और ऐसा नहीं है कि ये इंसिडेंट एक बार हुआ, ये पिछले 6 महीनों में 3 बार हुआ था। और जब ऐसा करते हुए पकड़ा गया ना, तो स्टोरी में एक ट्विस्ट आया। ट्विस्ट ये था कि बस को ड्राइव करने वाला अंडर एज ड्राइवर, जो बहुत टाइम से बस चला रहा था, लगभग 300 किलोमीटर लॉन्ग ड्राइव भी कर ली। पुलिस भी शॉक्ड थी कि रोड्स पर आखिर ये बस निकली कैसे। एंड थैंकफुली किसी को इंजरी नहीं हुई, लेकिन ये इंसिडेंट ने सेफ्टी कंसर्न जरूर रेज किए हैं। सो माय डियर लिसनर्स, बस यही कहना चाहते हैं कि मूवीज और वीडियो गेम्स अलग चीज है, रियल रोड्स पर रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत जरूरी है। ड्राइविंग सिर्फ फन नहीं, एक ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एंड वन मोर थिंग, कि हम जब कंटेंट के पीछे कुछ भी क्रिएट करते हैं ना, सो उसका रिजल्ट बहुत हार्मफुल हो सकता है। फ्रूटफुल कंटेंट क्रिएट कीजिए, सो दैट कि आपकी ऑडियंस आपसे इंस्पायर हो, ना कि उनकी लाइफ इफेक्ट हो। इस तरह का कंटेंट बनाइए। साथ ही सुनते रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM। मिलते हैं म्यूजिक।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। क्या हम सब बदल गए हैं? इतना बदल गए हैं कि किसी की सांसें हमारी जिंदगी में कोई मायने ही नहीं रखती।
1: हमें तो बस किसी भी कीमत पर अपनी मंजिल तक पहुंचना है, पर क्या वो कीमत एम्बुलेंस में फंसी एक जान भी हो सकती है?
0: ऐसा मत कीजिए, क्योंकि आपके चंद पलों की देरी किसी की ठहरती जिंदगी में जान डाल सकती है। इसीलिए एम्बुलेंस का सायरन सुनकर हमें अपनी मंजिल से ज्यादा किसी की जिंदगी की कीमत समझनी चाहिए।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। क्या हम सब बदल गए हैं? इतना बदल गए हैं कि किसी की सांसें हमारी जिंदगी में कोई मायने ही नहीं रखती।
1: हमें तो बस किसी भी कीमत पर अपनी मंजिल तक पहुंचना है, पर क्या वो कीमत एम्बुलेंस में फंसी एक जान भी हो सकती है?
0: ऐसा मत कीजिए, क्योंकि आपके चंद पलों की देरी किसी की ठहरती जिंदगी में जान डाल सकती है। इसीलिए एम्बुलेंस का सायरन सुनकर हमें अपनी मंजिल से ज्यादा किसी की जिंदगी की कीमत समझनी चाहिए।
2: हाँ तो अर्ज किया है।
3: ओहो, अर्ज होता है अर्ज।
2: कर रहे हैं आप, सुनो तो
3: इरशाद।
2: स्कैम कॉल करने वालों का फोन हमारे नंबर पर आ गया।
3: तुम्हारे नंबर पे?
2: हाँ जी।
3: अच्छा,
2: और उन्होंने पूछा क्या?
3: क्या पूछा?
2: हाँ, पैसे दे दो वरना कार ठोकने के जुर्म में आपका बेटा जेल जाएगा, उन्होंने ये बताया।
3: क्या बात कर रहे हो?
2: हाँ, हमने कहा भाई सिंगल हूँ मैं, ना तो मेरा कोई बेटा है ना मेरी कोई कार है।
3: अच्छा,
2: हमारी लाइफ में खटारा जी साइकिल है, वो भी बेकार है।
3: बिल्कुल तुम्हारी तरह। ओ पागल, तुम्हें कहना चाहिए था वो भी उधार ली हुई है।
2: नहीं नहीं, रेंट पे है, ईएमआई पे।
3: खैर, अब तुम बोलते रहो, हम सबको बता कर आते हैं कि स्कैम कॉल्स को वैसे ही इग्नोर करें जैसे तुम्हारी क्रश तुम्हारी कॉल को करती है।
2: इज्जत का फालूदा कर दिया यार।
3: बाय।
2: अरे सुनो तो।

0: 89.6 FM.
1: कुछ हक
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हक के।

0: यह शो लेकर फिर से लौट आई हूँ मैं करने आपसे ढेर सारी बातें, जहाँ मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर ईशा। सो डॉक्टर, अगर बात करें एक हेल्दी और हैप्पी मदर की, सो एक हेल्दी और हैप्पी मदर बनने के लिए डेली रूटीन में किस तरह के सिंपल सेल्फ केयर हैबिट्स को इंक्लूड किया जा सकता है, सो दैट की हमारी मदर्स हैप्पी एंड हेल्दी दोनों रह सके।
1: वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सेल्फ केयर जैसा हमने ओपनिंग में बात की बहुत जरूरी है। तो सेल्फ केयर की जब हम बात करते हैं तो हम बेसिक थिंग्स लाइक न्यूट्रिशन एंड मूवमेंट उससे शुरू करते हैं और फॉलोड बाय मेंटल हेल्थ डेवलपमेंट। सो मेरा एडवाइस है सब मदर्स के लिए, इफ दे कैन अपने लिए कुछ समय निकालें, इट कैन बी इवन 20 मिनट्स, कैन बी एन आवर, या फिर स्मॉल स्मॉल सेगमेंट्स ऑफ टाइम पूरे दिन में। एंड सबसे पहले तो अपनी बॉडी में आप क्या डाल रही हैं, यानी कि न्यूट्रिशन जो है आपका, आप सबको तो सबसे हेल्दी फूड खिला ही रही हैं जो बच्चों को ग्रो करने में हेल्प कराएगा, आपके हस्बैंड की एनर्जी अच्छी रखेगा, बट आप अपने लिए भूल जाती हैं। तो जो बचा कुचा होता है वही खाती हैं। बहुत कॉमन हैबिट है ऑफ ऑल विमेन एंड मदर्स इन एनी हाउस होल्ड, तो इसको बदलना पड़ेगा। आपको जो बनाना है हेल्दी स्टफ वो अपने लिए भी निकालना है, रादर आप सबसे पहले खाइए ताकि आपकी एनर्जी अच्छी रहे। सो वी ऑल नो व्हाट इज अ गुड न्यूट्रिशियस डाइट, which is high on fiber, fruits, vegetables,

0: वुमेन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है आयरन, ताकि हमारा ब्लड अच्छा रहे. कैल्शियम भी बहुत जरूरी है ताकि हमारी बोन स्ट्रांग रहे, क्योंकि हम एट सम पॉइंट इन आवर लाइव्स तो हमने बेबी कैरी की है, उनको फीडिंग कराई है और आगे जाके हमारी बोन्स वीक हो सकती हैं, इसलिए पहले से ही हम अपना रिजर्व बना के रखना होता है. तो ये हो गई डाइट की बात. उसके बाद हमारा मूवमेंट या फिर एक्सरसाइज भी बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आपका कोई पहले से रूटीन नहीं है तो बेसिक चीजों से स्टार्ट करें. कैन इवन बी अ वॉक. लोग कहते हैं कि मेरा तो कुछ हो नहीं पाया, 5 मिनट बस वॉक किया. आई वुड से एनीथिंग इज बेटर देन नथिंग. तो आप 5 मिनट से शुरू करें सिंपल वॉक से, फिर उसको ब्रिस्क वॉकिंग, कोई फॉर्मल क्लास या फिर मसल ट्रेनिंग, एरोबिक्स, इन सब में कन्वर्ट कर सकती हैं धीरे धीरे, बिल्ड ऑन इट. द थर्ड थिंग इज योर मेंटल हेल्थ. वो भी बहुत जरूरी है ताकि आप इंटरनली पॉजिटिव रहें और अपने आसपास भी सबको वो पॉजिटिव एनर्जी स्प्रेड करें. मेंटल हेल्थ के बहुत सारे स्ट्रेटजीज हैं. किसी को तो मेडिटेशन पसंद आ सकता है, किसी को योगा, किसी को जर्नलिंग, किसी को लिसनिंग टू म्यूजिक, या फिर अपना कोई भी हॉबी या पैशन हो उसको स्ट्रांगली परस्यू करें. तो दे कैन जॉइन सम क्लास लाइक डांस क्लास और आर्ट क्लास. इस सब से भी हमारी मेंटल एनर्जी इम्प्रूव होती है. मेंटल हेल्थ हमने डिस्कस कर ही लिया कि हम अक्सर इसके बारे में भूल जाते हैं, बट इसके लिए भी हमें पूरे दिन में टाइम निकालना पड़ेगा. मोस्टली पर्सनली फॉर मी द बेस्ट टाइम इज अर्ली इन द मॉर्निंग, जब आप कोई एक्सरसाइज या मेडिटेशन या फिर रीडिंग इस तरीके से या जर्नलिंग कर सकती हैं टू इम्प्रूव योर मेंटल एनर्जी.
1: थैंक यू सो मच डॉक्टर, अपनी वैल्यूएबल और इंस्पायरिंग बातें हमारे साथ शेयर करने के लिए. बातों का सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा लेकिन इस म्यूजिक ब्रेक के बाद. तब तक बने रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM के साथ.

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। एक तेज हॉर्न की ट्रैफिक में सन्नाटा सा कर गई जब एम्बुलेंस के हॉर्न की आवाज कानों में पड़ गई। आज फिर एक जिंदगी इस ट्रैफिक में अपनी सांसों के लिए लड़ रही है जनाब। एम्बुलेंस को रास्ता देकर आप पूरा कर सकते हैं लाखों जिंदगियों के जीने का ख्वाब, क्योंकि एक छोटी सी मदद किसी की जिंदगी को बचा सकती है।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: जिंदगी का सफर कितना भी हसीन हो, एक गलती और सब खत्म।
1: ये सड़कें तुम्हारी कहानियाँ नहीं सुनती, इन्हें सिर्फ तुम्हारी समझदारी दिखती है। इसलिए हाई स्पीड में गाड़ी चलाने से पहले एक बार जरूर सोचे, आपको किसी न्यूज़पेपर के पेज की हाईलाइट बनना है या अपनी खुद की कहानी का राइटर।
2: आपकी सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।
4: Whoa!

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं।
1: व्हील्स ऑफ लाइफ, व्हील्स ऑफ होप, एम्बुलेंस जो उम्मीद की किरण लाती है और जिंदगी को बचाती है। इसीलिए जब भी सड़क पर चलती हुई एम्बुलेंस को देखें, उसे सबसे पहले रास्ता दें।

0: सचिन ये क्या कर रहा है तू?
1: क्या हो रहा है भाई? हाँ
2: पापा रोमांटिक सीन लिख रहा हूँ।
1: यहाँ इस तरह बीच सड़क पर नाच कर
2: फील कर रहा
1: हूँ। अरे फील क्या कर रहा है डफर, सब लोग देख रहे हैं।

0: मलयाली क्रिश्चियन है वो, जैसी।
1: हर शाम जब तुम घर लौटते हो, माँ की नजरें दरवाजे पर टिकी रहती है। पापा के सवालों में सख्ती से ज्यादा फिक्र होती है, और छोटे भाई की वो मुस्कान जो सिर्फ तुम्हें देखकर खिल उठती है। सोचो अगर कभी ये मुस्कान इंतजार में ही रह जाए।
2: सफर लंबा हो या छोटा, हेलमेट पहने, हाई स्पीड में गाड़ी ना चलाएं और अपनों की हंसी को बचाएं। हेलमेट सिर्फ आपकी सुरक्षा नहीं, अपनों की खुशियों की गारंटी है।
3: सदा सुरक्षित रहो। अरूर सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: हो गया शुरू तो अर्ज किया है।
0: ओहो अर्ज होता है अर्ज।
1: कर रहा हूँ तुम सुन लिया करो बस।
0: इरशाद
1: अरे आगे खाली हो जाएगी।
0: क्या
1: बोल कर ये सारी भीड़ अंदर बुला लेते हैं।
2: कौन है?
1: रोडवेज वाले।
0: ओके ओके।
1: रोडवेज वाले भैया सीट पर चार सवारी तो अपनी गोदी में भी तीन बच्चे बिठा लेते हैं।
0: अरे हाँ यार उस दिन तो लोरी गाकर सुला भी रहे थे।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ।
1: आगे सुनो।
0: सुनाओ।
1: रोडवेज की शक्तियों का हम करते हैं कुछ इस तरह इस्तेमाल। लस्सी बनाने के लिए रोडवेज में दही लेकर बैठ जाते हैं।
0: वैसे दिमाग का दही हो रखा है और ऊपर से तू भी। मैं तो चली तू बोलता रहा।
1: अरे एक ग्लास तो पीती जा। सुन।

0: वेलकम बैक टू रेडियो महारानी। मैं हूँ अर्जेंटली आपके साथ रियाना। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर ईशा फ्रॉम फोर्टिस हॉस्पिटल। सो डॉक्टर, अगर बात की जाए आजकल की बिजी लाइफस्टाइल की, तो आजकल की बिजी लाइफस्टाइल में मदर स्ट्रेस, फटीग और लैक ऑफ स्लीप का काफी ज्यादा सामना करती है, जिसकी वजह से उनकी ओवरऑल हेल्थ पर काफी ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। सो किस तरह से इन सारी चीजों को मैनेज किया जा सकता है?
1: यस, सो फटीग और लैक ऑफ स्लीप बहुत प्रेवलेंट हो गया है, बट आप ये समझे कि स्लीप हमारी बॉडी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये वो टाइम है जब हमारी बॉडी रेस्ट फेज में होती है, तो फिर हमारी बॉडी में बहुत सारी रिपेयर एक्टिविटीज चलती हैं इन ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, इंक्लूडिंग द ब्रेन, हेड टू टो, सब जगह। सो अगर आप इतनी टायर्ड हैं बट फिर भी आपको स्लीप नहीं मिल रही है, तो उसकी वजह से बहुत सारी चीजें स्लोली अक्यूमुलेट करने लग जाती हैं। स्टार्टिंग में इट डजंट सीम वेरी ऑब्वियस, बट स्लोली आपको मल्टीपल डिसऑर्डर्स सामने आने लग सकते हैं। इसमें बेसिक थिंग्स लाइक ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, या फिर हार्ट प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं, या फिर सम अदर्स लाइक स्किन डिजीजेस, या मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स, मूड प्रॉब्लम्स, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स, ये भी हो सकती हैं।
0: थैंक यू सो मच डॉक्टर। जैसे कि अभी डॉक्टर ने बताया, चाहे बात हो स्ट्रेस, फटीग या फिर मेंटल हेल्थ या रेगुलर हेल्थ चेकअप्स की, हर मदर को खुद के लिए वक्त निकालना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब माँ हेल्दी और हैप्पी होगी तभी पूरी फैमिली भी स्ट्रॉन्ग एंड हैप्पी रह पाएगी। सो इसी के साथ बस यही कहना चाहते हैं, अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, और सुनते रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM। मिलते हैं इस म्यूजिक ब्रेक के बाद।

0: डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। वैसे ही अगर हमने अभी कदम नहीं उठाए तो प्रदूषण को काबू करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए गाड़ियों का कम इस्तेमाल करें, पौधे लगाएं और अपने आसपास साफ सफाई का ध्यान रखें, वरना इस डॉन को पकड़ना सच में नामुमकिन हो जाएगा।
1: रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

जब ट्रैफिक हो टाइट और मौसम का मूड हो लाइट, वही मॉर्निंग एक्सप्रेस में मिलती है ट्रेंडिंग बाइट्स। सुनना ना भूले सुबह 7 से 10 ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: सोचो अगर कभी ये मुस्कान इंतजार में ही रह जाए।
1: सफर लंबा हो या छोटा, हेलमेट पहने, हाई स्पीड में गाड़ी ना चलाएं और अपनों की हंसी को बचाएं। हेलमेट सिर्फ आपकी सुरक्षा नहीं, अपनों की खुशियों की गारंटी है।
2: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

जब प्यार सच्चा हो ना तो आप अपने प्यार के लिए कुछ भी कर सकते हैं। फिर क्या चंदा तारे, फिर क्या ताजमहल, आप गिफ्ट में ना कुछ भी दे सकते हैं। और ऐसा ही कुछ दिल्ली के दीवाने ने कर दिखाया। वेलकम बैक टू रेडियो महारानी, मैं हूँ आरजे अंशली आपके साथ और शो चल रहा है मॉर्निंग एक्सप्रेस। इन दिनों गर्मी इतनी ज्यादा है कि सनस्क्रीन लगाना जरूरी है, और अगर सनस्क्रीन की तरफ देखा जाए ना तो बहुत ही मोटा खर्चा।

कराता है। लेकिन जब आपको अगर ऐसा पार्टनर मिल जाए ना जहाँ आपके लिए सनस्क्रीन भर भर कर आए, तो फिर और क्या ही चाहिए। कहते हैं ना, जब प्यार सच्चा हो तो गिफ्ट में फ्लावर्स नहीं, सनस्क्रीन के कार्टन्स भी हो सकते हैं। दरअसल इन दिनों सोशल मीडिया पर एक फनी सटायर बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है, जिसमें एक दिल्ली बॉय ने अपनी गर्लफ्रेंड को पीक समर में बाहर मिलने के लिए बुलाया और मोहतरमा ने कर दिया मना। उसका रीजन ये था 45 डिग्री की गर्मी और धूप का अटैक। तो मैडम ने अपने पार्टनर को बोला, देखिए ऐसा है, इस गर्मी में हम तो बाहर नहीं आ पाएंगे क्योंकि टैन बहुत हो जाएगा। तो फिर क्या था, पार्टनर ने भी सोच लिया और गर्लफ्रेंड को कर दिए 67 पैकेट सनस्क्रीन गिफ्ट्स। सो इस गिफ्ट के बाद ना मोहतरमा मान गई और दोनों की मुलाकात भी हो गई। देखिए वैसे फनी बहुत है, लेकिन गिफ्ट बहुत कमाल का था। और जब भी अगर किसी को आप गिफ्ट देने का सोचो ना, तो ये जरूर सोचेगा कि वो गिफ्ट उनके कितने काम आ सकता है। सो अगर इस स्टोरी की बात करूँ ना, तो स्टोरी के पीछे का मोटिव बहुत ही बढ़िया था। गिफ्ट ऐसा दो कि काम आए। और इस दिल्ली की गर्मी में इन दिनों प्यार का असली टेस्ट भी हो गया। सो भाई, जो इतनी भरी गर्मी में मिलने आ जाए, शायद वही सच्चा प्यार है। और देखिए मजाक अपनी जगह, लेकिन इस वेदर में खुद का ख्याल रखना उतना ही जरूरी है। हाइड्रेटेड रखिए खुद को, सनस्क्रीन लगाइए और आफ्टरनून सन से बचकर रहिए, सो दैट कि आप इस गर्मी से बच सके। सो दिल्ली की गर्मी में रोमांस से पहले सर्वाइवल जरूरी है, इस चीज का ख्याल जरूर रखिएगा। क्योंकि उन मोहतरमा को तो सनस्क्रीन मिल गई, लेकिन आपको कोई सनस्क्रीन देने वाला नहीं है। तो खुद ही अपनी सनस्क्रीन खरीदिए, खुद ही अपना ख्याल रखिए और सुनते रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM। मिलते हैं इस म्यूजिक ब्रेक के बाद।

0: डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। वैसे ही अगर हमने अभी कदम नहीं उठाए तो प्रदूषण को काबू करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए गाड़ियों का कम इस्तेमाल करें, पौधे लगाएं और अपने आसपास साफ सफाई का ध्यान रखें, वरना इस डॉन को पकड़ना सच में नामुमकिन हो जाएगा।
1: रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।
2: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये स्टेशन रेडियो महारानी है।

0: 69.6 FM.
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं.
3: कुछ हटके.
4: जानते हैं, कुवैत जैसे देश की जीडीपी से करीब 3 गुना पैसा तो हमने सिर्फ अपने देश के छोटे उद्यमियों को दिया है, वो भी गारंटी फ्री 40 लाख करोड़ से भी अधिक के मुद्रा लोन से.
3: करोड़ों छोटे उद्यमियों को मुद्रा योजना से लोन मिला. उन्हें आज महसूस होता है कि डेमोक्रेसी कैन डिलीवर.
4: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के.

तमाची सटक सटक बम तेरा गुते खाए, कमर पे तेरी बटरफ्लाई, बॉडी तेरी मक्खन जैसे, खाने में बस तू बटर खाए। बेबी टिकट टिकट काटू तेरी टिकट टिकट, खेलता नहीं क्रिकेट विकेट, पर ले लूं तेरी विकेट विकेट।

0: अरे अंग अंग तेरा, तेरे लिए कुछ भी कर लूंगा, तेरी मैं हर लूंगा कोई भी पीड़ा। पागल हुआ तेरे पीछे जैसे दिमाग में कीड़ा, लगे मीठी जैसे शकर शकर, आजा चला ले चक्कर चक्कर, बाकी के लौंडे पकड़ पकड़, I am the baddest motherfucker।
1: हार्ट बीट।

जब एक तरफ इतनी गर्मी होना और दूसरी तरफ बस फ्री के आम मिल जाए तो कौन नहीं खाना चाहेगा उन आम को। वेलकम बैक टू रेडियो महारानी, मैं हूँ आरजेंसी आपके साथ और शो चल रहा है मॉर्निंग एक्सप्रेस। तो भाई आज इंडिया की नहीं, आज इंडिया से थोड़ा बाहर चलकर बात करते हैं, यानी कि आज बात करते हैं सैन फ्रांसिस्को में, जहाँ पर लगी है आम की महफिल। हम इंडियंस जहाँ भी जाते हैं ना अपना जायका साथ उठा कर ले जाते हैं। सो अमेरिका की अगर मैं बात करूँ तो अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में एक यूनिक मैंगो पार्टी ने सोशल मीडिया पर सबका ध्यान खींच लिया। सो इन दिनों सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल हो रही है मैंगो पार्टी, जो कि इंडिया में नहीं बल्कि अमेरिका में हो रही है। अगर इस इवेंट की बात करूँ तो इस इवेंट में लोगों को इंडिया के फेमस मैंगो वेराइटीज का फ्री टेस्टिंग एक्सपीरियंस दिया गया। और इतना ही नहीं, जब ये पार्टी शुरू हुई और लोगों ने टेस्ट किए ना मैंगोस, बहुत सारे लोग धीरे धीरे करके वहां पर जमा हो गए सिर्फ और सिर्फ मैंगो टेस्ट करने के लिए। बिकॉज अगर बात करें ना तो इस पार्टी में बहुत वैरायटी के मैंगो आए थे, जैसे अल्फेंजो मैंगो, केसर मैंगो, इसके साथ दो चार वैरायटीज और आई थी। और इन आमों की जो मिठास है ना और जो फ्लेवर है, उन्होंने लोगों का दिल जीत लिया। और अगर मैं आम और इंडिया की कनेक्शन की बात करूँ ना तो बहुत ही पुराना कनेक्शन है। इंडिया को दुनिया का सबसे बड़ा मैंगो प्रोड्यूसर माना जाता है और यहाँ आम सिर्फ फ्रूट नहीं एक इमोशन भी है। बिकॉज अगर गर्मियों की बात करें ना तो गर्मियां आते ही ना हम आम की बहुत सारी वैरायटीज खाते हैं, कहीं आम रस, आम पन्ना, मैंगो शेक, आम का अचार तो एवरग्रीन है। तो ये कुछ चीजें हैं जो आम को और भी ज्यादा स्पेशल।

बना देते हैं। सो अगर हम इंडियंस अपनी बात करें ना, तो हमारे लिए ना हर चीज में इमोशन है। सो इंडिया में समर का मतलब वेकेशन नहीं, आम होता है, ये तो हम सबको पता है। और अब तो शायद बाहर देश को भी ये बात पता चल गई है कि आम खाना है तो इंडिया का खाना है। और लगता है अभी आम प्यार सिर्फ इंडिया तक सीमित नहीं रहा, बल्कि दुनिया भर में फैल रहा है। और धीरे धीरे करके देखते हैं ये इंडियन आम कहाँ तक पहुँचता है। तब तक सुनते रहे रेडियो महारानी 89.6 FM, मिलता है इस म्यूजिक ब्रेक के बाद।

0: मंजिल सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो सफर की कद्र करते हैं। कभी कभी एक छोटी सी लापरवाही पूरी कहानी बदल देती है। हेलमेट कोई बोझ नहीं, ये आपकी समझदारी का सबसे बड़ा सबूत है।
1: तो अगली बार सफर पर निकलने से पहले इस छोटी सी समझदारी को अपने सिर पर जरूर रखिए, क्योंकि आपकी एक सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी।
2: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: हाँ तो अर्ज किया है।
0: अर्ज
1: अभी करते हैं, सुनो।
0: इंस्टार्ट।
1: करके आजकल दिमाग खा जाते हैं।
0: वाह।
1: कोई फर्जी रिश्तेदार तो कोई फर्जी ऑफिसर बनकर हमें डांट देते हैं। चुप रहो, आगे सुनो। मैं कहता हूँ कि बैंक की डिटेल्स ओटीपी सब दे दूंगा।
0: अच्छा,
1: बस मेरी शायरी सुन लो।
0: फिर
1: ये सुनते ही पहली फुर्सत में वो फोन काट देते हैं।
0: अरे वाह, तुम्हारी शायरी का कुछ तो फायदा हुआ। अब तुम बोलते रहो, हम चलते हैं।
1: अरे,

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: वो खिड़की पर बैठी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका इंतजार इंतजार ही न रह जाए।
0: सफर पर निकलने से पहले बस एक छोटी सी चीज मत भूलिए, हेलमेट। आपकी एक सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बदल सकती है।

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: हाँ तो शुरू होते हैं और अर्ज करते हैं।
0: अर्ज नहीं होता अर्ज, अर्ज
1: शायरी पे ध्यान लगाओ।
0: इरशाद
1: रोडवेज बस जैसा अपना हाल है यारों।
0: मेरा नहीं तुम्हारा ही होगा,
1: सबका ही है। सब कुछ टूटा फूटा है फिर भी अपना रुतबा है यारों।
0: ये बात तो सही है।
1: और बस की याद आती है जब भी लाइफ में कुछ समझ नहीं पाता हूँ।
0: कैसे कैसे?
1: कंडक्टर बोलता है आगे बढ़ो तो मैं मोटिवेट हो जाता है।
0: अरे यार वो तो मैं कह रहा था कि मुंह उठाकर बस से उतरो और आगे बढ़ो। अब तुम बोलते रहो, मैं तो चली को मेरी बस आ गई।
1: सुनो सुनो, हेलो।

कई बार ना हम लोग इतना ज्यादा शॉर्टकट के पीछे भागते हैं कि खुद का नुकसान करा लेते हैं। वेलकम बैक टू रेडियो महारानी, मैं हूँ आरजी अंशली आपके साथ और शो चल रहा है मॉर्निंग एक्सप्रेस। तो भाई जिस शॉर्टकट की मैं बात कर रही थी वो है शॉर्टकट से जॉब मिलेगी और बस इसी के चलते ना आपका पूरा बैंक बैलेंस खाली हो जाएगा। दरअसल एक शॉकिंग केस फिर से आ गया। एक फ्रॉडस्टर ने खुद को मिनिस्ट्री से कनेक्टेड बताकर लोगों को गवर्नमेंट जॉब दिलाने का प्रॉमिस करके उनके अच्छे खासे पैसे ठग लिए। अगर इस फ्रॉड की बात करूं, बेसिकली इस फ्रॉड में होता क्या है, सबसे पहले तो आपसे फेक प्रॉमिसेस किए जाते हैं कि आपकी जॉब पक्की है, आपको किसी भी तरह की कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एंड सेकंड थिंग, आपको ऐसे फेक डॉक्यूमेंट्स दिखाए जाते हैं, आपको इन्फ्लुएंस किया जाता है कि अब तो आपकी जॉब लग ही जाएगी। एंड साथ ही आपको ट्रस्ट दिलाकर लाखों रुपए आपसे ले लिए जाते हैं। और अगर इस पर्टिकुलर फ्रॉड की मैं बात करूं तो अब तक 40 लाख रुपए तक का स्कैम हो गया है लोगों को फेक प्रॉमिसेस करके। अब आप सोच रहे हैं कि पता कैसे लगाए क्या सही है क्या गलत है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताती हूँ कि आइए जानते हैं कि किस तरह से आपको इस फ्रॉड में फंसाया जा सकता है। पहले तो फ्रॉडस्टर आप तक आएगा, आपको गवर्नमेंट कनेक्शन के नाम पर बहुत सारे स्टोरीज बताएगा, बहुत सारे इंसिडेंट्स बताएगा जहां पर वो आपका ट्रस्ट जीत लेगा। साथ ही आपके साथ एक अर्जेंसी क्रिएट की जाएगी सो दैट कि आप सोच ना सके ना समझ सके कि ये एक्चुअल में फ्रॉड है या जेन्युइन सोर्स है। फेक पेपर्स आपको दिखाए जाएंगे, आपका ट्रस्ट जीत लिया जाएगा। तो इस तरह की फ्रॉड से बेसिकली आपको बचना कैसे है? किसी भी जॉब के लिए पैसे ना दें, क्योंकि कोई भी जॉब वैकेंसी आपसे पैसे नहीं लेती है। एंड सेकंड थिंग, ऑफिशियल वेबसाइट और प्रोसेस पर ट्रस्ट जरूर करें, डॉक्यूमेंट्स और ऑफर्स वेरीफाई जरूर करना, साथ ही टू गुड टू बी ट्रू ऑफर से सावधान रहें, क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट एजेंसीज आपको ये इस तरह की प्रोमिसेस नहीं करती है कि आप उन्हें पैसे देंगे तभी आपको जॉब मिलेगी। तो बस यही कहना चाहती हूँ कि मेहनत वाली जॉब ही सेफ होती है, शॉर्टकट वाली जॉब नहीं। सो शॉर्टकट को साइड कर दीजिए और अपने अकाउंट के साथ किसी भी तरह का रिस्क ना लीजिए। साथ ही सुनते रहिए रेडियो महारानी, मिलता है इस म्यूजिक ब्रेक के बाद।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। एक तेज हॉर्न की ट्रैफिक में सन्नाटा सा कर गई जब एम्बुलेंस के हॉर्न की आवाज कानों में पड़ गई। आज फिर एक जिंदगी इस ट्रैफिक में अपनी सांसों के लिए लड़ रही है जनाब। एम्बुलेंस को रास्ता देकर आप पूरा कर सकते हैं लाखों जिंदगियों के जीने का ख्वाब, क्योंकि एक छोटी सी मदद किसी की जिंदगी को बचा सकती है।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: जिंदगी का सफर कितना भी हसीन हो, एक गलती और सब खत्म।
1: ये सड़कें तुम्हारी कहानियाँ नहीं सुनती, इन्हें सिर्फ तुम्हारी समझदारी दिखती है। इसलिए हाई स्पीड में गाड़ी चलाने से पहले एक बार जरूर सोचे, आपको किसी न्यूज़पेपर के पेज की हाईलाइट बनना है या अपनी खुद की कहानी का राइटर।
2: आपकी सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: हो गया शुरू तो अर्ज किया है।
0: ओहो अर्ज होता है अर्ज।
1: कर रहा हूँ तुम सुन लिया करो बस।
0: इरशाद
1: अरे आगे खाली हो जाएगी।
0: क्या
1: बोल कर ये सारी भीड़ अंदर बुला लेते हैं।
0: कौन है?
1: रोडवेज वाले।
0: ओके ओके।
1: रोडवेज वाले भैया सीट पर चार सवारी तो अपनी गोदी में भी तीन बच्चे बिठा लेते हैं।
0: अरे हाँ यार उस दिन तो लोरी गाकर सुला भी रहे थे।
1: क्या बात है तू?
0: हाँ।
1: आगे सुनो।
0: सुनाओ।
1: रोडवेज की शक्तियों का हम करते हैं कुछ इस तरह इस्तेमाल। लस्सी बनाने के लिए रोडवेज में दही लेकर बैठ जाते हैं।
0: वैसे दिमाग का दही हो रखा है और ऊपर से तू भी। मैं तो चली तू बोलता रहा।
1: अरे एक ग्लास तो पीती जा सुन।

Anjali. शानदार से ट्रैक के साथ एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 एफएम पर। मैं हूं आरजे अंजलि आपके साथ और शो चल रहा है मॉर्निंग एक्सप्रेस। फिलहाल बहुत सारी बातें मैंने आपके साथ की हैं, बहुत सारी अपडेट्स मैंने आज आपको दी हैं और मेरा टाइम हो गया है यहाँ से जाने का। बेसिकली सुबह 7 बजे आई थी और 10 बजने वाले हैं, तो भाई कल फिर से मिलेंगे बहुत सारी बातों के साथ, बहुत सारी अपडेट्स के साथ, बहुत सारे एंटरटेनमेंट के साथ। लेकिन तब तक मेरा इंतजार जरूर कीजिएगा और फिलहाल के लिए दीजिए मुझे इजाजत। मिलते हैं कल सेम टाइम सेम प्लेस ऑन योर रेडियो महारानी 89.6 एफएम पर।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: वो खिड़की पर बैठी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका इंतजार इंतजार ही न रह जाए।
2: सफर पर निकलने से पहले बस एक छोटी सी चीज मत भूलिए, हेलमेट। आपकी एक सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बदल सकती है।
3: जिंदगी का सफर कितना भी हसीन हो, एक गलती और सब खत्म।
4: ये सड़कें तुम्हारी कहानियां नहीं सुनती, इन्हें सिर्फ तुम्हारी समझदारी दिखती है। इसलिए हाई स्पीड में गाड़ी चलाने से पहले एक बार जरूर सोचे, आपको किसी न्यूज़पेपर के पेज की हाईलाइट बनना है या अपनी खुद की कहानी का राइटर।
5: आपकी सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी।
0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा, ओ ये सही है बेटा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जोड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

इसी गाने के साथ आप सभी का स्वागत है मेरे शो में, यानी कि फरीदाबाद की गलियों से। हम बात करते हैं दोस्तों सबसे पहले मौसम के बारे में, जहां मौसम इस वक्त बिल्कुल ऑसम हो रखा। जहां कल रात थोड़ी बहुत बूंदाबांदी से बारिश की शुरुआत हुई, रात सुबह फिर अच्छे मौसम के साथ बारिश हुई, जहां 10:09 है और 32 डिग्री सेल्सियस तापमान शहर का बना हुआ। एक वाई भी 160 से कम होकर 110 पर आ खड़ा हुआ है। बात की जाए एक वाई के बारे में तो इसे मेंटेन रखना हमारा ही काम है। आज पूरे बादल छाए रहने वाले हैं, कल और परसों का मौसम भी कुछ ऐसा ही। बाकी ऐसी चर्चा होती रहेंगी, उससे पहले कॉन्टैक्ट

0: हाँ तो अर्ज किया है।
1: ओहो, अर्ज होता है अर्ज।
0: कर रहे हैं आप, सुनो तो
1: इरशाद।
0: स्कैम कॉल करने वालों का फोन हमारे नंबर पर आ गया।
1: तुम्हारे नंबर पे?
0: हाँ जी।
1: अच्छा,
0: और उन्होंने पूछा क्या?
1: क्या पूछा?
0: हाँ, पैसे दे दो वरना कार ठोकने के जुर्म में आपका बेटा जेल जाएगा, उन्होंने ये बताया।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ, हमने कहा भाई सिंगल हूँ मैं, ना तो मेरा कोई बेटा है ना मेरी कोई कार है।
1: अच्छा,
0: हमारी लाइफ में खटारा जी साइकिल है, वो भी बेकार है।
1: बिल्कुल तुम्हारी तरह। ओ पागल, तुम्हें कहना चाहिए था वो भी उधार ली हुई है।
0: नहीं नहीं, रेंट पे है, ईएमआई पे।
1: खैर, अब तुम बोलते रहो, हम सबको बता कर आते हैं कि स्कैम कॉल्स को वैसे ही इग्नोर करें जैसे तुम्हारी क्रश तुम्हारी कॉल को करती है।
0: इज्जत का फालूदा कर दिया यार।
1: बाय।
0: सुनो तो, कहाँ चली?
1: बाय।

इसी गाने के साथ एक बार फिर से लौट आया हूँ लेकर के शो यानी कि फिल्मी फ्लेवर्स वाले फरीदाबाद के गलियारों की चर्चा। यहाँ दोस्तों अब हम बात करते हैं, जहाँ रेलवे स्टेशन की बात की जाए, अगर कभी भी ट्रैवल करने के दौरान आपको रेलवे स्टेशन पर अगर सस्ता खाना मिलता है तो आप 7703819920 पर कॉल कर सकते हैं, वहाँ पे कंप्लेंट रजिस्टर करवा सकते हैं। जी हाँ, ऐसा होने पर उस पर कार्रवाई की जाएगी, आपको खाना दोबारा प्रोवाइड किया जाएगा और ख़राब खाना ना हो इसके लिए रेलवे अलग तरह का के एक्सपेरिमेंट्स करते नजर आता है, कहीं भी किसी को दिक्कत ना आए। अभी एक नंबर भी रिलीज़ किया है जो नंबर हमारे पास रहना चाहिए, ट्रैवलिंग के दौरान कहीं भी अगर बासा खाना आपको मिलता है तो आप रेलवे स्टेशन के इस नंबर पर कॉल करके कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हैं।

0: सुनना सुनना।
1: जिनके कान संगीत सुनना पसंद करते हैं वो रेडियो महारानी 89.6 के अलावा और कुछ नहीं सुनते हैं।
2: अरे रफ्ता रफ्ता देखो आग मेरी लड़ी है।

इसी गाने के साथ एक बार फिर से लौट आया हूँ लेकर के शो यानी कि फरीदाबाद की गलियों से। यहाँ से बात करते हैं, जैसे कि आप सब जानते हैं रेनी सीजन, जहाँ धीरे धीरे बारिशों की शुरुआत हो चुकी है, तो इन बारिशों में आपसे शहर का ख्याल रखने के लिए सिर्फ एक ही बात कहूँगा, जैसे कि पॉल्यूशन भी मेंटेन किया जा सके और शहर की आवाज़ साफ सुथरी। इस सीजन दौरान बात की जाए अगर जो प्लांटेशंस की जाती है, प्लांटेशन ड्राइव्स रन की जाती है, बहुत सारी संस्थाएं बहुत से इंस्टीट्यूशंस भी करते हैं, इन सीजन में पौधे लगाए जो है बहुत जल्दी पनपते हैं। आपसे ये कहूँगा कि चाहे आप एक से दो पौधे लगाएं, ज़्यादा ना लगाएं, लेकिन उनकी उतनी केयर कर सकें कि हम लोग एक एक पौधा मिलकर भी सारे लगाएंगे और एक एक पौधे की केयर करेंगे तो शहर में बिल्कुल पौधे जो हैं, हरियाली जो है उसकी तादाद बढ़ेगी और कहीं ना पॉल्यूशन भी कम होगा और साफ सुथरी हवा हमारे शहर में बनी रहेगी। बाकी ऐसे भी चर्चा होंगी, उससे पहले कौन

0: पता है दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
1: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: 89.6 FM
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

0: करे और आपको दे सुकून की नींद।
1: और सिर्फ यही नहीं, दे ऑल्सो स्पेशलाइज इन पंचकर्मा ट्रीटमेंट, वेट लॉस मैनेजमेंट, पेन मैनेजमेंट, स्किन डिसऑर्डर्स, हाइपरटेंशन एंड ब्लड शुगर।
2: तो आप टेंशन किस बात की, जुड़े कायरली आयुर्वेदिक सेंटर से, हाउस नंबर 409 सेक्टर 15 नियर गेट नंबर 3 फरीदाबाद हरियाणा। और अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9650680900 और पाएं 25% का डिस्काउंट। सो कम एंड ज्वाइन कायरली आयुर्वेदिक सेंटर एंड टेक अ डीप ब्रीथ।

इसी गाने के साथ एक बार फिर से लौट आया हूँ लेकर के शो यानी के फिल्मी फ्लेवर। यह दोस्तों सिनेमा के गलियारे में बहुत सी चर्चाएं करने वाला हूँ कि कौन कौन सी नई कहानियां सिनेमा घरों में जो इस वीकेंड रिलीज हुई किस पायदान पर हैं, बताऊंगा आपको इनकी रेस में कौन सी कहानियां शामिल होती कौन सी पीछे होती नजर आई। वही आने वाले वक्त में और क्या क्या कहानियां आएंगी, कुछ रोमांचक कॉमेडी स्पाय थ्रिल एक्शन और रोमांस से भरपूर। हिंदी पट्टी से साउथ इंडस्ट्री तक के चर्चे और तो कहीं होगा पंजाबी गानों का धमाल तो कहीं है हॉलीवुड की सीरीज का कमाल। ट्रेलर टीजर गाने फर्स्ट लुक ये सारी चर्चाएं करने वाला हूँ सिनेमा के गलियारे में। लेकिन ये सारी चर्चाएं करने से पहले यानी कि सिनेमा के गलियारे में घुमाने से पहले सुना देता हूँ कुछ धमाकेदार से गाने ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM।

इसी गाने के साथ एक बार फिर से लौटा है लेकर के शो यानी कि फिल्मी फ्लेम। यहाँ दोस्तों अब हम बात करते हैं सिनेमा के गलियारे से पंजाबी इंडस्ट्री की बेहतरीन कहानी के बारे में, इश्कनामा। जी हाँ, अरविंद खैर के डायरेक्शन में आ रही ये कहानी जो कि 24 जुलाई को थिएटर्स में रिलीज की जाएगी, पंजाबी सिनेमा की बेहतरीन कहानियों में से एक होने वाली। जहाँ पे जय रंधावा और शहनाज गिल इस कहानी में एक दूसरे के अपोजिट यानी मेल लीडिंग किरदारों में नजर आएंगे। बात करें एक ट्रू स्टोरी है दो प्यार करने वालों की, निम्मा और नसीमा। देखते हैं फर्स्ट पोस्टर को ही इतना खूबसूरत और इतने बेहतरीन तरीके से दिखाया गया है कि इस कहानी को देखना चाह रहा है हर कोई। जहाँ पे एक रोमांटिक लव स्टोरी जहाँ कुछ एक्शन भी होने वाला है, इंतजार रहेगा ये कहानी की रिलीजिंग का। बाकी ऐसी भी चर्चा होती रहेंगी, उससे पहले एक और ट्रैक।

0: सुनना सुनना।
1: जिनके कान संगीत सुनना पसंद करते हैं वो रेडियो महारानी 89.6 के अलावा और कुछ नहीं सुनते हैं।
2: अरे रास्ता रास्ता देखो आग मेरी लड़ी है।

इसी गाने के साथ एक बार फिर से लौट आया हूँ लेकर के शो यानी कि फिल्मी फ्लेवर। यहाँ दोस्तों अब हम बात कर रहे हैं सिनेमा के गलियारे से ग्राम चिकित्सालय के सीजन 2 के बारे में, जहाँ इसकी रिलीज डेट सबके सामने आ चुकी है, जहाँ इसको 23 जून को ओटी प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम किया जाने वाला है। अमोल पराशर वापस कर रहे हैं डॉक्टर प्रभात के किरदार में। मेकर्स ने पोस्टर भी शेयर किया इसकी रिलीजिंग डेट के साथ, जहां पर बात की जाए ग्लोबल रोल आउट के साथ इंडिया और 200 से ज्यादा कंट्रीज में अवेलेबल होने वाली है सीरीज। सीजन 2 पिछले सीजन के इवेंट्स के बाद की रूरल हेल्थ केयर जर्नी को कंटिन्यू करेगा और टोन कॉमेडी ड्रामा रहेगा। कहा जा रहा है कि यहाँ पे बातकंजी गाँव और सोशल इश्यूज के साथ ह्यूमर का मिक्स हाईलाइट सबके सामने आएगा। इंतजार है इसके सीजन 2 की रिलीजिंग का, जहाँ पहले सीजन को अच्छा खासा प्यार मिलता नजर आया। अब देखें ये ग्राम चिकित्सालय क्या कुछ धमाल लाएगा अपने आने वाले सीजन में। बाकी ऐसी भी चर्चा होती रहेगी, उससे पहले कॉन्ट्रैक्ट

0: अरे भाई इतनी तेज रफ्तार में कहाँ जा रहा है?
1: भाई मैं तो लंबी रेस का घोड़ा हूँ, रफ्तार से ही जाऊंगा।
0: अरे भाई रुक तो जा, धीरे चलेगा तो दूर तक जाएगा, वरना हॉस्पिटल के बिल ही भरता रह जाएगा।
2: सड़क पर चलते वक्त स्पीड का रखें खास ध्यान, किसी भी लापरवाही से मत बनिए हॉस्पिटल के मेहमान, क्योंकि आपकी सुरक्षा है आपकी जिम्मेदारी।
3: रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: सर आपका KYC अपडेट करना है, मैंने आपको एक लिंक भेजा है, उस पर क्लिक कीजिए, वरना आपका अकाउंट और ATM दोनों ही बंद हो जाएगा।
1: बट मेरा KYC तो ऑलरेडी अपडेटेड है।
2: सावधान, अनजाने कॉल्स, फर्जी टेक्स्ट, लिंक और जाली ऐप से अपना पिन, OTP, पासवर्ड कभी भी किसी के साथ शेयर न करें। आप रहेंगे सावधान तो नहीं होगा नुकसान। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: 89.6 FM
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं।
3: कुछ हटके
4: चाय सिर्फ जुबान ही नहीं बल्कि दिलों को छू जाती है। होती तो सिर्फ एक कप है पर बातें दिल खोल कर हो जाती हैं।
5: पुराने दोस्त और भूले बिसरे किस्से हंस टी स्टॉल की चाय जब भी पियो रिश्तों में नए जायके घोल जाती है।
6: यारों का 48 साल पुराना चाय का अड्डा सुबह 5 बजे से रात 8 बजे तक हंस टी स्टॉल गोपी कॉलोनी चौक ऋषि मार्केट नियर लक्ष्मी नारायण मंदिर।

इसी गाने के साथ एक बार फिर से लौट आया लेकर के शो यानी कि फिल्मी फ्लेव। यहाँ दोस्तों अब हम बात करते हैं ऋतिक रोशन के बारे में, जिनको बहुत ही बढ़िया एक्शन स्टार तो कहा ही जाता है, लेकिन साथ ही डांस मूव्स का मास्टर भी कहा जाता। जहाँ ऋतिक रोशन ना ये कहते नजर आए हैं कि अब उन्हें जो रोल्स ऑफर हों उनसे वो कुछ डिफरेंट चाहते हैं। जी हाँ, फुली सेटिस्फाइड नहीं है जी, उनका कहना है कि गुड गाय टाइप रोल देखना चाहते हैं, लेकिन उनका कहना है कि अब मैं ग्रे शेड किरदार या फिर लक बाय चांस के जफर जैसा पार्ट करना चाहता हूँ। ऋतिक रोशन की ये चर्चा सोशल मीडिया पर आने के बाद से अब फैंस निगाहें टिकाए बैठे हैं कि यहाँ पे क्या उनके पास कोई ऐसा प्रोजेक्ट आने वाला है, क्या वो कोई मेकर्स उनके लिए ऐसा किरदार सोच कर केस फाइनल करने वाले हैं या नहीं, रहेगा इंतजार। बाकी ऐसी भी चर्चा हो रही रहेंगे, उससे पहले एक और खूबसूरत सा ट्रैक ओनली ऑन रेडियो महारानी।

इसी गाने के साथ एक बार फिर से लौट आया हूँ लेकर के शो यानी कि फिल्मी फ्लेवर। यहाँ दोस्तों हम बात करते हैं गुल्लक सीजन 5 के बारे में। जी हाँ, कंफ्यूजिंग फैमिली ड्रामा बताएगा ये किस क्रिटिक्स के साथ इस बार सबके सामने आ रहे हैं, जहाँ पे जॉमी और गीतांजलि कुलकर्णी की परफॉर्मेंस को सीजन की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ हाईलाइट किया गया। बात करें सबसे ज्यादा रिव्यूज की तो सीजन 5 मिश्रा फैमिली की एवरीडे लाइफ एस्पिरेंट्स और स्मॉल जॉयस को नॉर्मली नेचुरली कैप्चर करता नजर आएगा। जो व्यूअर्स ने इसे कमिंग होम जैसा फील बताया, जबकि कुछ ने कहा कि सीजन पहले जितना एक्साइटेड नहीं पर अब भी इमोशनली स्ट्रॉन्ग। अगर आपने गुल्लक का पांचवा सीजन देखते तो बताइएगा जरूर हमारे व्हाट्सएप नंबर 9654896896 पर कि आपको कैसी लगी पांचवी कड़ी, क्या बाकी चार के मुकाबले थोड़ी फीकी पड़ती नजर आई या नहीं।

0: घर का छोटा हूँ इसलिए निकम्मा हूँ।
1: सुन भाई सुरेंद्र।
2: हाँ भाई सुरेंद्र।
1: मैं घर का छोटा हूँ जिसको सब निकम्मा बोलते हैं। मम्मी बोलती है काम कर लिया कर, रोज सुबह पानी की बोतल फ्रिज में रख देता हूँ, रिमोट मैं ढूंढता हूँ, पापा का फोन मैं चार्ज करता हूँ, जब सब सोते हैं तब लाइट बंद मैं करता हूँ, जब घर में कुछ गलत होता है सब बोलते हैं इसी ने करा होगा, मेरी बातों को कोई सीरियसली नहीं लेता, मार्केट से सामान मैं ही लेकर आता हूँ, फिर भी सब मुझे ही कहते हैं।
2: सही कह रहा है तुरेंद्र, कितना भी कर ले, कार का छोटा बेटा रही का तो निकम्मा ही।

इसी गाने के साथ एक बार फिर से लौट आया हूँ लेकर के शो यानी कि फिल्मी फ्लेवर। यहाँ दोस्तों अब हम बात करते हैं सिनेमा के गलियारों से बेबी डू डाई जू का इंट्रोडक्शन वीडियो आउट हुआ, जहाँ उमा कुरैशी को बेबी कर मार मार के रूप में इंट्रोड्यूस किया गया है मेकर्स ने उसे इंडियाज फर्स्ट देसी हिचो वुमेन के रूप में लेकर गया। फिल्म का टोन न्यू नॉयर एक्शन थ्रिलर के रूप में दिखाया गया है जहां पे स्टाइलिश वायलेंस, डार्क ह्यूमर और मिस्ट्री का मिक्स होगा। बात की जाए उमा कुरैशी इसमें डिफरेंट किरदार में सबके सामने आ रही है, जहां कहानी 3 जुलाई 2026 को थिएटर्स में रिलीज की जाएगी। उमा के साथ सिकंदर खैर, चंकी पांडे, सीमा पाहवा, रचिता सिंह नजर आ रहे हैं। रहेगा इंतजार इस कहानी के रिलीजिंग का, जहां पे मरुधर शेखावत भी इंपॉर्टेंट किरदार में सबके सामने होंगे। बाकी ऐसी भी चर्चा होती रहेंगी, उससे पहले एक और ट्रैक।

0: जिंदगी का सफर कितना भी हसीन हो, एक गलती और सब खत्म।
1: ये सड़कें तुम्हारी कहानियाँ नहीं सुनती, इन्हें सिर्फ तुम्हारी समझदारी दिखती है। इसलिए हाई स्पीड में गाड़ी चलाने से पहले एक बार जरूर सोचे, आपको किसी न्यूज़पेपर के पेज की हाईलाइट बनना है या अपनी खुद की कहानी का राइटर।
2: आपकी सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: ना चले हैं, ठंड पे गई है, कार चलिए
1: नहीं पहले जब
2: चांदनी ने पुन्ने आते जल सा लगाया सदा चील मूवी आया चंद मुख मेहमान सी।
3: पर फिर से लौटा हूं लेकर के शो यानी के फिल्मी फ्लेवर। यहां दोस्तों हम बात करते हैं दो बढ़िया कहानी दृश्यम 3 और करूपू के बारे में। जहां इन कहानियां साथ में ऑब्सेशन का नाम भी लेना वैसे सही होगा। दृश्यम 3 का वर्ल्ड वाइड 238 करोड़ रुपए रहा और करूपू का 305। ऑब्सेशन का इंडिया नेट टोटल 15 करोड़ पर ही सिमट के रह गया। तीन कहानी जो बेहतरीन काम लोगों को लग रहा था होगा। हालांकि दृश्यम और करूपू तो फिर भी अपने पायदान पर कायम होती नजर आ रही है। ऑब्सेशन को शायद अभी इंडियन व्यूअर्स ने इतना पसंद नहीं किया जितना कि वर्ल्ड वाइड पसंद किया जा रहा है इस कहानी को। बाकी करूपू और दृश्यम अब इस रेस में कहां पर पहुंचते हैं देखना होगा। बाकी ऐसी भी चर्चा होती रहेंगी। उससे पहले एक और ट्रैक।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। मैं हूं एम्बुलेंस, हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती है। कुछ को मिल जाती हैं सांसें यहां, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां आगे के लम्हे जीना चाहती हैं।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, ज्यादा चिल्लाने से बात समझाई नहीं जाती, सिर्फ दिल दूर हो जाते हैं। इसलिए आज से ही आवाज धीमी और बात गहरी, फिर देखिए जिंदगी कितनी खूबसूरत लगती है।

0: What, Chunka?
1: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये स्टेशन रेडियो महारानी है।

0: 89.6 FM
1: कुछ छक्के
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।
4: अरे अरे रुक जाओ जरा, कैलेंडर चेक किया क्या आज? क्योंकि आज की तारीख सिर्फ डेट नहीं, फुल ऑन फिल्मी अपडेट है बॉस। कभी इसी दिन किसी हीरो ने एंट्री मारी थी ऐसे कि पूरा थिएटर सीटी मार उठा था।
5: मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिश।
4: और कभी किसी ने प्यार का ऐसा सीन दिया कि लोगों ने बारिश का वेट ही करना शुरू कर दिया।
6: प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है।
4: और कभी किसी ने ऐसा स्टाइल मारा कि आज तक वो उस टाइम का ट्रेंड बन गया।
7: आवारा हूँ, आवारा
4: हूँ। समझे या और समझाऊं? ये तारीख सिंपल नहीं है, ये तो फुल ऑन फिल्मी गोल्ड माइन है। तो सुनने के लिए सिनेमा का स्वैग, सुनना ना भूले सिनेमा का कैलेंडर विद आरजे मोनिक, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: इसी गाने के साथ एक बार फिर से लौट आए लेकर के शो यानी के फिल्मी फ्लेवर। अब दोस्तों वक्त तो चला रात्रों का, यानी कि यहाँ अगर चर्चा की जाए तो फिल्मी फ्लेवर में वक्त है सिनेमा के कैलेंडर का।
1: है अपना दिल तो आवारा।
0: हेलो
1: अपना दिल तो आवारा, न जाने किसने आएगा। है अपना दिल तो आवारा।

फलक से जुदा, ये एक टूटा हुआ तारा, न जाने किस पे आएगा, है अपना दिल।

इसी गाने के साथ एक बार फिर से लौट आया लेकर के शो यानी कि फिल्मी फ्लेवर। यहाँ दोस्तों बात करते हैं सिनेमा के कलंदर में एक बहुत ही बढ़िया स्टार के बारे में, जहाँ पे सुरैया इनका नाम है। और बात की जाए तो ये सिर्फ एक्ट्रेस नहीं थी, सिंगर भी नहीं, बल्कि दो कलाओं की मल्लिका थी। जी हाँ, आज के दौर में एक्टर्स अलग और सिंगर्स अलग होते हैं, लेकिन वक्त था जब एक ही कलाकार स्क्रीन पर एक्टिंग भी करता था और अपने गाने भी खुद गाया करता था। उस दौर की सबसे बड़ी सिंगिंग सुपरस्टार थी सुरैया। 70 से ज्यादा फिल्मों में काम किया और 300 से ज्यादा गाने गाए। गोल्डन एरा की बात हो और सुरैया का नाम ना ऐसा हो ही नहीं सकता। 15 जून 1929 को सुरैया का जन्म पंजाब के गुजरांवाला शहर में हुआ। उनकी फिल्म की अगर बात की जाए तो उनका परिवार बॉम्बे आया गया और यहीं से उनकी फिल्मी करियर की शुरुआत हुई। बहुत कम लोग जानते हैं कि सुरैया ने सिंगिंग या एक्टिंग की कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं ली, फिर भी अपनी मेहनत और नेचुरल टैलेंट के दम पर वो 1940s और 1950s की सबसे बड़ी स्टार की फीस कई बड़े मेल स्टार से भी ज्यादा थी। उन्हें अपने दौर की हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस में गिना जाता। ऐसी और भी चर्चाएं करूंगा इनके बारे में कि सुनाए था उससे पहले कुछ और बढ़िया से गाने ओनली ऑन रेडियो महारानी।

मस्त बहारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं, चाहे फूलों के साए से खेलूं, चाहे कली से प्यार।

ओल्ड हिट्स या अनरिलीज्ड जेम्स। फिल्मी फ्लेवर में आरजे मोनिक आपको सुनाएंगे हर फिल्मी किस्सा ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM। गुड

मस्त बहारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं, चाहे फूलों के साए से खेलो, चाहे कली से प्यार करूं।

रिकॉर्ड हिट्स या अनरिलीज्ड जेम्स। फिल्मी फ्लेवर में आरजे मोनिक आपको सुनाएंगे हर फिल्मी किस्सा ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM। कुछ

इसी गाने के साथ एक बार फिर से लौट आए लेकर के शो यानी के फिल्मी फ्लेवर। यहाँ अब हम बात कर रहे हैं सुरैया की यादगार फिल्मों के बारे में। जहाँ अनमोल घड़ी, प्यार की जीत, दिल लगी, मिर्जा गालिब जैसी कहानियों में उन्होंने किरदार निभाया। फिल्म के उनकी परफॉर्मेंस को इतनी सराहना मिली कि उस वक्त के पीएम नेहरू जी ने उनकी तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने मिर्जा गालिब की रूह को ही जिंदा कर दिया। इस फिल्म से सुरैया को सिनेमा के इतिहास में अमर कर दिया। सुरैया की जिंदगी का एक पहलू और भी है जो आज तक लोग याद करते हैं, उनकी और देवानंद साहब की प्रेम कहानी। दोनों ने कई फिल्में साथ काम किया और एक दूसरे से मोहब्बत भी की, लेकिन पारिवारिक विरोध के कारण ये रिश्ता शादी तक नहीं पहुंच सका। कहते हैं कि सुरैया ने फिर कभी शादी की ही नहीं। ये बॉलीवुड की सबसे मशहूर अधूरी प्रेम कहानियों में से एक मानी जाती है। आज भी जब गोल्डन एयर की बात होती है तो सुरैया का नाम बड़े अदब के साथ लिया जाता है। उनकी आवाज, उनकी अदा, उनकी फिल्में आज भी सिनेमा प्रेम दिलों में जिंदा है। ऐसी और भी चर्चा आप सबके लेकर के आता रहूंगा सिनेमा के गलियारे से, लेकिन आज नहीं, उससे मुलाकात होगी कल के दिन। सेम टाइम सेम जगह करो ढेर बातें, तब सुन रहे रेडियो महारानी।

0: साइबर ठगी से बचने के लिए अपनाए कुछ सरल उपाय।
1: एटीएम पिन समय समय पर बदलते रहें। बिना गार्ड वाले एटीएम का उपयोग करने से बचें।
0: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जन

0: खराब सड़कों से छुटकारा, सुरक्षित सफर हमारा।
1: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये स्टेशन रेडियो महारानी है।

कभी कभी एक सिंपल स्माइल पूरी कंट्री को याद रह जाती है, और यामी गौतम की कहानी वही स्माइल से शुरू होती है। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ, एंड आप सुन रहे हैं कामयाबी की उड़ान। और आज कामयाबी की उड़ान में हम लोग बात कर रहे हैं नेशनल क्रश यामी गौतम की। हिमाचल की एक सीधी सादी लड़की, ना लाउड लॉन्च ना सुपरस्टार सरनेम, बस एक काम फेस, नेचुरल ब्यूटी और कैमरा फ्रेंडली इनोसेंस। शुरुआत हुई टीवी सीरियल से, स्मॉल स्क्रीन स्मॉल रोल्स, लेकिन फिर एक एड आई और पूरा इंडिया सडनली पूछने लगा ये लड़की है कौन। फेयरनेस क्रीम का वो एड यामी गौतम को घर घर फेमस कर गया। आयरनी देखो, इंडस्ट्री ने उन्हें पहले ब्यूटी के लिए नोटिस किया, लेकिन आगे जाके वही लड़की अपनी एक्टिंग से सबको सरप्राइज करने वाली थी। यामी गौतम पहले स्क्रीन पर पिटी लगी, फिर धीरे धीरे पावरफुल लगने लगी, और कैसे हुई उनकी एक परफेक्ट बिगिनिंग, करेंगे इसके बारे में बात मगर इस गाने के बाद। रेडियो महारानी 89.6 पर आप सुन रहे कामयाबी की उड़ान। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ।

0: फिल्म मेरा नाम जोकर का ये गाना इशारा करता है कि सड़क नियम सिर्फ गाड़ी चलाने वालों के लिए नहीं है बल्कि पैदल चलने वालों के लिए भी है। इसीलिए राइट लेफ्ट राइट देखकर ही रोड पार करें, वो भी जीब्रा क्रॉसिंग से।
1: आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही

0: सड़क के किनारे हमेशा अपने सीधे हाथ की तरफ चले, वो भी बिना फोन इस्तेमाल किए हुए, ताकि आपके परिवार को कभी इस फिल्म का दूसरा गाना ना गाना पड़े।
1: जाने कहां गए वो दिन।
2: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जनहित में जारी।
3: ओ चन्नती कुड़ी, ओ चन्नती कुड़ी।

मेथू झट नू पसंद होगी, गर्मी च ठंड होगी, मैं तेरा चॉकलेट तू मेरी खंड होगी, मैं भी मलंग होया तू भी मलंग होगी, तिरछी नजर तेरी आशकाली पंग होगी।

हॉलीवुड में डेब्यू सब करते हैं, लेकिन कुछ लोग पहली फिल्म में ही फ्रेश एयर जैसे फील होते हैं। स्वागत है आप सभी का फिर से रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ, एंड आप सुन रहे हैं कामयाबी की उड़ान। साल था 2012, फिल्म आई विक्की डोनर। आयुष्मान खुराना के अपोजिट एक सिंपल बंगाली गर्ल आशिमा रॉय। नो ओवर एक्टिंग, नो ड्रामेटिक हीरोइन एनर्जी, बस नेचुरल परफॉर्मेंस, और ऑडियंस को वही पसंद आया। यामी उस एरा की टिपिकल ग्लैमरस हीरोइन नहीं लग रही थी, वो रियल लग रही थी। सॉफ्ट वॉइस, सिंपल एक्सप्रेशंस और एक वार्म्थ। फिल्म हिट हुई, क्रिटिक्स ने नोटिस किया, सबको लगा बॉलीवुड को एक फ्रेश एक्ट्रेस मिल गई है। उन्होंने एंट्री ग्लैमरस नहीं ली, कंफर्ट से मारी थी। और फिर कैसे मिला उनको प्रिटी फेस का लेबल, करेंगे इसके बारे में आगे भी बात, मगर इस गाने के बाद। रेडियो महारानी 89.6 पर आप सभी के लिए ये गाना, आप सुन रहे हैं कामयाबी की उड़ान। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ।

0: बच्चों को स्कूल से लाने में लेट हो जाती, इसीलिए रेड लाइट जंप करी।
1: बारिश तेज होने से पहले घर पहुंच जाऊं, बस इसीलिए गाड़ी तेज चला रहा था।
2: मेरा घर तो यही पास में है, इसलिए रॉन्ग साइड से जा रहा हूं। और अंकल मेरी तो साइकिल है, कोई गाड़ी थोड़ी है।
3: रेडियो महारानी पूछता है, अपनी और दूसरों की जान खतरे में डालने का आपके पास क्या बहाना है? तो ट्रैफिक रूल्स की रिस्पेक्ट करो, तो ना एक्सीडेंट होगा और ना ट्रैफिक की परेशानी। FM 89.6 द्वारा जनहित में जारी।

बॉलीवुड की सबसे डेंजरस हैबिट है, और वो है कि अगर एक्ट्रेस खूबसूरत हो तो लोग अज्यूम कर लेते हैं कि बस इसकी खूबसूरती इसका टैलेंट है। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ, एंड आप सुन रहे हैं कामयाबी की उड़ान। और आज कामयाबी की उड़ान में हम बात कर रहे हैं यामी गौतम की। यामी गौतम के साथ भी सेम यही हुआ, उन्हें रिपीटेडली ब्यूटीफुल हीरोइन कैटेगरी में डाल दिया गया। फिल्म्स आई, सॉन्ग्स हिट हुए, लेकिन उनके रोल्स ऑफन लिमिटेड रहे, कभी लव इंटरेस्ट, कभी सपोर्टिंग प्रेजेंस। और धीरे धीरे लोग उनकी एक्टिंग की जगह उनकी अपीयरेंस की बात ज़्यादा करने लगे। लेकिन इंटरेस्टिंग बात पता क्या है, यामी कभी डेस्परेट नहीं दिखी, ना अननेसेसरी कॉन्ट्रोवर्सी, ना अटेंशन सीकिंग बिहेवियर। वो क्वाइटली काम करती रही और शायद अंदर ही अंदर वेट कर रही थी एक ऐसे रोल का जहां वो सिर्फ प्रिटी नहीं परफॉर्मर भी प्रूव हो सके। इंडस्ट्री उन्हें ब्यूटीफुल बोलती रही और वो साइलेंटली बेटर एक्ट्रेस बनती रही। और कैसे आया उनकी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट, करेंगे इसके बारे में बात मगर इस गाने के बाद। रेडियो महारानी 89.6 पर आप सुन रहे हैं कामयाबी की उड़ान। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ।

0: रिड्यूस, रीयूज, रीसाइकिल, यही है वो RRR जिन्हें फॉलो करके हमारा शहर एनवायरनमेंट से ऑस्कर जीत सकता है। पर ये 3 R आखिर है क्या? रेडियो महारानी आपको आसान भाषा में समझाता है। रिड्यूस यानी प्लास्टिक से बनी चीजों का कम से कम इस्तेमाल, रीयूज यानी जो दोबारा काम आ सके सिर्फ उसी प्लास्टिक का इस्तेमाल, रिसाइकिल यानी वेस्ट प्लास्टिक को फेंकने के लिए सिर्फ ब्लू डस्टबिन का इस्तेमाल।
1: FM 89.6 का रेजोल्यूशन यही है कि सिंगल यूज प्लास्टिक अब ऑप्शन में ही नहीं है।
2: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जनहित में जारी।

बॉलीवुड में हर एक्टर के करियर में एक मोमेंट आता है जहां ऑडियंस सडनली रियलाइज करती है, ओह ये तो सीरियसली एक्टिंग कर सकती है। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ, एंड आप सुन रहे हैं कामयाबी की उड़ान। और आज कामयाबी की उड़ान में हम लोग बात कर रहे हैं यामी गौतम की। और यामी गौतम के लिए भी ये मोमेंट आया था, और ये मोमेंट था फ्रॉम द मूवी अ थर्सडे। नो ग्लैमरस हीरोइन रोल, नो डांसिंग सॉन्ग्स, बस एक इंटेंस वुमेन होल्डिंग अ सिटी हॉस्टेज। और यामी कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म थी, वॉइस, एक्सप्रेशंस, स्क्रीन प्रेजेंस, सब कुछ अलग था। ऑडियंस शॉक हो गई थी, ये वही यामी गौतम है? सबके मन में यही सवाल था। और वही एक्टर की बिगेस्ट विक्ट्री होती है जब ऑडियंस आपको दोबारा डिस्कवर करे। उसके बाद आर्टिकल 370 जैसी फिल्म्स ने भी प्रूव किया कि यामी सिर्फ स्क्रीन डेकोरेशन नहीं है, वो पूरी की पूरी फिल्म कैरी कर सकती है। उन्होंने लाउड कमबैक नहीं किया, उन्होंने परसेप्शन चेंज कर दिया। और इसीलिए कभी कभार ऐसा लगता है कि यामी गौतम डिफरेंट है, और वो डिफरेंट क्यों है करेंगे इसके बारे में बात, मगर इस गाने के बाद। रेडियो महारानी 89.6 पर आप सुन रहे हैं कामयाबी की उड़ान। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ।

0: सुरक्षा नियमों को अगर अपनाओगे तो खुद के साथ साथ दूसरों की भी जान बचाओगे, क्योंकि दुर्घटना की है तीन यार, नशा, नींद और रफ्तार।
1: सदा सुरक्षित रहो। अरूर सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

आज के टाइम में जहां हर सेलिब्रिटी कॉन्स्टेंटली विजिबल रहना चाहता है, यामी गौतम का काम रहना ही उनकी इंडिविजुअलिटी बन गई। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ, एंड आप सुन रहे हैं कामयाबी की उड़ान। और आज हम कामयाबी की उड़ान में बात कर रहे हैं यामी गौतम की। यामी गौतम ने इंडस्ट्री को चेज नहीं किया, उन्होंने बस कंसिस्टेंटली काम किया और धीरे धीरे लोगों ने रियलाइज किया कभी कभी साइलेंस भी स्पॉटलाइट बन सकती है। वो उन एक्ट्रेसेस में से नहीं है जो हर वक्त हेडलाइंस में ही रहना चाहती हैं, लेकिन जब भी स्क्रीन पर आती हैं ऑडियंस उन्हें सीरियसली लेती है, और यही पहचान होती है एक अच्छे एक्टर की। ना डेली ड्रामा, ना फेक सोशल मीडिया पर्सनैलिटी, उनकी वाइब ही अलग है। वो अप्रोचेबल लगती हैं, ग्राउंडेड लगती है, और स्क्रीन पर भी वो ओवर परफॉर्म नहीं करती, इसीलिए उनके इमोशनल सीन्स बिलीवेबल लगते हैं। यामी गौतम का करियर एक इंटरेस्टिंग रिमाइंडर है, कभी कभी स्लो ग्रोथ भी पावरफुल होती है। हर एक्टर को ओवरनाइट स्टारडम नहीं मिलता, कुछ लोग ग्रेजुअली ऑडियंस का रिस्पेक्ट अर्न करते हैं, और यामी उन्हीं एक्टर्स में से एक हैं। आज जब वो स्क्रीन पर आती हैं तो सिर्फ प्रिटी नहीं लगती, कॉन्फिडेंट लगती हैं, कंट्रोल लगती हैं, कंप्लीट एक्ट्रेस लगती हैं। यामी गौतम ने इंडस्ट्री को चेज नहीं किया, उन्होंने बस कंसिस्टेंटली काम किया और धीरे धीरे लोगों ने रियलाइज कर दिया कि कभी कभी साइलेंस भी स्पॉटलाइट बन जाता है। तो ये थी कहानी यामी गौतम की। आपको ये पूरी की पूरी कामयाबी की उड़ान की कहानी कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। नंबर है हमारा 9654896896। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, मैं मिलूंगा आप सभी से दोबारा 5 से 8 सोमवार से शुक्रवार शाम को अपने शो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए और सुनते रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM, कुछ हटके।

0: मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा माँ।
1: अभी भी टाइम है बेटा जी, गाड़ी में फ्यूल और सड़क किनारे कूड़ा जलाना छोड़ दे।
2: A few moments later,
0: माँ, मुझे सब दिखाई दे रहा है।
1: बेटा जी, जितना जल्दी निकालोगे सॉल्यूशन, उतना ही कम होगा पॉल्यूशन। रेडियो महारानी द्वारा की गई ये इको फ्रेंडली घोषणा ताकि इस प्लेनेट पर हम देख पाएं अपना ब्राइट फ्यूचर।

इस गाने के साथ एंड यू आर लिसनिंग टू बिजनेस अनप्लग्ड विद मी आरजे गीत। आज मैं एक ऐसी कहानी लेकर आई हूँ जो अनाउंसमेंट्स या बिग प्रॉमिसेस से शुरू नहीं होती। ये कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव से, एक किसान के घर से। सोचिए वो गांव जहाँ इंग्लिश मीडियम स्कूल का आइडिया ही नहीं था, जहाँ रिसोर्सेज और अपॉर्चुनिटीज दोनों टाइट होती हैं, और एक बच्चा जो 7 साल की उम्र में अपने माता पिता से अलग हो जाता है, नॉट बिकॉज ऑफ चॉइस बट बिकॉज लाइफ ने उसको पहले ही टेस्ट पे डाल दिया। बदलते सर्कमस्टेंसेस के साथ उस बच्चे को समझ आ गया कि सर्वाइवल और सक्सेस दोनों के बीच एक थिन लाइन होती है, और वो लाइन बनाई जाती है। इंग्लिश नहीं आती मतलब काफी लोग पहले ही अज्यूम कर लेते हैं कि ये स्ट्रगल कर लेगा, लेकिन ये स्ट्रगल ही उसका बिगेस्ट टीचर बन जाता है। हाई एंड स्कूल्स, कोचिंग, फैंसी एनवायरमेंट, ये सब इस किड के पास नहीं थे। उसके पास एक चीज थी, खुद की क्यूरियोसिटी और सीखने की नीड। IIT के लिए पोस्टल कोचिंग तक इन्होंने खुद ही अरेंज की, और ये वो फेज था जब लोग कंफर्ट जोन में सेटल होकर बैठते हैं, वो स्ट्रगल से गुजरना भी नहीं चाहते। लेकिन इन्होंने स्टेप बाय स्टेप लिया कैसे चीजों को एनालाइज किया जाए, अपॉर्चुनिटीज को कैसे आइडेंटिफाई किया जाए, और मिस्टेक्स से कैसे सीखा जाए। और फिर इन्होंने एक स्टार्टअप की तरफ ट्राई किया, एंड दैट फर्स्ट स्टार्टअप फेल भी हो गया था। सब कहते थे ये गलत डिसीजन था, लेकिन उस फेलियर ने उनको कुछ और ही लेसन सिखाया जो आज बहुत एंटरप्रेन्योर्स को मिसिंग लगते हैं, और वही फाउंडेशनल लेसन बैड लेट डिसीजन को शेप करते हैं, इवन जो उसको आज इंडिया के लार्जेस्ट स्टॉक ब्रोकर प्लेटफॉर्म तक ले गया। पर अभी हम सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट को फील कर रहे हैं, नाम प्रोडक्ट ये सक्सेस सभी रिवील नहीं करेंगे, बिकॉज दिस इज रियलिटी बिफोर फेम, नॉट पॉलिश्ड, नॉट सिंप्लीफाइड, नॉट ट्रू स्ट्रगल। अभी हम यहाँ पर गाना सुनते हैं, गाने के बाद बताऊंगी कैसे ही टर्न जीरो रिसोर्सेज इनटू एन अपॉर्चुनिटी मैप एंड स्टार्टिंग बिल्डिंग समथिंग दैट टुडे सर्व मिलियंस। स्टे विद मी, यू आर लिसनिंग टू बिजनेस अनप्लग्ड। मैं हूँ आपके साथ गी।

0: जिंदगी का सफर कितना भी हसी हो, एक गलती और सब खत्म।
1: ये सड़कें तुम्हारी कहानियाँ नहीं सुनती, इन्हें सिर्फ तुम्हारी समझदारी दिखती है। इसलिए हाई स्पीड में गाड़ी चलाने से पहले एक बार जरूर सोचे, आपको किसी न्यूज़पेपर के पेज की हाईलाइट बनना है या अपनी खुद की कहानी का राइटर।
2: आपकी सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

वेलकम अगेन, आप सुन रहे हैं बिजनेस अनप्लग्ड और मैं हूँ गीत। अगर आप अभी अभी मेरे साथ जुड़े हैं तो बता देती हूँ, आज हम किसी चमकदार सक्सेस स्टोरी की बात नहीं कर रहे, आज हम उस फेज की बात कर रहे हैं जहाँ लाइफ क्वाइटली इंसान को शेप करती है। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने बात की थी एक फार्मर के बेटे की कहानी तक हम पहुँचे थे, एक ऐसा बच्चा जो अपनी बहुत छोटी उम्र में अपने माता पिता से अलग हो गया। अब कहानी आगे बढ़ती है उस फेज में जो बाहर से नहीं दिखता। ये वो साल होते हैं जहाँ स्ट्रगल दिखाई नहीं देती लेकिन अंदर सब कुछ हैवी हो जाता है। प्रॉब्लम्स पैसे की नहीं होती, प्रॉब्लम होती है फिट इन करना, नई जगह, नया लगेज और साथ में एक साइलेंट कंपैरिजन। बोलने से पहले सोचना पड़ता है और जब बोलने में डिले होता है तो लोग सुनना बंद कर देते हैं। धीरे धीरे इंसान बोलना कम करता गया, नॉट बिकॉज आइडियाज नहीं थे बट बिकॉज एक्सप्लेन करना एग्जॉस्टिंग लगने लगा था। और इस फेज में इस कहानी का हीरो क्लासरूम में लाउड नहीं था, ग्रुप डिस्कशंस में लीड नहीं करता था बट ऑब्जर्व करता था, लोग कैसे डिसीजंस लेते हैं, कौन कैसे आगे बढ़ता है। और बिजनेस अनप्लग में हम जितने भी टाइकून्स की बात कर चुके हैं, मैंने अक्सर एक चीज नोट की है, वो हमेशा ऑब्जर्व करते थे, बोलने पर बिलीव नहीं करते थे। जब आपके पास एक्स्ट्रा रिसोर्सेज नहीं होते तो लर्निंग एक ऑप्शन नहीं रहती, वो हैबिट बन जाती है। सेल्फ लर्निंग यहीं से स्टार्ट होती है, बुक्स, नोट्स, प्रैक्टिस, नो शॉर्टकट, नो ग्लैमर। फेलियर भी आए, एफर्ट किए लेकिन आउटकम्स नहीं मिले। और यहाँ फेलियर ड्रामेटिक नहीं होते, बस एक रियलाइजेशन होता है ये अप्रोच काम नहीं कर रही है। यहीं पे एक शिफ्ट होता है लक को ब्लेम करने की बजाय सिस्टम को समझने की कोशिश, वेयर एग्जैक्टली आई एम मिसिंग समथिंग, वेयर आई एम नॉट सीइंग क्लियरली। और यहीं से डेवलप होती है एक हैबिट प्रॉब्लम को रूट से देखने की। अभी मैं आपको नाम नहीं बता रही, ब्रांड का जिक्र भी नहीं, बिकॉज अभी कंपनी नहीं बन रही, सोच बन रही है। क्योंकि अभी वक्त है गाने का, गाने के बाद फिर से लौटूंगी और बताऊंगी कि कैसे ये थिंकिंग रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम से टकराती है और कैसे वहीं से एक बिजनेस आइडिया जन्म लेता है। सो स्टे विद मी, आप सुन रहे हैं बिजनेस अनप्लग्ड।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
1: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
2: आज है साइबर सिक्योरिटी एंड रोड सिक्योरिटी का तंदूरी तड़का, जो आप सबके फोन से लोकेशन, कॉन्टैक्ट, फोटो, सबने हमेशा सब मांगे उन्हें बाय बाय बोलकर विदाई दे दो। और ईमेल्स लाइक क्लिक टू विन प्राइज और अकाउंट इज इन डेंजर या पार्सल इज अराइविंग, अरे मेरे भाई मैंने मैथ्स की किताब तक नहीं मंगाई, कौन सा पार्सल ला रहा है।

वेलकम अगेन, यू आर लिसनिंग टू बिजनेस अनप्लग्ड। मैं हूँ गीत। अगर आप मेरे साथ अभी अभी जुड़े हैं तो अब वो मोमेंट है जहाँ सस्पेंस खत्म होने वाला है। जिस फार्मर के बेटे की हम बात कर रहे थे, जिसने अर्ली एज में सेपरेशन देखा, लगेज बैरियर्स झेले और क्वाइटली ऑब्जर्व करना शुरू किया, वो नाम है ललित केशरे, को फाउंडर एंड सीईओ ऑफ ग्रो। यस, ग्रो, इंडिया मोस्ट ट्रस्टेड इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म में से एक। बट बिफोर ग्रो बिकम एन ऐप ऑन मिलियंस ऑफ फोन्स, ललित वॉज जस्ट अ बॉय trying to understand how the world actually works. इनका childhood कोई smooth curve नहीं था। 7 साल की उम्र, उस एज में जब बच्चे सिर्फ routine follow करते हैं, school, home, play, उस एज में ललित अपने parents से अलग हो गए थे। Village background, no English medium school, no exposure. जब आप लगेज नहीं बोल पाते तो confidence भी borrowed होता है, और जब कॉन्फिडेंस बोरोड हो तो आप ज्यादा सुनते हो, कम बोलते हो। ये वीकनेस नहीं थी, ये ट्रेनिंग थी। टाइम के साथ एडुकेशन ने डायरेक्शन ली, आईआईटी रुड़की, देन कॉर्पोरेट एक्सपोजर। लेकिन कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी एक चीज नोटिस करते गए, ये मनी सबके लिए नहीं बना है, सिस्टम कॉम्प्लिकेटेड है, इन्फॉर्मेशनल इमिडिएटिंग है, इन्वेस्टमेंट का मतलब सिर्फ रिच लोगों के लिए रखा गया है। और यहीं से आता है ग्रो का सीड, नॉट हाउ टू अर्न मनी बट हाउ टू सिंप्लीफाई मनी। ग्रो वॉज बिल्ड विद वन कोर थॉट, If I didn't understand finance earlier, there must be a million like me. आज ग्रो सिर्फ एक स्टार्टअप नहीं है, इट हैज ओवर 40 मिलियन यूजर्स, मैनेज लैक्स ऑफ करोड़ इन एसेट्स, एंड ऑपरेट्स विद अ वैल्यूएशन रनिंग इनटू बिलियन ऑफ डॉलर्स। ललित केशरे हिमसेल्फ इंडिया के यंगेस्ट सेल्फ मेड फाउंडर्स में से गिने जाते हैं। बट इंटरेस्टिंग पार्ट ये है, ये नंबर्स इनकी पर्सनालिटी डिफाइन नहीं करता। इंटरव्यूज देखो, टोन काम है, वर्ड मेजर्ड है, जैसे कोई इंसान अभी भी सोचता है और फिर बोलता है। शायद वही हैबिट जो बचपन में बनी थी। और अभी यहाँ पर वक्त है गाने का, गाने के बाद फिर से लौटूंगी। शो है बिजनेस अनप्लग्ड।

है फ्रॉम द मूवी छावा और इसी गाने के साथ फिर से स्वागत है। अब मैं उस पार्ट में हूँ जब ललित केशरे, जो एक छोटे से गांव के किसान के बेटे थे, अपनी स्टडीज पूरी करके प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं और ये वही मोमेंट है जब ग्रो की कहानी शुरू होती है। IIT में पढ़ते हुए ललित ने ये ऑब्जर्व किया कि इन्वेस्टिंग और म्यूचुअल फंड्स कितना ज्यादा कंफ्यूज करता है। बैंक्स, ब्रोकर, पेपर वर्क सब इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि नॉर्मल लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। वही इन्होंने एक बात नोटिस की, अगर यार मुझे ही समझ नहीं आ रहा है तो लाखों लोग कैसे समझेंगे। कैंपस लाइफ में इन्होंने छोटे छोटे साइड प्रोजेक्ट्स किए, अपने दोस्तों को गाइड किया, फीडबैक लिया, स्लोली इनका ऑब्जर्वेशन और प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट शार्पन हुआ। ग्रेजुएशन के बाद कॉर्पोरेट जॉब्स में जाकर इन्होंने और डीपली देखा कि इंडिया में इन्वेस्टिंग आसान नहीं है, लोग ऑनलाइन इन्वेस्टिंग से डरते हैं, प्रोसेस लंबा और कॉम्प्लिकेटेड है। ललित ने सोचा क्यों ना एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जाए जो सिंपल, सेफ और समझने में आसान हो। फिर उन्होंने को फाउंडर हर्ष जैन के साथ मिलकर टीम बनाई। फर्स्ट ऑफिस मिनिमल था, व्हाइट बोर्ड, चाय, ब्रेनस्टॉर्मिंग, टीम स्मॉल थी बट सुपर फोकस्ड, रूल सिंपल, यूजर पहले, प्रोडक्ट सेकंड और सब फास्ट डिसीजन में बिलीव करते थे। फिर इन्होंने ग्रो का फर्स्ट वर्जन बनाया, सिंपल डैशबोर्ड, म्यूचुअल फंड्स और बेसिक इन्वेस्टमेंट्स के लिए, कोई कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स नहीं, इंटरफेस क्लीन। सबसे पहले दोस्तों और अर्ली यूजर्स को टेस्ट किया, फीडबैक लिया और प्रोडक्ट इम्प्रूव किए, बग्स फिक्स किए, कंफ्यूजिंग स्टेप्स सिंप्लीफाई किए और धीरे धीरे प्रोडक्ट रेडी हुआ। फंडिंग ट्रिकी थी, इन्वेस्टर हेजिटेट थे क्योंकि स्मॉल टीम, अननोन फाउंडर्स, मार्केट में कॉम्पिटिटर्स पहले से थे। ललित ने प्रोटोटाइप दिखाया, अर्ली यूजर्स स्टोरी शेयर की और ट्रांसपेरेंट प्रोसेस से ट्रस्ट बिल्ड किया। फंडिंग सिक्योर होने के बाद प्रोडक्ट का ग्रोथ फेज शुरू हुआ, ऑर्गेनिक ग्रोथ धीरे धीरे आई, रेफरल प्रोग्राम्स, कंटेंट बेस्ड एजुकेशन और टेक इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग किया, ऐप क्रैश फ्री, सिक्योर ट्रांजैक्शंस, कस्टमर सपोर्ट रेडी। ललित पर्सनली मॉनिटर करते थे, फीडबैक लेते थे और टीम हमेशा स्मॉल बट हाईली एफिशिएंट रही। आज ग्रो मिलियन ऑफ यूजर्स के लिए वन स्टेप इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म है, मल्टीपल प्रोडक्ट्स, म्यूचुअल फंड, स्टॉक, SIP, रिटायरमेंट प्लान्स, वैल्यूएशन बिलियंस में है। वही बच्चा जो गांव में चुपचाप ऑब्जर्व करता था, आज यूजर्स के पैसे और डिसीजन मैनेज कर रहा है। काम, मेजर्ड डिसीजन, स्टेप बाय स्टेप इम्प्रूवमेंट, वही हैबिट चाइल्डहुड से बनी थी और ग्रो की फाउंडेशन बनी। स्टे विद मी, आप सुन रहे हैं बिजनेस अनप्लग्ड, मैं आपके साथ गीत बनी हुई हूँ।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: सीट बेल्ट टाइट रखो, स्पीड ब्रेकर को इग्नोर करोगे तो फ्रैक्चर। रोड की लेन और इंटरनेट की चेन दोनों मत तोड़ना। एक छोटी सी गलती और सब आउट ऑफ कंट्रोल। और बस याद रखो, अलर्ट रहो, सिक्योर रहो और हर दिन को सेफ मोड पर चलाओ।

वंस अगेन वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू बिजनेस अनप्लग्ड और मैं पहुंच गई हूं अब उस पॉइंट पर जहां स्टोरी खत्म नहीं होती बल्कि सीख देकर जाती है। ग्रो कोई ओवरनाइट सक्सेस नहीं था, हर फीचर, हर प्रोडक्ट डिसीजन, हर यूजर फीडबैक से ट्विक किया गया था और स्टेप बाय स्टेप स्केल हुआ। ललित और उनकी टीम ने सिर्फ आइडिया पर भरोसा नहीं किया बल्कि इन्होंने देखा कि यूजर्स क्या चाहते हैं, क्या समझ पाते हैं और क्या मिस कर देते हैं और इसी ऑब्जर्वेशन ने प्लेटफॉर्म को सिंपल, रिलायबल और ट्रस्टेड बनाया। आज ग्रो सिर्फ नंबर्स और वैल्यूएशन का गेम नहीं है, ये डिसीजन मेकिंग कल्चर, ट्रस्ट बिल्डिंग और क्लैरिटी की कहानी है। यूजर्स फील करते हैं कि प्लेटफॉर्म इन्हें समझता है, गाइड करता है और उनके पैसे सेफ हैं। और सबसे खास बात, ये काम, मेजर्ड अप्रोच, डिसिप्लिन और पेशेंस जो स्मॉल डिसीजंस में दिखती थी अब बिलियन डॉलर स्केल तक पहुंच चुकी है। और कहानी हमें क्या सिखाती है, आइडिया सिर्फ थॉट नहीं है, एग्जीक्यूशन और फीडबैक लूप बनाते हैं। कॉम्प्लेक्सिटी को ब्रेक करो, सिंप्लिसिटी चूज करो। ग्रोथ इंस्टेंट नहीं आती बट कंसिस्टेंट थॉटफुल स्टेप चेंज लाते हैं। तो लिसनर्स, ये स्टोरी इंस्पायर करती है लेकिन रियल फील देती है। तो इसी के साथ मैं आपसे इजाजत चाहूंगी एक थॉट के साथ, बिग थिंग्स ग्रो क्वाइटली स्टेप बाय स्टेप विद ट्रस्ट एंड क्लैरिटी। तो आप सुन रहे थे बिजनेस अनप्लग्ड। कीप ग्रोइंग एंड कीप स्माइलिंग एंड कीप लिसनिंग रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: यार कभी खिड़की से जो ठंडी हवा आती थी ना, आज उसमें भी जहर घुला महसूस होता है।
1: क्योंकि तन्हा होकर भी ये हवा हमसे बहुत कुछ कहती है, हमारी गलतियों की सजा ये चुपचाप सहती है। अभी भी वक्त है इसे शुद्ध कर दुलार दे, इस धरती को उसकी खोई मुस्कान फिर से उधार दे।
2: रेडियो महारानी आप सभी से अपील करता है, अपनी खूबसूरत से जिंदगी को पॉल्यूटेड एयर से संकट में ना डालें और एनवायरनमेंट को पॉल्यूट होने से बचाएं।

0: 89.6 FM
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

ये सिर्फ चाट नहीं, ये बचपन है, ये इश्क है, ये रिश्तों का बहाना है। छोटी सी पूरी, अंदर समंदर भरा, एक पानी पूरी ने पूरे शहर को अपना बना लिया। 89.6 FM पर मैं हूँ आरजे अंशी आपके साथ और शो लेकर आ गई हूँ कल्चर कारवा। और आज कल्चर कारवा में हम जाएंगे पानी पूरी के असली इतिहास, इंडिया में इसका सफर और वो कहानी जो शायद आपने कभी सुनी ही नहीं। क्योंकि पानी पूरी सिर्फ एक चाट नहीं, ये बचपन का लंच है, कॉलेज का ब्रेक है, ऑफिस के बाद का सुकून है और साथ ही प्यार का सबसे सस्ता एक्सप्रेशन है पानी पूरी। लेकिन सवाल ये है, क्या पानी पूरी हमेशा से ऐसी ही थी? नहीं। इस कहानी के मुताबिक जब पांडव वनवास में थे तो द्रौपदी को एक दिन सिर्फ थोड़ा सा आटा और कुछ सब्जी दी गई, साथ ही कहा गया इस बचे हुए सामान से सबको खाना खिलाओ। तभी द्रौपदी ने उस थोड़े से आटे को गोल गोल पूरियों में बदला और साथ ही सब्जियों को पानी के साथ मिक्स कर दिया। फिर क्या, तभी से बन गई पानी में डूबी पानी पूरी। और एक कॉन्सेप्ट महाभारत के टाइम से है। वैसे तो कहा जाता है कि ये एक लेजेंडरी टेल है, लिखित प्रूफ नहीं है अभी तक, पर हमारा कल्चरल बिलीफ है। वो कहा है कि थोड़े से सामान में भी जो कमाल कर जाए वही कला होती है जो बन गई पानी पूरी। पानी पूरी का इतिहास तो पता लगा, लेकिन टाइम के साथ पानी पूरी ने इंडिया में कैसे ट्रेवल किया?

0: रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप दुनिया के सबसे खूबसूरत इंसान हो। लोगों के कुछ भी कह देने से खुद को कमजोर मत समझ लेना,
2: कमाल तुम, बेमिसाल तुम, लाजवाब हो,
1: क्योंकि आप क्या हो वो सिर्फ आप जानते हो। सो बी

0: प्यार का तो पता नहीं, पर तेरे साथ इस स्कैम के चर्चे हर जबान पर हैं।
1: तो मैं क्या करता यार, उसने इतनी चलाकी से कॉन्फ्रेंस कॉल का झांसा देकर ओटीपी निकाल लिया, मुझे पता ही नहीं चला।
0: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें। किसी भी अनजान नंबर या लालच भरे मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना करें। बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगता, इसलिए किसी भी अनजान नंबर से आए कॉल पर भरोसा ना करें। मजबूत पासवर्ड बनाएं और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचें। हर वीडियो और ऑडियो सच नहीं होती, इसलिए पहले फैक्ट्स को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें।
2: और जुड़े साइबर सिपाही कैंपेन से, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM। तो अब से बी सेफ बी अवेयर।

89.6 FM पर आप सुन रहे हैं कल्चर कारवा। मैं हूँ आपकी दोस्त आरजे एनजी और बात कर रही थी पानीपुरी का सफर इंडिया में आखिर शुरू कैसे हुआ। जैसे जैसे देश बदला पानीपुरी भी रंग बदलती गई। नॉर्थ इंडिया में बनी गोलगप्पा, मुंबई ने उसे बोला पानीपुरी, बंगाल में बना पुचका और उड़ीसा में गुपचुप, साथ ही साउथ में पानी के बताशे। नाम बेशक अलग हो पर जज्बात एक ही। वो कहा है कि नाम चाहे कुछ भी हो, पानीपुरी के पानी ने हर किसी का दिल जीत लिया। वो कहते हैं कि नाम अलग हो सकता है, अंदाज अलग हो सकता है, पर पानीपुरी का प्यार हर शहर में एक जैसा होता है। और इतना ही नहीं, पानी खट्टा मीठा तीखा चाहे कोई भी हो, लेकिन फायदे मन बड़ा होता है। और अगर पानीपुरी के पानी की बात की जाए तो शुरुआत में सिर्फ नमकीन पानी था, फिर आया इमली वाला पानी, पुदीना वाला पानी और फिर आया बूंदी वाला पानी। और बस धीरे धीरे ये स्वाद का पूरा यूनिवर्स बन गया। तो अगर आज पानीपुरी की बात की जाए तो पानीपुरी एक नहीं, कहीं मीठी है, तीखी है, खट्टी है और कभी कभी ज्यादा तीखी हो जाती है।

इंडिया में पानी पूरी के सफर की बात तो कर ली, लेकिन क्या खास है इस पानी पूरी के पानी में, ये भी जानेंगे। लेकिन इस म्यूजिक ब्रेक के बाद तब तक बने रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM के साथ।

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, ज्यादा चिल्लाने से बात समझाई नहीं जाती, सिर्फ दिल दूर हो जाते हैं। इसलिए आज से ही आवाज़ धीमी और बात गहरी, फिर देखिए जिंदगी कितनी खूबसूरत लगती है।

0: महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, कभी किसी के आंसुओं का मजाक मत बनाओ।
2: जो दिल से लगे उसे कह दो हाय हाय।
1: थोड़ा समझो, थोड़ा सुनो, क्योंकि आपका एक प्यारा सा शब्द उनके लिए सब कुछ बदल सकता है। इसलिए रेडियो महारानी कहता है, दिल की सुनो, दिल से जियो।

पर आप सुन रहे हैं कल्चर कारवा। मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त आरजे अंशुली और आज बात कर रहे हैं पानी पूरी के बारे में। पानी पूरी का सफर आखिर इंडिया में कैसे शुरू हुआ ये तो मैंने आपको बताया, लेकिन आपको पता है क्या खास है इस पानी पूरी में? अगर इसके पानी की बात की जाए तो सिर्फ टेस्ट नहीं, पूरा का पूरा साइंस है। पानी डाइजेशन बूस्टर है, पुदीना कूलिंग एजेंट है और इमली इम्यूनिटी बढ़ाती है। साथ ही अगर आलू की बात की जाए तो इंस्टेंट एनर्जी देता है, और फिर अगर क्रंच की बात की जाए तो मूड लिफ्टर है। तो वो कहा है कि ये सिर्फ पानी नहीं है, इसमें घुला होता है सुकून। और बस ये छोटी सी पूरी थोड़ी देर के लिए ही लेकिन जिंदगी को परफेक्ट बना देती है।

क्या आपने कभी सोचा था ये छोटी सी पानी पूरी इतनी कमाल की हो सकती है? खैर, बहुत सारी बातें हैं पानी पूरी को लेकर, लेकिन इसके पीछे की ट्रिविया के बारे में भी बात करेंगे। फिलहाल टाइम हो गया है पानी पूरी से जुड़े ट्रिविया के बारे में बात करने का। इंडिया में रोज 20 करोड़ से ज्यादा पानी पूरी खाई जाती है, और इतना ही नहीं, दिल्ली में सबसे ज्यादा स्पाइसी पानी पूरी खाते हैं लोग। कोलकाता की तरफ जाएं तो वहाँ पुचका सबसे चटपटा खाया जाता है। वहीं अगर थोड़ी दूर और चले तो मुंबई का पानी सबसे बैलेंस्ड होता है। और फिर अगर वर्ल्ड रिकॉर्ड की बात करें तो 51 पानी पूरी 1 मिनट में खाने का रिकॉर्ड भी बनाया गया है। और एक सच तो ये है कि पानी पूरी एक ऐसी चीज है जो लोग शेयर नहीं करते। अगर आपके साथ किसी

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: दियारा, जिनके कंधों पर बचपन बीता, आज उन्हीं बूढ़े कंधों को अकेला मत छोड़ो, क्योंकि उनका साथ ही हमारा सुकून है।

0: शिल्पा महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, फोन की स्क्रीन भले ही छोटी है पर उसने जिंदगी के सबसे बड़े पल छुपा लिए हैं।

जिंदगी भी पानी पूरी जैसी है, कभी मीठी कभी तीखी, बस भरकर जीनी चाहिए टूटने से पहले। रेडियो महारानी 89.6 एफएम पर आप सुन रहे हैं कल्चर कारवां, मैं हूं आपकी दोस्त आरजे अंजलि। तो ये थी पानी पूरी की कहानी। वो कहा है कि बचपन के दिनों का एक ही तो खजाना था, ना मोबाइल ना वाईफाई, बस पानी पूरी और हर दिन एक नया बहाना था। तो दोस्तों ये थी पानी पूरी की वो कहानी जो हर गली में मिलती है पर हर दिल में एक अलग तरीके से बसती है। वो कहा है कि जिंदगी गोल है, कभी खट्टी कभी मीठी, पानी पूरी जैसी, बस भरकर जी लो पहले की ये पूरी टूट जाए। तो आज हमने बात की पानी पूरी के बारे में, जाना इसका इतिहास, इंडिया में इसका सफर और इसका इनोवेशन। कल्चर कारवां के सफर में फिलहाल मेरा टाइम हो गया है यहाँ से जाने का। कल फिर से लौटेंगे एक नए स्वाद के साथ, एक नई कहानी के साथ, एक नए जज्बात के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। दिस इज योर आरजे अंजलि साइनिंग ऑफ।

था ऑफिस जाने का, मगर आज सुबह सुबह जो ये मौसम हुआ था उसके बाद तो दिल खुश हो गया। मैं कह रहा हूँ दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, देखा है ना वाला भीम, तो ऐसा ही फील हो रहा है, दिल गार्डन गार्डन हो रखा है मौसम को देख के। और मैं तो बस ये कहना चाहूँगा जितनी गर्मी बची है ना उसमें भी हर दूसरे दिन अगर ऐसा मौसम हो जाए तो फिर अच्छा ही लगेगा ना, क्योंकि देखो फ्राइडे की शाम, सैटरडे की शाम, सबने देखा कैसे कैसे मौसम बदला और फिर उसके बाद हम लोग बस इंतज़ार करते रह गए इस बारिश का। और बारिश आ ही गई आखिरकार आज, और अभी अगर आपके एरिया में बारिश नहीं आई है डोंट वरी, बारिश आएगी। और इसके साथ साथ एल नीनो भी इंडिया आ गया है, एल नीनो के साथ साथ उसको भगाने के लिए आईओडी काम कर रहा है। आईओडी है क्या, करेंगे इन सब चीज़ों के बारे में बात। तो देखो अब अगले तीन घंटों के लिए मैं आपका साथी हूँ, आपका हम सफ़र हूँ अगले तीन घंटों के लिए। खूब सारी बातें होने वाली है, मस्ती होने वाली है, गाने भी चलेंगे और करेंगे बात इंडिया के बारे में भी, फरीदाबाद के बारे में भी बात करने वाले हैं हम लोग। तो अगर आप लोग कहीं पर भी ट्रैफिक में अगर फंसे हैं तो आप लोग मुझे बता सकते हैं। कैसे बताओगे, नंबर है मेरा एक 9654896896, इस पर आप कॉल या मैसेज कर सकते हैं। तो देखो कभी भी आप फ़ोन उठाओ और कॉल लगाओ, हो सकता है कॉल उठाने में देरी हो जाए मगर हाँ आपके टेक्स्ट मैसेज ज़रूर पढ़ सकते हैं हम लोग, इसलिए हमें आप व्हाट्सएप पर भी मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए अभी फिलहाल रेडियो महारानी सुनते जाइए, वापस आकर बात करते हैं इस प्यारे से मौसम की, क्योंकि मौसम तो औसम सा हो ही रखा है और जो मौसम ऐसा है तो गाने भी तो अच्छे चलने चाहिए ना। तो एक आप सभी के लिए इमरान हाशमी की मूवी का ये गाना सुनिए, इस गाने को रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ।

0: आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका इंतजार इंतजार ही न रह जाए।
1: सफर पर निकलने से पहले बस एक छोटी सी चीज मत भूलिए, हेलमेट। आपकी एक सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बदल सकती है।

0: पर
1: तेरे प्यार का तो पता नहीं, पर तेरे साथ इस स्कैम के चर्चे हर जबान पर हैं।
2: तो मैं क्या करता यार, उसने इतनी चलाकी से कॉन्फ्रेंस कॉल का झांसा देकर ओटीपी निकाल लिया, मुझे पता ही नहीं चला।
1: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें। किसी भी अनजान नंबर या लालच भरे मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना करें। बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगता, इसलिए किसी भी अनजान नंबर से आए कॉल पर भरोसा ना करें। मजबूत पासवर्ड बनाएं और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचें। हर वीडियो और ऑडियो सच नहीं होती, इसलिए पहले फैक्ट्स को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें।
3: और जुड़े साइबर सिपाही कैंपेन से, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM। तो अब से बी सेफ, बी अवेयर।

मौसम को देख के तो बहुत ही मजा आ रहा है, ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मंडा आप सभी के साथ। थंडरस्टॉर्म वार्निंग दी गई थी आज, अचानक से दिन में एक मैसेज आता है कि थंडरस्टॉर्म वार्निंग है और आप लोग प्लीज अपने घर के अंदर ही रहिएगा। एंड जैसे ही मैंने ये पढ़ा, आई वॉज लाइक हैप्पी हैप्पी हैप्पी, क्योंकि 1:30 बजे के आसपास ये नोटिफिकेशन आया था और फिर उसके बाद बारिश वाला मौसम बना और अभी भी बारिश के साथ साथ 60-70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है, जो कि 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर भी पहुंच सकती है। और एक और चीज़ आपको बता दूं, अब आने वाले दिनों में आपको क्या लगता है फरीदाबाद का मौसम कैसा रहेगा? तो अगर बात करें कल की, तो कल भी सुबह सुबह आपको थोड़ा सा ऐसा मौसम देखने को मिल सकता है, बट स्टिल अब आने वाले दिनों में थोड़ी बहुत गर्मी बनी रहेगी क्योंकि मानसून आ रहा है, अपने दिल्ली एनसीआर की तरफ आ रहा है। मगर उसी के साथ साथ एक ऐसा बिन बुलाए मेहमान भी इंडिया में घुसने वाला है जिसे कहते हैं एल नीनो। क्या ही एल नीनो, करेंगे इसके बारे में बाद में बात। अभी बात करते हैं फरीदाबाद के मौसम की। और फरीदाबाद में जैसे ही बारिश पड़ती है तो सब लोगों की एक कंप्लेंट होती है, वो कंप्लेंट है ये कि जल भराव बहुत ज़्यादा हो जाता है। अभी देखो मॉनसून आया नहीं है तो अभी जल भराव की समस्या हम लोग नहीं देखेंगे। और मैं तो बस यही प्रे करता हूँ जो ये काम चल रहे हैं, अंडरलाइन पाइपलाइन डाल रहे हैं जो, तो वो थोड़ा सा तेज़ी से हो जाए तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि फिर मॉनसून में किसी को भी कोई भी परेशानी नहीं झेलनी पड़ेगी। हम सबको याद है लास्ट 2 सालों से तो बहुत ही अच्छी वाली बारिश आ रही है, तो बस यही प्रे करेंगे कि इस साल भी अच्छी बारिश होती रहे। और अभी फ़िलहाल आप लोग रेडियो महारानी सुनते जाइए। वापस आकर इसी के बारे में बात करेंगे क्योंकि एल नीनो जो कि इंडिया में आ रहा है, पधार चुका है, बिन बुलाया मेहमान है। क्या है एल नीनो, करेंगे इसके बारे में बात। क्या कर सकता है ये भी मैं आप सभी को बताऊंगा, मगर उससे पहले आप सभी के लिए ये गाना, और गाने का नाम है आई एम डन। दिल में अब कोई ख्याल ही नहीं है, इतने प्यारे से मौसम में ऐसा प्यारा सा गाना चलना तो बनता है ना। तो सुनिए इस गाने को रेडियो महारानी 89.6 पर। दिल में अब कोई ख्याल ही

0: सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: वो खिड़की पर बैठी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका इंतजार इंतजार ही न रह जाए।
0: सफर पर निकलने से पहले बस एक छोटी सी चीज मत भूलिए, हेलमेट। आपकी एक सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बदल सकती है।

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: हो गया शुरू तो अर्ज किया है।
0: ओहो अर्ज होता है अर्ज।
1: कर रहा हूँ तुम सुन लिया करो बस।
0: इरशाद।
1: अरे आगे खाली हो जाएगी।
0: क्या
1: बोल कर ये सारी भीड़ अंदर बुला लेते हैं।
0: कौन है?
1: रोडवेज वाले।
0: ओके ओके।
1: रोडवेज वाले भैया सीट पर चार सवारी तो अपनी गोदी में भी तीन बच्चे बिठा लेते हैं।
0: अरे हाँ यार उस दिन तो लोरी गाकर सुना भी रहे थे।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ
1: आगे सुनो।
0: सुनाओ।
1: रोडवेज की शक्तियों का हम करते हैं कुछ इस तरह इस्तेमाल। लस्सी बनाने के लिए रोडवेज में दही लेकर बैठ जाते हैं।
0: वैसे दिमाग का दही हो रखा है और ऊपर से तू भी। मैं तो चली तू बोलता रहा।
1: अरे एक ग्लास तो पीती जा। सुन रहे

एक ऐसा बिन बुलाया मेहमान इंडिया में आ चुका है जिसको अब हम चाहकर भी वापस नहीं भगा सकते, मगर एक पावर है इंडिया के पास जो इसको वापस भगा देगी। मगर ये मेहमान है कौन, इसके बारे में तो बात कर लें। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ। बहुत टाइम से आप लोगों को बता रहा था कि एल नीनो आ रहा है और कहा जा रहा था इस बार सुपर एल नीनो इफेक्ट है। एल नीनो बेसिकली वो होता है जब प्रशांत महासागर यानी कि पैसिफिक ओशन में थोड़ी सी टेम्परेचर की बढ़त होती है, उसकी वजह से इंडिया का मानसून थोड़ा सा स्लो हो जाता है। और इनसे इंडिया का मानसून स्लो होने का मतलब है कि कहीं पर सूखा भी पड़ सकता है, भगवान न करे ऐसा हो। तो बता दूं आपको, दस्तक तो दे दी है एल नीनो ने इंडिया में, और इसकी वजह से जो ये साउथ वेस्ट मानसून है जो हमारा केरला से होते हुए ऊपर की तरफ आ रहा है, ये थोड़ा सा कम हो सकता है, मतलब मजबूती अपनी छोड़ देगा ये। मगर एल नीनो जब भी आता है ना तो सूखापन ला देता है पूरे एरिया में, और इसके साथ साथ ये पूरा मौसम का जो पैटर्न है ना वो बिल्कुल कहता हूँ तहस नहस कर सकता है, या फिर कहूँ उथल पुथल कर देता है ये। तो हम लोगों को एल नीनो से बचाने के लिए एक हथियार तो है हमारे पास, और वो हथियार ह्यूमन मेड नहीं है, उसे कहते हैं IOD। ये कोई डिफेंस सर्विस नहीं है, IOD है इंडियन ओशन डायपोल। होता क्या है ये इंडियन ओशन डायपोल और कैसे ये एल नीनो को भगा सकता है, करेंगे इसके बारे में बात, क्योंकि अभी डरने की ज़रूरत नहीं है, इस बार मानसून अच्छा ही आएगा ये हम लोग प्रे करेंगे। और एल नीनो को भगाने के लिए जो IOD है ये कैसे काम करता है, करेंगे इसके बारे में भी बात। मगर उससे पहले आप सभी के लिए एक ऐसा गाना चला रहा हूँ जो कि सोशल मीडिया पर बहुत बहुत बहुत बहुत कितनी बार बहुत बोलूँ उतना ज़्यादा अच्छा है, बहुत वायरल हुआ था। सुनिए इस गाने को रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूँ द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ। बातें गाने ही चलते रहेंगे।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: वो खिड़की पर बैठी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका इंतजार इंतजार ही न रह जाए।
0: सफर पर निकलने से पहले बस एक छोटी सी चीज मत भूलिए, हेलमेट। आपकी एक सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बदल सकती है।

0: जिंदगी का सफर कितना भी हसी हो, एक गलती और सब खत्म।
1: ये सड़कें तुम्हारी कहानियाँ नहीं सुनती, इन्हें सिर्फ तुम्हारी समझदारी दिखती है। इसलिए हाई स्पीड में गाड़ी चलाने से पहले एक बार जरूर सोचे, आपको किसी न्यूज़पेपर के पेज की हाईलाइट बनना है या अपनी खुद की कहानी का राइटर।
2: आपकी सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

आज की बारिश को देखकर आप बोल सकते हो कि हाँ ये प्री मॉनसून शावर्स ही हैं और ये अभी आने वाले कुछ दिनों में और देखने को मिल सकते हैं। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूँ द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ। सब लोग सोशल मीडिया पर चर्चा कर रहे हैं कि एल नीनो आ रहा है, उसके बारे में अभी थोड़ी देर पहले हमने बात करी। तो एल नीनो की वजह से सूखापन हो जाता है एरिया में, ये सबको पता है, मगर इसको भगाने के लिए हमारे पास एक सुपर पावर, उसे कहते हैं IOD, फुल फॉर्म है इंडियन ओशन डायपोल। अब देखो होता क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। इंडियन ओशन डायपोल बेसिकली एक क्लाइमेट पैटर्न है, जिससे क्या होगा, इंडियन ओशन में जो पानी है ना, तो उसका सी सरफेस का टेम्परेचर है वो जो पैसिफिक ओशन की तरफ से टेम्परेचर आ रहा होगा उससे कोलाइड कर जाएगा। अब होगा क्या, विंड के जैसे कि एल नीनो इंडिया की तरफ आ रहा है तो इंडियन ओशन की तरफ से ये जो मॉइस्चर का फ्लो है ये उसकी तरफ जाएगा और फिर मतलब होगा ये कि क्लाउड्स फॉर्मेशन होगी, बारिश वाले क्लाउड्स होंगे और फिर वो वापस इंडिया की तरफ आएंगे और फिर इंडिया में क्या चल रहा है अभी, मॉनसून। इंडिया में फॉग नहीं चल रहा, मॉनसून चल रहा है और ये मॉनसून के साथ जब ये दो बादल मिलेंगे तो फिर बारिश और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी, तो फिर सूखे का खतरा कम हो जाएगा। एल नीनो क्या करता है, एल नीनो सूखा कर देता है, ड्रॉट का रिस्क होता है एल नीनो के साथ। और इस बार इंडियन ओशन डायपोल IOD जैसे कहते हैं वो मॉनसून को स्ट्रांग कर सकता है। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसे वैज्ञानिक कह रहे हैं, तो थोड़ी सी वैज्ञानिक वाली भाषा थी, मगर मैंने सोचा कि आप लोगों को सिंपल वे में बता देता हूँ। क्योंकि देखो मौसम इज ऑसम और ऐसे मौसम में आगे आने वाले मौसम की बात ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है कि नहीं। चलिए अभी फिलहाल आप लोग रेडियो महारानी सुनते जाइए। और जब इतना प्यारा मौसम हो ही गया है तो मैं ये सोच रहा था कि अगर ऐसा ही मौसम आप लोगों को पहाड़ों पर मिले और पहाड़ों पर काम करने को मिले तो कितना अच्छा होगा ना। करेंगे इसके बारे में बात मगर इस गाने के बाद। रेडियो महारानी 89.6 पर आप सभी के लिए ये गाना।

0: जिंदगी का सफर कितना भी हसीन हो, एक गलती और सब खत्म।
1: ये सड़कें तुम्हारी कहानियाँ नहीं सुनती, इन्हें सिर्फ तुम्हारी समझदारी दिखती है। इसलिए हाई स्पीड में गाड़ी चलाने से पहले एक बार जरूर सोचे, आपको किसी न्यूज़पेपर के पेज की हाईलाइट बनना है या अपनी खुद की कहानी का राइटर।
2: आपकी सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: बॉयफ्रेंड हूँ इसलिए गुलाम हूँ।
1: सुन भाई सुरेंद्र।
2: हाँ भाई तुरेंद्र।
1: भाई गर्लफ्रेंड मुझे फोन करती है, अगर फोन भी दी जाए तो किससे बात कर रहे थे। सोचा था शॉपिंग कराने ले जाऊंगा, 500 रुपए का खर्चा करवाएगी, 5000 का बिल बनवा दिया। सुबह कहती है आई लव यू, दिन में कहती है तुम बदल गए, शाम होती कहती है तुम मुझसे प्यार नहीं करते। मैंने पूछा मैं तुम्हारा क्या हूँ, कहती है तुम मेरे सब कुछ हो। मैंने कहा सब कुछ में क्या आता है, कहती तुम मुझे ड्राइवर हो, तुम मेरे ATM हो। मतलब तो सिंपल यही हुआ ना कि मैं तो उसका गुलाम हूँ।
2: सही कह रहा तुरेंद्र, बॉयफ्रेंड कितना भी कर ले रहेगा तो गुलाम ही।
3: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये स्टेशन रेडियो महारानी है।

0: 89.6 FM.
1: कुछ छक्के
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं.
3: कुछ हटके.
4: चाली बर के नड़ा.

आई नो इस टाइम आप लोग ऑफिस से निकल चुके होंगे, घर की तरफ जा रहे होंगे, और इतने प्यारे मौसम में जब वर्क फ्रॉम होम मिल जाए तब तो और भी अच्छा लगता है, क्योंकि फिर घर में हम लोग कुछ भी बना के किसी भी टाइम खा सकते हैं। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ। अभी कुछ टाइम पहले हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बोला था कि सब लोग घर से काम करो, वर्क फ्रॉम होम को अपनाओ, और इसी बीच हुआ ये कि लोगों ने अपनाना भी शुरू किया और कुछ लोग तो चले गए घूमने के लिए। कहाँ? इंडिया से बाहर। हाँ, सच में और इंडिया से बाहर जाने के लिए मना किया था, और कुछ लोग घूमने गए हैं पहाड़ों पे। तो जो भी इंसान पहाड़ों पे गया है ना, उन लोगों को बोलना चाहता हूँ कि आप लोग ना मनाली जैसे एरिया में जाके रह सकते हो। कैसे रह सकते हो मैं आपको बताता हूँ। वर्क फ्रॉम होम तो आपको मिला ही हुआ है, तो एक काम करो ना, अपना लैपटॉप उठाओ और मनाली पहुँच जाओ। अब आपको कितना खर्चा लगेगा मनाली में, देखो 14,000 रुपये पर मंथ का मान लेते हैं, अपार्टमेंट आपको रेंट में मिल जाएगा, ग्रोसरी वगैरह 3-4 हज़ार रुपये की आ जाएगी, और बाहर से भी अगर आप खाना खाते हैं तो मान लेते हैं 500 से 1,000 रुपये एक हफ्ते में आप लोगों का खर्च होएगा। अगर वहाँ पर आप जिम की मेंबरशिप भी लेते हैं तो भी आपका 1,000-1,500 रुपये लग जाएगा, है कि नहीं। और वहाँ पर देखो मनाली में आप जब जा रहे हो तो घूमोगे भी, वर्क फ्रॉम होम मिला हुआ है, बट स्टिल सैटरडे संडे छुट्टी होगी तो आप घूम भी लोगे। तो आपका टोटल खर्चा बताऊँ कितना आएगा, टोटल खर्चा आएगा आपका 21,000 रुपये महीना। अगर आपकी सैलरी 1,00,000 रुपये से ऊपर है तो 21,000 रुपये महीना आप वहाँ जाके रेंट पर रह सकते हैं और बहुत ही इजीली अपनी लाइफ स्पेंड कर सकते हैं। वर्क फ्रॉम होम, WFH कहते हैं ना, मैं बोलूँगा वर्क फ्रॉम हिल्स कर सकते हो आप लोग इतने रुपये में, सिर्फ और सिर्फ 21,000 में, और वो भी साफ हवा पानी में रहने का मौका मिलेगा, है कि नहीं। तो आप लोग इस चीज़ को अपना सकते हो। और हाँ, अगर पहाड़ों पर जा रहे हो, भले ही घूमने जा रहे हो, तो एक चीज़ ना मन में रखना हमेशा, और वो ये कि कोशिश करना कि गंदगी हम लोग ना फैलाएं और पहाड़ों को और नेचर को गंदा ना करें। चलिए अभी फिलहाल रेडियो महारानी सुनते जाइए, और अगर आप पूरे दिन भर काम करके टेंशन में हैं तो टेंशन दूर करने के लिए आप सभी के लिए गाना आ गया है, ये दिलजीत दोसांझ की आवाज़ में टेंशन। सुनिए इस गाने को रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूँ द मोस्ट वॉन्टेड मुंडा आप सभी।

0: हर शाम जब तुम घर लौटते हो, माँ की नजरें दरवाजे पर टिकी रहती है। पापा के सवालों में सख्ती से ज्यादा फिक्र होती है और छोटे भाई की वो मुस्कान जो सिर्फ तुम्हें देखकर खिल उठती है। सोचो अगर कभी ये मुस्कान इंतजार में ही रह जाए।
1: सफर लंबा हो या छोटा, हेलमेट पहने, हाई स्पीड में गाड़ी ना चलाएं और अपनों की हंसी को बचाएं। हेलमेट सिर्फ आपकी सुरक्षा नहीं, अपनों की खुशियों की गारंटी है।
2: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: लिया, ये भी नहीं पूछा कि तुम कैसी हो, और जब मिलने के लिए बोलो तो कहता है टाइम नहीं है, और दोस्तों के साथ घूमने के लिए टाइम ही टाइम है। जिस लड़की को जानता तक नहीं है उसकी फोटो पे भी लाइक कर देता है, और जब पूछो तो बोलता है बेबी बस फ्रेंड है, और पता है रील्स पे रिप्लाई ना करके रिएक्ट करके छोड़ देता है, और जब मैं कंप्लेंट करूं तो मुझे कलेशी कह देता है।
1: सही कह रही है, सब बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को कलेशी कहते हैं।

आफ्टर ऑल कब जाके ये 107 दिन बाद युद्ध खत्म हो चुका है। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ। खाड़ी देशों में वहां पर हम सबको पता है मिडिल ईस्ट में क्या क्राइसिस चल रहे थे, वॉर के सीन थे, और इसके बाद सब लोग परेशान हो गए थे क्योंकि सब जानते हैं कि इंडिया का पूरा पेट्रोल डीजल गैस सब कुछ वहीं से आता था, हॉर्मुज स्ट्रेट से होकर आता था। ऑल्दो इंडिया का सप्लाई चल रहा था बट स्टिल प्राइजेस बढ़े, हम सबको पता है प्राइजेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए। और आफ्टर 107 डेज 107 दिनों के बाद ये ख़त्म हो चुका है, और भगवान ना करे आगे कभी हो, क्योंकि देखो एक प्रिविलेज बंदा है ना वो तो आसानी से निकल जाता है इन सब चीज़ों से, मगर जो लोअर मिडिल क्लास फैमिली है, फिर मैं बोलूँ जो नीचे तबके के इंसान है ना, असल में वो पिसते हैं। पेट्रोल महंगा हो जाता है, फिर प्राइजेस महंगे होते हैं चीज़ों के, खाने पीने की चीज़ों के भी प्राइजेस महंगे हो जाते हैं, सिलेंडर महंगा हो जाता है, फिर खाना किस पे पकाएंगे। तो ये सब चीज़ें होती हैं जब भी ये क्राइसिस आते हैं। तो ऑल्दो मिडिल ईस्ट के क्राइसिस अब ख़त्म हो चुके हैं, और मैं बस ये बोलूँगा देखो बस जल्दी से ये पेट्रोल और डीजल के दाम भी कम हो जाए। मगर अगर कम हो जाते हैं ना, उसका मतलब ये नहीं है कि हम लोगों को फिर गेड़ी मारने निकल पड़ना है। नहीं, आप लोगों ने ऐसा नहीं करना है, क्योंकि अब देख लिया ना आप लोगों ने कि पेट्रोल और डीजल जब जाएगा तो फिर कितनी दिक्कत हो जाएगी। तो चलिए अभी मैं बस यही प्रे करूँगा लास्ट में कि अब ये क्राइसिस ख़त्म हो चुका है तो आने वाले टाइम में कोई और क्राइसिस ना आए। और इसी के साथ साथ रेडियो महारानी आप लोग सुनते जाइए। वापस अगर बात करते हैं लोगों के बारे में जो कहते हैं कि इंडिया में ऑयल महंगा है, तो भाई अमेरिका से कंपेयर करते हैं, कहते हैं अमेरिका में और इंडिया में ज़्यादा फ़र्क नहीं है। बहुत फ़र्क है। क्या है वो फ़र्क, करेंगे इसके बारे में बात, मगर दिलजीत दोसांझ की आवाज़ में।

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: अर्ज किया है?
0: अर्ज
1: करते हैं।
0: इरशाद,
1: जेबों में आइस क्यूब डालकर गर्मी भगाता हूँ। जेबों में आइस क्यूब डालकर गर्मी भगाता हूँ, तौलिया और बनियान पहनकर ऑफिस आता हूँ।
0: ऑफिस जाते हो या शौचालय?

0: जबान पर है।
1: तो मैं क्या करता यार, उसने इतनी चलाकी से कॉन्फ्रेंस कॉल का झांसा देकर ओटीपी निकाल लिया, मुझे पता ही नहीं चला।
0: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें। किसी भी अनजान नंबर या लालच भरे मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना करें। बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगता, इसलिए किसी भी अनजान नंबर से आए कॉल पर भरोसा ना करें। मजबूत पासवर्ड बनाएं और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचें। हर वीडियो और ऑडियो सच नहीं होती, इसलिए पहले फैक्ट्स को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें।
2: और जुड़े साइबर सिपाही कैंपेन से, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM। तो अब से बी सेफ, बी अवेयर।

ना मैं नहीं दे रहा, नहीं रिहाई की बात कर रहा था, कह रहा था ना ले ले रिहाई, नहीं दे रहा मैं रिहाई, था ये गाना रिहाई पैराडॉक्स की आवाज में। और इसी गाने के साथ स्वागत है जी सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर 6:30 मेरी स्टूडियो क्लॉक में 6:30 हो गए। देखो टाइम का पता नहीं चलता कैसे तेजी से बीतता है ये टाइम। और जब टाइम की बात आई है तो मैं आप सभी को बोल दूं, देखो एक टाइम था जब इंडिया में चीज़ें महंगी हो रही थी, अब एक टाइम आएगा जब इंडिया में चीज़ें सस्ती भी हो जाएगी। मगर कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं कि देखो अमेरिका में भी तेल इतने का ही मिल रहा है, इंडिया में भी तेल इतने का ही मिल रहा है, क्या फ़ायदा हुआ। फ़ायदा वायदा अभी साइड पर रखते हैं, मैं जो बात बताने जा रहा हूँ आप लोगों को वो ये है कि भाई हम लोगों के पास जो दवाइयाँ होती हैं ना वो ना बहुत सस्ते में मिल जाती है। और ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा एक अमेरिकन लेडी ने पूरी वीडियो बना के शेयर करी है और उसने दिखाया है कि जो दवाई वो हर महीने 95,000 रुपीज़ यानी कि $1,000 ऑलमोस्ट जब वो खर्च करती थी तब जाके उसको मिलती थी वो दवाई। और अब उसने वही दवाई सेम इंडिया से मंगवाई है और इंडिया से ख़रीदी, उसके बाद इंडिया से मंगवाई अपने पास और उसकी ड्यूटी भी भरी। सोचो उसको कितने की पड़ी होगी, मात्र $25 यानी कि 2300 रुपये में मिल गई उसको ये दवाई। और 2300 रुपये तो मैं शायद ज़्यादा बोल रहा हूँ, बट स्टिल नहीं कम ही बोल रहा हूँ, 2300 रुपये में उसको ये दवाई मिल गई है। और वहीं पर वो अमेरिका में रहते हुए 95,000 रुपीज़ भर रही थी सेम दवाई का। तो अब उस लड़की का भी ये कहना है कि हमारे साथ स्कैम हो रहा है, हमारा सिस्टम मजाक बन गया है और हमारे साथ ठगी हो रही है। तो देखो हर कंट्री में आप लोगों को कोई ना कोई फ्लॉज और कोई ना कोई पॉजिटिव साइड मिल जाएंगे, तो आप लोगों के ऊपर है आप लोग क्या चीज़ देखना चाहते हैं। चलिए अभी फिलहाल रेडियो महारानी आप लोग सुनते जाइए, वापस अगर बात करेंगे और भी चीज़ों के बारे में, जैसे कि अभी स्कूल के एग्ज़ाम चल रहे हैं, स्कूल की तो छुट्टियाँ चल रही हैं मगर किसी और चीज़ के एग्ज़ाम चल रहे हैं, कौन से है वो एग्ज़ाम करेंगे इसके बारे में बात मगर इस गाने के बाद।

0: बाहर का तो पता नहीं, पर तेरे साथ इस स्कैम के चर्चे हर जबान पर हैं।
1: तो मैं क्या करता यार, उसने इतनी चलाकी से कॉन्फ्रेंस कॉल का झांसा देकर ओटीपी निकाल लिया, मुझे पता ही नहीं चला।
0: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें। किसी भी अनजान नंबर या लालच भरे मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना करें। बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगता, इसलिए किसी भी अनजान नंबर से आए कॉल पर भरोसा ना करें। मजबूत पासवर्ड बनाएं और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचें। हर वीडियो और ऑडियो सच नहीं होती, इसलिए पहले फैक्ट्स को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें।
2: और जुड़े साइबर सिपाही कैंपेन से, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM। तो अब से बी सेफ, बी अवेयर।
3: मैं लड़की की
4: आशा इस पंजाब

0: culture.
1: डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। वैसे ही अगर हमने अभी कदम नहीं उठाए तो प्रदूषण को काबू करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए गाड़ियों का कम इस्तेमाल करें, पौधे लगाएं और अपने आसपास साफ सफाई का ध्यान रखें, वरना इस डॉन को पकड़ना सच में नामुमकिन हो जाएगा।
2: रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

हम सबके ग्रुप में एक इंसान ऐसा होता है जो बोलता है कि भाई इस बार सरकारी एग्जाम क्लियर करके दिखाऊंगा, और फिर आगे क्या होता है वो हम सबको ही पता है। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मंडा आप सभी के साथ। सब लोग एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, और यहां पर एक वीडियो आया जहां पर यूपी पुलिस की भर्ती परीक्षा थी, और वो थी जौनपुर में। वहां पर एक्चुअली में चेकिंग होती है पेपर जाने से पहले, तो फिर पूरी चेकिंग की गई, उनके जूते उतरवाए गए लड़कों के, और बोला गया देखो जूते उतारो, सॉक्स भी उतारो, एंड इसके साथ साथ पूरे अच्छे से चेकिंग हुई, मेटल डिटेक्टर से चेकिंग हुई। मगर हद तो तब हो गई जब मेटल डिटेक्टर जितने भी लोग आ रहे थे ना पेपर देने के लिए, उनके मुंह के अंदर घुस दिया जा रहा था। और ये मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये पूरी की पूरी वीडियो है जो कि वायरल हो रही है, और सब लोग इस पर इतना हंस रहे हैं, इतने हंसे वाले कमेंट्स कर रहे हैं। एंड जैसे ही मैंने ये वीडियो देखी, मैं भी ये सोच रहा था कि अब तो बस ये अल्ट्रासाउंड और एक्सरे ही रह गया है, क्योंकि जब मेटल डिटेक्टर मुंह के अंदर डाल दिया जा रहा है तो फिर अल्ट्रासाउंड और एक्सरे भी करवा दो, क्या पता अंदर बॉडी के अंदर कुछ छुपा के ले जा रहा हो पेपर में। चलिए सब तो मजाक की बातें थी, मगर इसी के साथ साथ एक बात बोलना चाहूंगा, चीटिंग बुरी बात है। और अभी फिलहाल रेडियो महारानी आप लोग सुनते जाइए, MC Square की आवाज में आप सभी के लिए गाना लाडो, ओनली ऑन 89.6 FM। कुछ हट

अस्थमा के मरीजों के लिए धूल और धुआं जीने का हक छीन सकता है। आइए मिलकर एक कदम उठाएं, एक यूआई का लेवल कम करें, गाड़ी को पूल करें और पेड़ लगाएं। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: वो खिड़की पर बैठी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका इंतजार इंतजार ही न रह जाए।
0: सफर पर निकलने से पहले बस एक छोटी सी चीज मत भूलिए, हेलमेट। आपकी एक सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बदल सकती है।

0: 89.6 FM
1: कुछ छक्के
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

एक लड़का था जो कि बहुत ज्यादा पढ़ने का शौकीन था, मगर उसकी लाइफ में एक प्रॉब्लम थी कि उसके पास पैसे नहीं हुआ करते थे। तो उसके टीचर ने उसके लिए फीस भरी, सारी की सारी मतलब जितनी भी जरूरतें थी सब पूरी करी, और फिर लड़के ने क्या किया। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर, मैं हूं द मोस्ट वांटेड मंडा आप सभी के साथ। और ये कोई जो मैं कहानी सुना रहा हूं ये कोई हवाई कहानी नहीं है, ये असलियत की है। और ये कर्नाटक का एक लड़का है नवीन, और उसने अपने टीचर को कुछ दिया है। क्या दिया है? रिटायरमेंट के दौरान उसने दिया है एक ब्रांड न्यू स्विफ्ट गाड़ी। हाँ, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, एक्चुअली मैं इस बच्चे की जो फाइनेंशियल कंडीशन थी वो नहीं थी सही, और फिर उसके बाद इसके टीचर ने इसको बहुत पढ़ाया। तो मतलब लड़का खुद कह रहा है कि जब तक मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं करी थी तब तक मेरे पिता की तरह मेरे साथ में खड़े रहे थे मेरे टीचर, इसलिए मेरा फ़र्ज बनता है कि मैं अपने टीचर को एक अच्छा सा गिफ्ट दूँ, और मेरे मन में और कोई गिफ्ट नहीं आया इसलिए मैंने ये गाड़ी गिफ्ट कर दी। ऑल्दो मुझे ऐसा लगता है, देखो गिफ्ट ना गिफ्ट ही होता है क्योंकि उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, वैल्यू लगाई ही नहीं जा सकती। स्विफ्ट भी गाड़ी, अगर वो कुछ और भी देता तब भी उसे गिफ्ट ही माना जाता और उसको भी सराहा ही जाता। तो आप लोग बताइए, आप लोगों को आज तक मोस्ट वैल्यूएबल गिफ्ट क्या मिला है? नंबर है जी हमारा 9654896896। मैं अपनी बात करूं, मुझे एक बार गिफ्ट में स्केट्स दिए थे मेरे दोस्त ने, और फिर वो मैंने कभी पहने नहीं थे क्योंकि मुझे पता था कि ये मुझे गिरते हुए देखना चाहता है, इसलिए मैंने वो पहने ही नहीं, मैंने अपने पास संभाल के रखे हैं। चलिए अभी फिलहाल रेडियो महारानी पर आप सभी के लिए गाना लारे मनिंदर भट्टर की आवाज में आप सुन रहे हैं किसको, मुझे, कहां पर, 89.6 रेडियो महारानी पर।

0: पता नहीं, पर तेरे साथ इस स्कैम के चर्चे हर जबान पर हैं।
1: तो मैं क्या करता यार, उसने इतनी चलाकी से कॉन्फ्रेंस कॉल का झांसा देकर ओटीपी निकाल लिया, मुझे पता ही नहीं चला।
0: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें।
2: किसी भी अनजान नंबर या लालच भरे मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना करें। बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगता, इसलिए किसी भी अनजान नंबर से आए कॉल पर भरोसा ना करें। मजबूत पासवर्ड बनाएं और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचें। हर वीडियो और ऑडियो सच नहीं होती, इसलिए पहले फैक्ट्स को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें।
3: और जुड़े हैं साइबर सिपाही कैंपेन से, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM। तो अब से बी सेफ, बी अवेयर।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: वो खिड़की पर बैठी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका इंतजार इंतजार ही न रह जाए।
2: सफर पर निकलने से पहले बस एक छोटी सी चीज मत भूलिए, हेलमेट। आपकी एक सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बदल सकती है।

0: यार कभी खिड़की से जो ठंडी हवा आती थी ना, आज उसमें भी जहर घुला महसूस होता है।
1: क्योंकि तन्हा होकर भी ये हवा हमसे बहुत कुछ कहती है, हमारी गलतियों की सजा ये चुपचाप सहती है। अभी भी वक्त है इसे शुद्ध कर दुलार दे, इस धरती को उसकी खोई मुस्कान फिर से उधार दे।
2: रेडियो महारानी आप सभी से अपील करता है, अपनी खूबसूरत से जिंदगी को पॉल्यूटेड एयर से संकट में ना डालें और एनवायरनमेंट को पॉल्यूट होने से बचाएं।

क्या आपको मालूम है कल इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच में क्या हुआ? आप लोगों ने देखा ही होगा, मगर मैं बता देता हूँ आप लोगों को, कल इंडिया ने पाकिस्तान को बहुत ही अच्छे से हरा डाला। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर, मैं हूँ द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ। कल का मैच वॉज अमेजिंग, T20 मैच था, इंडिया वर्सेज पाकिस्तान वुमेन्स T20, और यहाँ पर इंडिया जीत गई 64 रनों से। और अगर मैं बात करूं इंडियन टीम की, तो जितनी बात करूं उतनी कम है, क्योंकि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान जब भी होता है ना, तो एक अलग ही लेवल का क्रेज़ छा जाता है। और अगर मैं स्कोर कार्ड की बात करूं, तो यहां पर इंडियन बैट्समैन बैटर कहेंगे स्मृति मंदाना, उन्होंने बहुत ही अच्छे से बैटिंग करी, 68 रन उसने बनाए। और साथ ही साथ अगर मैं बात करूं कप्तान की, हरमनप्रीत कौर की, तो उन्होंने भी 35 बॉलों पर 36 रन बनाए। और यहाँ पर अगर इंडियन क्रिकेट टीम की बॉलिंग की बात करूँ, बॉलिंग लाइनअप वॉज अमेजिंग। दीप्ति शर्मा ने टोटल 5 विकेट लिए हैं, वो भी 4 ओवर में 10 रन देते हुए। और एक और खिलाड़ी हैं इंडिया की, और उनका नाम है चरानी, तो उन्होंने भी 3 विकेट लिए हैं। तो भाई ये इंडियन टीम है, और ये इस बार बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, और देखते हैं आने वाले टाइम में और भी क्या क्या होने वाला है इस T20 वर्ल्ड कप में। चलिए अभी फिलहाल आप लोग रेडियो महारानी सुनते जाइए, आप सभी के लिए ऐसी ढेर सारी बातें लेकर आते रहूँगा। और अगर कल का मैच नहीं देखा ना, तो आप लोग हाइलाइट्स देख सकते हैं आपके अपने हॉटस्टार पे। तो चलिए मुझे दीजिए इजाज़त, कहीं नहीं जा रहा हूँ, बस बाहर जाके वापस आ रहा हूँ। आप लोगों के साथ फिर बात करेंगे एक ऐसी मूवी की जिसको पोस्टपोन किया गया था जस्ट बिकॉज ऑफ धुरंधर 2, और अब फिर से उसको पोस्टपोन किया जा रहा है। क्या है रीजंस, करेंगे इसके बारे में बात, मगर इस गाने के बाद। केसरिया, ये गाना फ्रॉम द मूवी ब्रह्मास्त्र।

0: यार कभी खिड़की से जो ठंडी हवा आती थी ना, आज उसमें भी जहर घुला महसूस होता है।
1: क्योंकि तन्हा होकर भी ये हवा हमसे बहुत कुछ कहती है, हमारी गलतियों की सजा ये चुपचाप सहती है। अभी भी वक्त है इसे शुद्ध कर दुलार दे, इस धरती को उसकी खोई मुस्कान फिर से उधार दे।
2: रेडियो महारानी आप सभी से अपील करता है, अपनी खूबसूरत से जिंदगी को पॉल्यूटेड एयर से संकट में ना डालें और एनवायरनमेंट को पॉल्यूट होने से बचाएं।

0: हाँ तो अर्ज किया है।
1: ओहो, अर्ज होता है अर्ज।
0: कर रहे हैं आप, सुनो तो
1: इरशाद।
0: स्कैम कॉल करने वालों का फोन हमारे नंबर पर आ गया।
1: तुम्हारे नंबर पे?
0: हाँ जी।
1: अच्छा,
0: और उन्होंने पूछा क्या?
1: क्या पूछा?
0: हाँ, पैसे दे दो वरना कार ठोकने के जुर्म में आपका बेटा जेल जाएगा, उन्होंने ये बताया।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ, हमने कहा भाई सिंगल हूँ मैं, ना तो मेरा कोई बेटा है ना मेरी कोई कार है।
1: अच्छा,
0: हमारी लाइफ में खटारा जी साइकिल है वो भी बेकार है।
1: बिल्कुल तुम्हारी तरह। ओ पागल, तुम्हें कहना चाहिए था वो भी उधर हार ली हुई है।
0: नहीं नहीं, रेंट पे है, ईएमआई पे।
1: अब तुम बोलते रहो, हम सबको बता कर आते हैं कि स्कैम कॉल्स को वैसे ही इग्नोर करें जैसे तुम्हारी क्रश तुम्हारी कॉल को करती है।
0: इज्जत का फालूदा कर दिया यार।
1: बाय।
0: अरे सुनो तो, कहाँ चली?

आदित्य रिखाड़ी की आवाज में था ये गाना हम दम। और इसी गाने के साथ स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ। एंड एंड एंड मेरे दोस्त, एक बात बोलना चाहूंगा और वो बात ये कि एक ऐसी फिल्म है जिसको धुरंधर 2 की वजह से पोस्टपोन कर दिया गया था। धुरंधर 2 कब आई थी? मार्च में, नेवर एंडिंग मार्च कह सकते हैं उसे, क्योंकि खत्म ही नहीं हो रहा था मार्च। और मार्च में धुरंधर 2 की वजह से एक मूवी थी जिसका नाम था टॉक्सिक, उसको पोस्टपोन कर दिया गया। मगर फिर पोस्टपोन करने के बाद भी कुछ नहीं हुआ, क्योंकि उसको बोला जा रहा था कि नवंबर तक तो रिलीज कर ही देंगे, मगर नवंबर तक भी रिलीज नहीं कर रहे, क्योंकि नवंबर में आ रही है फिल्म रणबीर कपूर स्टारर रामायण। तो रामायण देखने के लिए सभी लोग एक्साइटेड है, क्योंकि अभी एक ट्रेलर टीजर कह सकते हैं वो आया था, तो उस पर काफ़ी सारे लोगों ने बवाल मचाया कि नहीं नहीं नहीं, आप लोगों ने AI का इस्तेमाल किया है। और अब कहा जा रहा है कि ये फिल्म जब आएगी तो धमाल मचा देगी। तो इसलिए टॉक्सिक, जो कि एक साउथ इंडियन मूवी है और इसमें सुपरस्टार यश हैं, तो यश की ये जो मूवी है इसको फिर से पोस्टपोन करा जा रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ रामायण। तो मैं तो यही बोलना चाहूँगा कि ऐसी पोस्टपोन होती रहेगी, फिर साल 2026 में तो नहीं रिलीज़ हो सकती है फिल्म, है ना, साल 2027 में ही होगी फिर, ऐसा मुझे लगता है। और इसी के साथ साथ अगर मैं नई फिल्म्स की बात करूं तो धमाल 4 का भी ट्रेलर आ चुका है, पुरानी कॉमेडी के सीन्स भी इसमें लिए गए हैं और मुझे ऐसा लगता है कि ये फिल्म अच्छी नहीं जाएगी। ऐसा क्यों लगता है? आप लोग ट्रेलर देख लो, आप लोगों को समझ आ जाएगा। चलिए अभी फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, हाँ अभी गाना चला रहा हूँ आप लोगों के लिए, वापस आऊँगा और भी बातें करेंगे। एंड इसी के साथ साथ रेडियो महारानी 89.6 पर आप सभी के लिए ये स्टेबिन मैन की आवाज़ में सुनिए गाना रेडियो महारानी पर।

0: यार कभी खिड़की से जो ठंडी हवा आती थी ना, आज उसमें भी जहर घुला महसूस होता है।
1: क्योंकि तन्हा होकर भी ये हवा हमसे बहुत कुछ कहती है, हमारी गलतियों की सजा ये चुपचाप सहती है। अभी भी वक्त है इसे शुद्ध कर दुलार दे, इस धरती को उसकी खोई मुस्कान फिर से उधार दे।
2: रेडियो महारानी आप सभी से अपील करता है, अपनी खूबसूरत से जिंदगी को पॉल्यूटेड एयर से संकट में ना डालें और एनवायरनमेंट को पॉल्यूट होने से बचाएं।

0: प्यार का तो पता नहीं, पर तेरे साथ इस स्कैम के चर्चे हर जबान पर हैं।
1: तो मैं क्या करता यार, उसने इतनी चलाकी से कॉन्फ्रेंस कॉल का झांसा देकर ओटीपी निकाल लिया, मुझे पता ही नहीं चला।
0: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें।
2: किसी भी अनजान नंबर या लालच भरे मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना करें। बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगता, इसलिए किसी भी अनजान नंबर से आए कॉल पर भरोसा ना करें। मजबूत पासवर्ड बनाएं और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचें। हर वीडियो और ऑडियो सच नहीं होती, इसलिए पहले फैक्ट्स को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें।
3: और जुड़े साइबर सिपाही कैंपेन से, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM। तो अब से बी सेफ, बी अवेयर।

सताता नहीं है मुझको, पर दिल के राज कहना है आज बस ये लगता है यू शुड नो। है मन उदास का पे आवाज, फिर भी मैं जोड़ के हाथ, जो भी है पास है उस पे नाज, बस कहना है थैंक्स अ लॉट।

यहाँ देखो वहाँ देखो जहाँ भी देखो एक ही चीज देखने को मिलती है, वो है कूड़ा कूड़ा और कूड़ा। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूँ द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ। एंड कल क्या हुआ? कल जो हुआ वो तो हुआ, कल बहुत सारे लोगों ने छबील लगाई थी, आज भी बहुत सारे लोगों ने छबील लगाई थी, मगर फिर दोपहर आते आते 3 बजे के आसपास जो आंधी चली उसके बाद पता चला आफ्टर मैथ, मतलब कि लोगों ने प्लास्टिक के गिलास में पानी पिलाया था सबको और वो प्लास्टिक के गिलास फिर डस्टबिन के अंदर नहीं जाते, वो लोग वहीं पर ही फेंक देते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि देखो कहीं ना कहीं हम लोग बहुत गलत कर रहे हैं, तो ये प्लास्टिक के गिलास का भी ध्यान रखना पड़ेगा। और जैसे ही आंधी चली मैं उधर से गुजर रहा था और एकदम से प्लास्टिक के गिलास हवा में उड़ते हुए देखे मुझे, और फिर मुझे अच्छा सा नहीं लगा। तो मैं बस यही शेयर करना चाहता हूँ कि अगर कोई भी इंसान मुझे सुन रहा है, जो भी इंसान किसी के लिए खाने के लिए अगर कुछ लगा रहा है फिर पीने के लिए पानी पिला रहा है उन्हें, तो इंश्योर कीजिए कि वहाँ पर एक डस्टबिन ज़रूर हो, ताकि ये जो प्लास्टिक के गिलास है ना ये डस्टबिन में ही जाए और फिर इसका सही तरह से निवारण हो सके। चलिए अभी फिलहाल रेडियो महारानी से मुझे दीजिए इजाजत, मैं मिलूंगा फिर से आप सभी से कल शाम 5 से 8, तब तक ले बाय बाय, टेक केयर। वापस आएगी गीत विदेश को बाजियां, और अभी आप सभी के लिए ये गाना जो कि बैकग्राउंड में बज रहा है अजूल और सेरा का मिक्स मैशअप ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM, कुछ हटके।

0: यार कभी खिड़की से जो ठंड।
1: जानते हो बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
2: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
3: चीन का हांजो शहर जानते हैं आप? वहीं पर हमने रचा था इतिहास जब 2022 के एशियन गेम्स में हमने 107 मेडल्स जीते थे, क्योंकि पीछे थी हमारे 1045 खेलो इंडिया सेंटर्स की ट्रेनिंग, कंडीशनिंग कोचेस, डाइटिशियंस और फिजियोस की पूरी फौज। तभी तो पैरालंपिक में भी हमने रिकॉर्ड 29 पदक जीते और हॉकी, बैडमिंटन, एथलेटिक्स, वुमन क्रिकेट, बॉक्सिंग, चेस सभी मैदानों में तिरंगा फहराया।
2: एक खिलाड़ी दुनिया के किसी कोने में हाथ में तिरंगा लेकर के दौड़ता है, सारे हिंदुस्तान में ऊर्जा भर देता है, सारे हिंदुस्तान में चेतना भर देता है।
3: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: कर गए।
1: घर का छोटा हूँ इसलिए निकम्मा हूँ।
2: दिल पे जख्म खाते हैं, जान से गुजरते हैं।
3: सुन भाई सुरेंद्र।
4: हाँ भाई सुरेंद्र।
3: मैं घर का छोटा हूँ जिसको सब निकम्मा बोलते हैं। मम्मी बोलती है काम कर लिया कर, रोज सुबह पानी की बोतल फ्रिज में रख देता हूँ, रिमोट मैं ढूंढता हूँ, पापा का फोन मैं चार्ज करता हूँ, जब सब सोते हैं तब लाइट बंद मैं करता हूँ, जब घर में कुछ गलत होता है सब बोलते हैं इसी ने करा होगा, मेरी बातों को कोई सीरियसली नहीं लेता, मार्केट से सामान मैं ही लेकर आता हूँ, फिर भी सब मुझे ही कहते हैं।
4: सही कह रहे तुरेंद्र, कितना भी कर ले, कार का छोटा बेटा रहेगा तो निकम्मा ही।

0: 89.6 FM
1: कुछ छक्के
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।
4: जानते हो बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
5: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
4: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

कितनी अजीब चीज है ना ये इश्क। कभी यही इश्क दुनिया की हमें सबसे खूबसूरत जगह पर ले जाता है और कभी यही इश्क हमें हमारी तन्हाइयों से मिलवा देता है। इश्क में सब कुछ बहुत गहरा हो जाता है, खुशी भी है, याद भी है और इंतजार भी है। हेलो हाय, आप सुन रहे हैं शो इश्क बाजियां और मैं आपके साथ हूँ इश्क वाली गीत।

ये समय इश्क को समझने के लिए सबसे सही होता है। तो चलिए इसी रात, इसी खामोशी और इन्हीं एहसासों के साथ शुरू करते हैं इश्क बाजियां का पहला सेगमेंट, इश्क शायराना, जहां हम बात करते हैं उन शायरों की जिन्होंने मोहब्बत को सिर्फ महसूस नहीं किया बल्कि उसे शब्दों में ऐसे ढाला कि उनकी शायरी आज भी दिल तक सीधा पहुंच जाती है। और आज इश्क शायराना में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी शायरा की जिनकी शायरी में मोहब्बत की नरमी भी है और जुदाई की चुप्पी भी। मैं बात कर रही हूँ परवीन शाकिर के बारे में। परवीन शाकिर की शायरी की सबसे खूबसूरत बात यही है कि वो इश्क को किसी कहानी की तरह नहीं लिखती, वो इश्क को जिंदगी की तरह लिखती है, जहाँ सब कुछ हमेशा परफेक्ट नहीं होता, जहाँ लोग हमेशा साथ नहीं रहते, जहाँ कभी कभी मोहब्बत बस एक याद बनकर रह जाती है। उनकी गजल है जिसकी शुरुआत ही इतनी सच्ची है कि सुनने को लगता है जैसे किसी ने दिल की बात कहती हो। वो लिखती है, अब भला छोड़ के घर क्या करते, शाम के वक्त सफर क्या करते। सोचिए जब दिल किसी के पास रह जाए तो इंसान कहीं और जाकर भी क्या करेगा। रास्ते चाहे कितने भी खुले क्यों ना हो, सफर तभी खूबसूरत लगता है जब कोई साथ चलने वाला हो, और अगर वही इंसान हमारे साथ ना हो तो फिर सच में शाम के वक्त सफर करने का मतलब क्या रह जाता है। और आगे लिखती है, तेरी मसरूफियतें जानते थे, अपने आने की खबर क्या करते। कितना गहरा एहसास है इसमें। कभी कभी हम किसी की जिंदगी में इतने धीरे धीरे शामिल हो जाते हैं कि हमें लगता है शायद हमारी मौजूदगी भी मायने रखती है, लेकिन फिर वही एहसास होता है कि सामने वाला इंसान हमारी नहीं अपनी ही दुनिया में मसरूफ है। और तब दिल चुपचाप अपने कदम पीछे खींच लेता है, ना कोई शिकायत है ना कोई सवाल है, बस एक खामोशी। और शायद इसी खामोशी को परवीन शाकिर ने अपने एक और शेर में बहुत ही खूबसूरती से कहा है। वो मुसाफिर ही खुली धूप का था, साए फैला के शजर क्या करते। मतलब अगर कोई इंसान रुकने के लिए बना ही नहीं है, अगर वो एक मुसाफिर था तो फिर हम अपनी मोहब्बत की छांव फैलाकर भी उसे रोक कैसे लेते। कभी कभी जिंदगी में कुछ लोग बस मुसाफिर होते हैं, वो आते हैं हमारी दुनिया में, कुछ यादें छोड़ जाते हैं और फिर आगे बढ़ जाते हैं, और हम काफी देर तक उन्हीं रास्तों को देखते रहते हैं जहां से वो गुजरा था। परवीन शाकिर की शायरी की मोहब्बत को सिर्फ पाने की बात नहीं करती, वो मोहब्बत के बाद बच जाने वाली खामोशी की भी बात करती हैं, और शायद इसीलिए उनकी शायरी सुनते हुए हर इंसान को कहीं ना कहीं अपनी कहानी नजर आ ही जाती है। मैं आपके साथ हूँ इश्क वाली गीत, आप सुन रहे हैं इश्क बाजियां। एक गाना सुनते हैं और वापस लौटेंगे इसी इश्क शायराना के सफर में परवीन शाकिर की कुछ और बातों के साथ।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
1: इंटरनेट एक बहुत ही क्यूट सा बिल्ला है, दूर से प्यारा पास जाके कभी कभी काट लेता है। अगर कोई मैसेज आए यू वन 50,000 तो समझ लो ये पैसा नहीं फसाया जा रहा है। ओटीपी मत देना, पासवर्ड मत बताना, और अगर कोई बोले मैं बैंक से बोल रहा हूँ तो बोलो बैंक से हो तो इंटरेस्ट बढ़ाओ, मेरा इंटरेस्ट मत घटाओ। ऑनलाइन मत फिसलिए वरना हैकर्स आपको डिजिटल गोलगप्पा बना देंगे।
2: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

और ये था बहुत ही खूबसूरत गाना। रात की खामोशी में कुछ गाने ऐसे होते हैं जो बस सुनाई नहीं देते बल्कि महसूस होते हैं। आप सुन रहे हैं इश्क बाजियां और मैं हूं आपके साथ इश्क वाली गीत। और जैसे जैसे रात गहरी होती जा रही है वैसे दिल भी थोड़ा थोड़ा और सच्चा होता जा रहा है। दिन में हम बहुत सारी बातें छुपा लेते हैं, मुस्कुरा लेते हैं, खुद को बिजी रख लेते हैं, लेकिन रात रात को अक्सर वो ख्याल वापस आ जाते हैं जिनसे हम दिन भर बचते रहते हैं। और शायद यही वजह है कि इश्क को समझने के लिए ये समय बहुत खूबसूरत है। इसलिए इश्क बाजियां के पहले सेगमेंट इश्क शायराना में मैं बात कर रही हूँ परवीन शाकिर के बारे में। परवीन शाकिर की अगली नज्म पर बढ़ते हैं जहाँ वो मोहब्बत को किसी बड़े दावे के साथ नहीं लिखती हैं। वो मोहब्बत को छोटी छोटी यादों, छोटी छोटी मुलाकातों और दिल की हल्की सी कसक में ढूंढती हैं। उनकी एक बहुत ही खूबसूरत गजल है जिसका पहला ही शेर है, कुछ तो हवा भी सर्द थी, कुछ था तेरा ख्याल भी, दिल को खुशी के साथ साथ होता रहा मलाल भी। कितनी सच्ची बात है, कभी कभी जिंदगी में खुशी और उदासी एक साथ होती है। आप मुस्कुरा रहे होते हैं लेकिन दिल के किसी कोने में एक हल्की सी कमी रह जाती है, क्योंकि कुछ लोग हमारी खुशी का हिस्सा बन जाते हैं और जब वो साथ नहीं होते तो खुशी भी थोड़ी अधूरी सी लगती है। और वो आगे लिखती है, मेरी तलब था एक शख्स, वो जो नहीं मिला तो फिर हाथ दुआ से यूं गिरा, भूल गया सवाल भी। ये शेर सुनकर लगता है जैसे किसी ने दिल की थकान लिख दी हो। जब हम किसी को बहुत चाह लेते हैं और वो हमें नहीं मिलता तो एक ऐसा वक्त भी आता है जब इंसान दुआ करना भी छोड़ देता है, क्योंकि उसे लगता है कि शायद किस्मत में अब वो नाम नहीं है। लेकिन परवीन शाकिर की शायरी की यही खूबसूरती है, वो मोहब्बत को शिकायत नहीं बनने देती, वो उसे एक याद बना देती है। ऐसी याद जिसमें कभी चांद की रोशनी होती है, कभी ठंडी हवा और कभी दिल की हल्की सी कसक। मैं हूँ गीत और आप सुन रहे हैं इश्क बाजियां। गाना सुनते हैं, गाने के बाद फिर से लौटेंगे।

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, साइबर थ्रेट स्मॉल एक्शन से बड़ी प्रॉब्लम्स बना सकते हैं, सो बी सेफ, बी अलर्ट।

इसी खूबसूरत गाने के साथ फिर से स्वागत है। कभी कभी कुछ गाने ऐसे होते हैं जो बस कानों तक नहीं रुकते, सीधा दिल तक उतर जाते हैं। आप सुन रहे हैं इश्क बाजियां, मैं आपके साथ हूँ इश्क वाली गीत। हम बात कर रहे हैं परवीन शाकिर के बारे में। परवीन शाकिर की शायरी में सिर्फ इश्क मिल जाने की खुशी नहीं है, उसमें बिछड़ जाने की सच्चाई भी है और याद बनकर रह जाने का दर्द भी है। तो उनका एक और शेर मैं आपको सुनाती हूँ। वो लिखती है, वो तो खुशबू है हवाओं में बिखर जाएगा, मसला तो फूल का है, फूल किधर जाएगा। कितनी खूबसूरत बात है इसमें। कुछ लोग सच में खुशबू की तरह होते हैं, वो हमारी जिंदगी में आते हैं और फिर हवाओं में बिखर जाते हैं। लेकिन जो इंसान उनसे मोहब्बत कर बैठता है, उसके लिए सवाल ये नहीं है कि वो कहाँ गया, सवाल ये होता है कि अब वो खुद किधर जाए। वो आगे लिखती है, हम तो समझे थे कि एक जख्म है भर जाएगा, क्या खबर थी रगे जा में उतर जाएगा। कभी कभी हमें लगता है कि दिल पर लगा दर्द बस थोड़ा सा वक्त मांगता है, थोड़े दिन गुजरेंगे और सब ठीक हो जाएगा। लेकिन कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो सिर्फ दिल पर नहीं लगते बल्कि हमारी रूह में उतर जाते हैं, और फिर इंसान चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, उनकी याद कहीं ना कहीं हमारे साथ चलती रहती है। और फिर वो आगे लिखती है, वो जब आएगा तो फिर उसकी रिफाकत के लिए मौसम गुल मेरे आंगन में ठहर जाएगा। यानी दिल कहीं ना कहीं अब भी उम्मीद लगाए बैठा है कि अगर वो इंसान कभी लौट आया तो जिंदगी फिर से खूबसूरत हो जाएगी। कभी कभी इश्क यादों से ज्यादा उम्मीदों पर जिंदा रहता है, और शायद इसीलिए इंसान पूरी तरह अपने पसंदीदा इंसान को भूल नहीं पाता है। आप सुन रहे हैं इश्क बाजियां, मैं आपके साथ हूँ इश्क वाली गीत। हम गाना सुनते हैं, गाने के बाद फिर से लौटेंगे।

0: सब को सब नहीं मिल।
1: सदा सुरक्षित रहो, अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
2: सीट बेल्ट टाइट रखो, स्पीड ब्रेकर को इग्नोर करोगे तो फ्रैक्चर। रोड की लेन और इंटरनेट की चेन दोनों मत तोड़ना, एक छोटी सी गलती और सब आउट ऑफ कंट्रोल। और बस याद रखो, अलर्ट रहो, सिक्योर रहो और हर दिन को सेफ मोड पर चलाओ।

इसी खूबसूरत से गाने के साथ फिर से स्वागत है, आप सुन रहे हैं इश्क बाजियां, मैं आपके साथ हूँ इश्क वाली गीत, और ये हमारा बहुत ही खूबसूरत सा सेगमेंट है इश्क शायराना। हम बात कर रहे हैं परवीन शाकिर के बारे में। परवीन शाकिर की शायरी की सबसे खूबसूरत बात ये ही है कि वो मोहब्बत को सिर्फ शुरुआत से नहीं देखती, वो उसके बाद की खामोशी भी लिखती है। कभी जिंदगी में एक ऐसा मौसम आता है जब सब कुछ बहुत खूबसूरत लगता है, जैसे अचानक जिंदगी में बहुत गुलाब खिल गए हों, लेकिन वही मौसम जब गुजर जाता है तो उसकी याद भी धीरे धीरे दर्द बन जाती है। तो एक शेर है, सुनाती हूँ। गए मौसम में जो खिलते थे गुलाबों की तरह, दिल पे उतरेंगे वही ख्वाब अजाबों की तरह। यानी जो पल कभी बहुत खूबसूरत थे वही याद बनकर कभी कभी दिल को तकलीफ देते हैं, क्योंकि सच ये है कि इंसान यादों से भाग नहीं सकता, वो चाहकर भी कुछ चेहरों को, कुछ बातों को, कुछ लम्हों को भुला नहीं पाता। और फिर वो लिखती है, राख के ढेर पर अब रात बसर करनी है, जल चुके हैं मेरे खेमे मेरे ख्वाबों की तरह। ये शेर सुनकर लगता है जैसे किसी ने टूटे हुए सपनों की तस्वीर खींचती हो। हम अपने सपनों के साथ इतनी गहराई से जुड़ जाते हैं कि जब वो टूटते हैं तो सिर्फ सपना नहीं टूटता, हमारा एक हिस्सा भी टूट जाता है। लेकिन जिंदगी की अजीब बात यही है कि इंसान फिर भी जीता रहता है, वो राग के बीच भी एक नई सुबह ढूंढने की कोशिश करता है। और शायद इसीलिए मोहब्बत चाहे जितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, लोग उससे दूर नहीं भागते, क्योंकि मोहब्बत सिर्फ खुशी नहीं देती, वो इंसान को थोड़ा और गहरा बना देती है, मैच्योर बना देती है। मैं हूँ गीत, आप सुन रहे हैं इश्क बाजिया। यहाँ पर वक्त है गाने का, गाने के बाद फिर से लौटेंगे।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
1: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
2: आज की सेफ्टी टिप्स सुन लो, वरना आपकी लाइफ बन जाएगी एक्सपेक्टेशंस वर्सेस रियलिटी रील। रूल नंबर वन, जियो टैग मत लगाओ, क्योंकि ये इंस्टा है, जोमैटो नहीं। पासवर्ड यूनिक रखो, बर्थडे या लवर का नाम बिल्कुल नहीं, नहीं तो हैक होते ही तुम्हारी एस्थेटिक फीड बन जाएगी कॉमेडी कंटेंट। और हाँ, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन कर लो, नहीं तो नेक्स्ट स्टोरी होगी न्यू अकाउंट प्लीज फॉलो बैक। और भाई, स्ट्रेंजर्स को पिक्स मत भेजना, ये कोई शादी.com का फास्ट ट्रैक थोड़ी ना है। अननोन लिंक्स, उस पे क्लिक करना मतलब वायरस को चाय पर बुलाना। तो इंस्टा यूज करो, मस्त रहो, पर सिक्योरिटी के साथ, वरना वायरल तो हो जाओगे लेकिन ऑरा माइनस हो जाएगा।

यानी कि एक इंसान अगर साथ हो जाए तो ये पूरा जहां साथ हो जाए। इसी खूबसूरत से गाने के साथ फिर से स्वागत है, शो है इश्क बाजियां। मैं आपके साथ हूँ इश्क वाली गीत। परवीन शाकिब की बात हो रही है, उनकी शायरी बहुत खूबसूरत है, ये तो मानना पड़ेगा कि वो इश्क को सिर्फ कहानी नहीं बनाती बल्कि उसे याद बना देती हैं। ऐसी याद जो कभी पूरी तरह से खत्म नहीं होती। कभी कभी हम सोचते हैं कि वक्त गुजरने के साथ सब कुछ पीछे छूट जाता है, लेकिन सच ये है कुछ रिश्ते जिंदगी से नहीं जाते, बस दिल के किसी कोने में चुपचाप रख दिए जाते हैं। तो उनका अगला शेर है, याद तो होंगी वो बातें तुझे अब भी, लेकिन शेल्फ में रखी हुई बंद किताबों की तरह। कितनी गहरी बात है इसमें। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिन्हें हम रोज याद नहीं करते, लेकिन हमें पता होता है कि वो कहीं ना कहीं हमारे अंदर अभी भी मौजूद हैं, जैसे अलमारी में रखी कोई पुरानी किताब जिसे हम बार बार नहीं खोलते, लेकिन उसकी मौजूदगी हमें हमेशा पता होती है। और शायद यही वजह है कि मोहब्बत कभी पूरी तरह से खत्म नहीं होती, वो बस अपनी जगह बदल देती है। पहले वो किसी इंसान में होती है और फिर धीरे धीरे वो यादों में रहने लगती है। तो अगला शेर है, हिजर की शब मेरी तन्हाई पर दस्तक देगी, तेरी खुशबुएं मेरे खोए हुए ख्वाबों की तरह। यानी जुदाई की रात जब आएगी तो तेरी याद भी आएगी, ठीक वैसे ही जैसे कोई पुराना ख्वाब अचानक दिल में लौट आया हो। और शायद यही इश्क की सबसे गहरी बात है। इश्क हमेशा साथ रहने का नाम नहीं होता, कभी कभी इश्क बस एक खुशबू बनकर रह जाता है जो वक्त के साथ हल्की तो हो जाती है लेकिन पूरी तरह से खत्म नहीं होती। और यही खूबसूरत एहसास के साथ आज के इश्क शायरानों को हम यही विराम देते हैं। मैं हूँ इश्क वाली गीत, आप सुन रहे हैं इश्क बाजियां।

0: 89.6 FM
1: कुछ छक्के
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं।
3: कुछ हटके
4: पता है, जो नॉर्थ ईस्ट कभी दूर लगता था वो हमारे दिलों के और करीब आ गया है पिछले 12 सालों में, जब से नॉर्थ ईस्ट के नेशनल हाईवे की लंबाई बढ़कर 16,200 किलोमीटर हुई है। सिक्किम और अरुणाचल को पहली बार एयर कनेक्टिविटी मिली है। तब से नॉर्थ ईस्ट से दूरियां घटी हैं।
5: नॉर्थ ईस्ट अब दूर नहीं रहा, नॉर्थ ईस्ट अब दिल के भी पास है, दिल्ली के भी पास है।
4: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

वैसे इस गाने में आप किशोर दा की आवाज को फील कर रहे होंगे, लेकिन ये जो आवाज है ये एआई की आवाज है, किशोर दा की आवाज नहीं है। लेकिन है, जहां एआई के कुछ जो ड्रॉबैक्स हैं वहां कुछ फायदे भी हैं कि हम इन नए गानों को उस पुराने एहसास में जी पा रहे हैं। इसी गाने के साथ फिर से स्वागत है, शो है इश्क बाजियां और मैं हूँ इश्क वाली गीत। और अब सेगमेंट जो शुरू होने वाला है रेट्रो इश्क, जहां ऐसी ही एक मोहब्बत की कहानी के बारे में बात करेंगे जिसकी कहानी भले ही पूरी नहीं हुई हो लेकिन उस मोहब्बत ने कमाल किया है। तो चलिए रेट्रो इश्क में आज फिर चलते हैं, उसी मोहब्बत की गहराई को महसूस करते हैं। और ये खूबसूरत सी मोहब्बत है किशोर दा और मधुबाला की, जहां हंसी सिर्फ एक मुखौटा थी, अंदर कहीं एक टूटा हुआ इंसान था। कहते हैं ना कि कुछ मोहब्बतें बड़ा शोर मचाती हैं और कुछ चुपचाप किसी दिल के कोने में बस जाती हैं। और आज रेट्रो इश्क में उसी मोहब्बत के बारे में बात होगी जिसे हंसी में लपेटा गया मगर आंसू से सींचा गया, किशोर दा और मधुबाला की मोहब्बत। अभी वक्त है गाने का, गाने के बाद फिर से लौटेंगे, शो है इश्क बाजियां और मैं हूँ इश्क वाली।

0: रिड्यूस रीयूज रीसाइकिल यही है वो RRR जिन्हें फॉलो करके हमारा शहर एनवायरनमेंट से ऑस्कर जीत सकता है। पर ये 3 R आखिर है क्या? रेडियो महारानी आपको आसान भाषा में समझाता है। रिड्यूस यानी प्लास्टिक से बनी चीजों का कम से कम इस्तेमाल, रीयूज यानी जो दोबारा काम आ सके सिर्फ उसी प्लास्टिक का इस्तेमाल, रिसाइकिल यानी वेस्ट प्लास्टिक को फेंकने के लिए सिर्फ ब्लू डस्टबिन का इस्तेमाल।
1: FM 89.6 का रेजोल्यूशन यही है कि सिंगल यूज प्लास्टिक अब ऑप्शन में ही नहीं है।
2: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जनहित में जारी।
3: क्या कहा?

बहुत ही खूबसूरत सा गाना है और ये गाना है किशोर दा और लता जी की आवाज में। इसी गाने के साथ फिर से स्वागत है, शो है इश्क बाजियां और मैं हूँ इश्क वाली गीत। और रेट्रो इश्क के इस खास से सेगमेंट में हम आज बात करने वाले हैं किशोर दा और मधुबाला की मोहब्बत के बारे में। एक दौर था जब मधुबाला बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत अदाकारा मानी जाती थी, मुस्कुराहट उनकी पहचान थी और चेहरे पर एक ऐसा नूर था जैसे पर्दे पर बस चांद उतर आया हो। और दूसरी तरफ थे हमारे किशोरदा, बॉलीवुड का सबसे चुलबुला बिंदास और थोड़ा सा नहीं बहुत ज्यादा सा आवाज का जादूगर। जब दोनों पहली बार मिले तो एक स्टार और एक स्टैंड अप सिंगर की मुलाकात हुई, लेकिन ये मुलाकात मोहब्बत में कैसे बदल गई, दो लोग जो एक दूसरे से बिल्कुल ही ऑपोजिट थे उनको कैसे प्यार हुआ, इसके बारे में बात होगी। लेकिन अभी वक्त है गाने का, गाने के बाद फिर से लौटेंगे। शो है इश्क बाजियां और मैं हूं आपकी इश्क वाली गीत।

0: जिंदगी का सफर कितना भी हसीन हो, एक गलती और सब खत्म।
1: ये सड़कें तुम्हारी कहानियाँ नहीं सुनती, इन्हें सिर्फ तुम्हारी समझदारी दिखती है। इसलिए हाई स्पीड में गाड़ी चलाने से पहले एक बार जरूर सोचे, आपको किसी न्यूज़पेपर के पेज की हाईलाइट बनना है या अपनी खुद की कहानी का राइटर।
2: आपकी सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

रवि साहब की आवाज में है ये गाना और फिल्म हम किसी से कम नहीं जो आई थी 1977 में, और इसी गाने के साथ फिर से स्वागत है। शो है इश्क बाजियां और मैं हूँ इश्क वाली गीत, और हम बात करने वाले हैं किशोर दा और मधुबाला की मोहब्बत के बारे में। दो ऐसे नाम जिनका जिक्र किए बगैर हिंदी सिनेमा के बारे में बात करना शायद बेईमानी है। एक एक्टिंग वर्ल्ड की सुपरस्टार थी तो दूसरा संगीत जगत के बादशाह। इन दोनों को जिंदगी में सब कुछ मिला, लेकिन इनके प्यार की कहानी का जिस तरह से अंत हुआ वो आज भी आपकी आंखें भिगो देगा। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये दोनों कैसे करीब आए, इनको कैसे मोहब्बत हुई। लोग अक्सर कहते हैं कि मोहब्बत के लिए वक्त चाहिए, पर कुछ मोहब्बतें पहली नजर में ही दिल पर दस्तक दे देती हैं। मधुबाला जो उस वक्त दिलीप साहब की मोहब्बत में थी और अपना दिल जो है वो भी तोड़ चुकी थी, और तभी किशोरदा उनकी जिंदगी में आते हैं एक हंसी का मरहम बनकर। मधुबाला अपने करियर में पीक पर थी जब उन्हें पता चला कि उनके दिल में छेद है, और वो विदेश चली गई अपना इलाज कराने के लिए। और इस वक्त ये दोनों साथ में थे, यानी कि किशोरदा और मधुबाला साथ में थे, लेकिन जब किशोरदा को उनका पता चलता है तो उस वक्त वो बहुत भावुक हो जाते हैं और उन्हें सीधा शादी के लिए प्रपोज कर देते हैं। और जब कोई इंसान किसी से सच्चा प्यार करता है तो उसके साथ जिंदगी का हर लम्हा बिताने की चाह भी रखता है, फिर चाहे उसमें सुख हो या दुख, ये जानते हुए भी कि मधुबाला की जिंदगी का अंत कभी भी हो सकता है। लेकिन किशोरदा ने हमेशा उनका ख्याल रखा और उनसे शादी करने का फैसला लिया, और उन्हें कभी भी इस फैसले को लेकर पछतावा भी महसूस नहीं हुआ, क्योंकि वो सच्ची मोहब्बत में थे और मधुबाला के साथ अपनी पूरी जिंदगी गुजारना चाहते थे। इसके बाद क्या होता है ये मैं आपको बताऊंगी गाने के बाद। गाना सुनते हैं, गाने के बाद फिर से लौटेंगे। शो है इश्क बाजियां।

0: के तले।
1: कबीर, ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
2: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
1: पर महंगा हेलमेट, थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
2: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
3: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
4: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

स्वागत है, शो है इश्क बाजियां और मैं हूँ इश्क वाली गीत रेट्रो इश्क, जो बहुत ही खूबसूरत सा सेगमेंट है। किशोरदा और मधुबाला के बारे में बातें चल रही हैं, जहाँ एक ऐसा वक्त आ गया था मधुबाला की जिंदगी में कि किशोरदा ने इनको सीधा शादी के लिए प्रपोज कर दिया। लेकिन इससे कुछ समय पहले की बात है, जब इनकी बहुत ही एक सुपरहिट मूवी रही जिसका नाम था चलती का नाम गाड़ी। सेट पर मजाक मस्ती और हंसी के बीच धीरे धीरे दोनों की जिंदगी एक दूसरे में घुलने लगी। और जब मधुबाला की जिंदगी में एक ऐसा वक्त आता है जहां ये इनको सीधा शादी के लिए प्रपोज करते हैं, लेकिन मधुबाला का परिवार इस रिश्ते से खुश नहीं था। और यहां जब किशोरदा की बात आई तो उन्होंने अपने सारे एफर्ट्स लगाए इस मोहब्बत को पूरा करने के लिए, और आखिर में उन्होंने अपनी मोहब्बत को पा लिया, दोनों की शादी हो जाती है। लेकिन शादी के बाद होता यह है कि किशोरदा की फैमिली मधुबाला को एक्सेप्ट नहीं कर पाती। लेकिन पता है इन दोनों की मोहब्बत की सबसे बड़ी बात क्या थी? इतनी सारी चीजें होने के बाद भी इतनी बड़ी बड़ी बातें इनके रिश्ते पर कभी हावी नहीं हुई। देखो यार, हर कोई ये चाहता है कि जब किसी की जिंदगी का कोई नया चैप्टर शुरू हो तो उनकी फैमिली रहे उनके साथ, बड़ों का आशीर्वाद रहे उनके साथ। हालांकि कभी कभी किसी को ये खुशी नहीं मिल पाती, क्योंकि उनके परिवार उनसे अलग हो जाते हैं जब वो नए रिश्तों में बन जाते हैं। इनको भी अपनी फैमिलीज को पीछे रखना पड़ा, लेकिन इन्होंने अपनी मोहब्बत को पा लिया था उसी एफर्ट्स के साथ। और अभी वक्त है गाने का, गाने के बाद फिर से लौटेंगे। शो है इश्क बाजियां, मैं हूँ इश्क वाली गीत।

0: रिड्यूस, रीयूज, रीसाइकिल, यही है वो RRR जिन्हें फॉलो करके हमारा शहर एनवायरनमेंट से ऑस्कर जीत सकता है। पर ये तीन आर आखिर है क्या? रेडियो महारानी आपको आसान भाषा में समझाता है। रिड्यूस यानी प्लास्टिक से बनी चीजों का कम से कम इस्तेमाल, रीयूज यानी जो दोबारा काम आ सके सिर्फ उसी प्लास्टिक का इस्तेमाल, रिसाइकिल यानी वेस्ट प्लास्टिक को फेंकने के लिए सिर्फ ब्लू डस्टबिन का इस्तेमाल।
1: FM 89.6 का रेजोल्यूशन यही है कि सिंगल यूज प्लास्टिक अब ऑप्शन में ही नहीं है।
2: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जनहित में जारी।

शो है इश्क बाजियां और मैं हूँ इश्क वाली गीत। किशोर दा और मधुबाला के बारे में बातें चल रही हैं और बहुत ही इमोशनल सी इन दोनों की स्टोरी है। अच्छा, जब किसी की शादी होती है और शादी में बहुत सारी कस्में खाई जाती हैं कि वो एक दूसरे का साथ देंगे जिंदगी भर, चाहे सुख हो या दुख। खैर, आज के टाइम में ये बातें जो हैं वो बहुत ही बेमानी सी लगती हैं। शायद प्यार के मायने बदल गए हैं आजकल, शायद वो पहले वाली शिद्दत नहीं रही है। लेकिन किशोर दा की अगर मैं बात करूं, जिन्होंने अपनी हर कस्म को निभाया, मधुबाला को सबसे अच्छा इलाज उन्होंने कराया, लेकिन उनकी हालत जो है वो बीतते दिन बिगड़ती ही जा रही थी। इतना सब चल रहा था इनके साथ, लेकिन किशोर दा की मोहब्बत में जरा भी कमी नहीं आई। जीवन साथी बनने पर लोग कसम खाते हैं कि वो हर सुख दुख में एक दूसरे का साथ देंगे, और इस बात को किशोर दा ने करके दिखाया। उन्हें पहले से मधुबाला की सिचुएशन के बारे में पता था, लेकिन फिर भी उन्होंने उनसे शादी की और आखिरी सांस तक उनका ख्याल रखा। ये जो प्यार की कहानी है ना, ये हमें यही सिखाती है कि सुख दुख में अपने साथी के साथ खड़े रहने का मतलब क्या होता है। और आई थिंक आप इनके प्यार की कहानी को समझ ही गए होंगे। एक ऐसा चेहरा जो हमेशा हमें मुस्कुराता दिखा, लेकिन अपनी जिंदगी में कितना कुछ झेल रहा था हमारे किशोर दा। और अभी वक्त है गाने का। गाने के बाद फिर से लौटूंगी बहुत ही खास सा सेगमेंट लेकर। तब तक आप ये गाना सुनिए।

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: हाँ तो शुरू होते हैं और अर्ज करते हैं।
0: अर्जुन नहीं होता अर्ज अर्ज।
1: शायरी पे ध्यान लगाओ।
0: इरशाद
1: रोडवेज बस जैसा अपना हाल है यारों।
0: मेरा नहीं तुम्हारा ही होगा।
1: सबका ये सब कुछ टूटा फूटा है फिर भी अपना रुतबा है यारो।
0: ये बात तो सही है।
1: और बस की याद आती है जब भी लाइफ में कुछ समझ नहीं पाता हूँ।
0: कैसे कैसे?
1: कंडक्टर बोलता है आगे बढ़ो तो मैं मोटिवेट हो जाता।
0: अरे यार वो तो मैं कह रहा था कि मुंह उठाकर बस से उतरो और आगे बढ़ो। अब तुम बोलते रहो मैं तो चली गई मेरी बस आ गई।
1: सुनो सुनो हेलो।

पल पल दिल के पास। और इसी गाने के साथ स्वागत है फिर से, शो है इश्क बाजियां और दिल दिया गल्ला लेकर हाजिर हूँ। दिल दिया गल्ला में आपके दिलों की जो बातें हैं वो आप तक पहुंचानी है, और एक बहुत ही खास से टॉपिक के साथ मैं आई हूँ। इश्क बाजियां शो है, और कई बार लोग रिश्तों में आ जाते हैं, बड़े बड़े रिश्ते बना लेते हैं, काफी सारे वादे कर लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप नहीं हो पाती है। और लोग कहते हैं कि क्या ऐसा हो रहा है जो रिश्ता मजबूत नहीं हो पा रहा है, रिश्ता आगे नहीं बढ़ पा रहा है। तो शायद इस बात के पीछे ना एक बहुत बड़ा रीजन होता है कि आप अपने रिश्ते को ना गहराई से नहीं समझ पाते हैं। आप समझते हैं सामने वाले को, लेकिन उस तरह से नहीं जिस तरह से आपको समझना चाहिए। और अब बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि किस तरह से आप अपने रिश्ते को समझ सकते हैं, सामने वाले की रेस्पेक्ट कर सकते हैं ताकि आपका रिश्ता और ज्यादा स्ट्रांग हो जाए। इसी बारे में बातें होंगी आज दिल दियां गल्ला में। फिलहाल वक्त है गाने का, शो इश्क बाजियां, और गाना है फिल्म हमारी अधूरी कहानी से।

0: सुरक्षा नियमों को अगर अपनाओगे तो खुद के साथ साथ दूसरों की भी जान बचाओगे, क्योंकि दुर्घटना की है तीन यार, नशा, नींद और रफ्तार।
1: सदा सुरक्षित रहो। अरूर सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।
2: साइबर ठगी से बचने के लिए अपनाएं कुछ सरल उपाय।
3: किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ फोन कॉल पर OTP, UPI, पिन कोड और CVV शेयर ना करें। ATM बूथ से पैसे निकालते समय अनजान व्यक्ति की मदद ना लें।
2: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जनहित में जारी।
0: बच्चों को स्कूल से लाने में लेट हो जाती, इसीलिए रेड लाइट जंप करी।
4: बारिश तेज होने से पहले घर पहुंच जाऊं, बस इसीलिए गाड़ी तेज चला रहा था।
5: मेरा घर तो यही पास में है, इसलिए रॉन्ग साइड से जा रहा हूं। और अंकल, मेरी तो साइकिल है, कोई गाड़ी थोड़ी है।
1: रेडियो महारानी पूछता है, अपनी और दूसरों की जान खतरे में डालने का आपके पास क्या बहाना है? तो ट्रैफिक रूल्स की रिस्पेक्ट करो, तो ना एक्सीडेंट होगा और ना ट्रैफिक की परेशानी। FM 89.6 द्वारा जनहित में जारी।

शान की आवाज में है ये बहुत ही खूबसूरत सा ट्रैक सुनो ना। और इसी गाने के साथ फिर से स्वागत है शो इश्कबाजियां और सेगमेंट है दिल दियां गल्ला। और जब भी आप किसी के साथ रिलेशनशिप में आते हैं तो आपको रिश्ते और आपकी अंडरस्टैंडिंग के बारे में बहुत अच्छे से सोच लेना चाहिए, क्योंकि कई बार लोग ऐसे रिश्तों में बन जाते हैं जो उनके लिए आगे चलकर बहुत टॉक्सिक साबित हो जाते हैं। और अक्सर वो लोग घुलते रहते हैं उन रिश्तों में, ना तो छोड़ पाते हैं उन रिश्तों को और ना ही रह पाते हैं। और कई बातों में लोग पहले ही समझ जाते हैं, लेकिन कई रिश्तों में लोग आगे बढ़ जाते हैं और ऐसा रिश्ता टूटना लाजमी है। लेकिन क्या करना चाहिए उस टूटते हुए रिश्ते को बचाने के लिए, ऐसे में रिश्ते को गहराई से आपको बहुत जरूरी है जानना। कोई इंसान आपके लायक है या नहीं, आप कुछ बातों पर गौर करके ये पता लगा सकते हैं। तो वो कौन सी बातें होने वाली हैं जिन पर आपको गौर करना है? और सबसे पहली बात पता है क्या है? जैसा कि मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि रिश्ते में भले ही प्यार कम हो जाए, क्या कम हो जाए, लेकिन रिस्पेक्ट कम नहीं होनी चाहिए यार। तो इसलिए रिश्ते में ना रिस्पेक्ट बहुत जरूरी है और हर किसी रिश्ते में रिस्पेक्ट बहुत जरूरी है। लेकिन आपके मन में अपने पार्टनर और आपके पार्टनर के मन में आपके लिए अगर सम्मान है, इज्जत है, तो आपका रिश्ता ताउम्र चल सकता है। इसीलिए सबसे पहले ख्याल रखिए कि क्या सामने वाला आपकी इज्जत करता है दिल से। आप तो कर रहे हैं, आप तो पूरे एफर्ट्स कर रहे हैं, लेकिन क्या सामने वाले की तरफ से भी वो एफर्ट्स है या नहीं है? और अगर है तो आप समझिए उसे, और इस तरह समझकर आप अपने रिश्ते को बेहतरीन साबित कर सकते हैं। फिलहाल वक्त है गाने का, चलिए सुनते हैं इस गाने को। फिल्म भाग मिल्खा भाग से है गाना, बगैर तेरी किए सुनते हैं।

बातें आहिस्ता हैं और इसी गाने के साथ फिर से स्वागत है पंकज उदास की आवाज में है बहुत ही खूबसूरत सा गाना और आहिस्ता कीजिए बातें। सेगमेंट है दिल दियां गल्लां और बातें चल रही हैं कि किसी भी रिश्ते को गहराई से कैसे समझा जाए। कहते हैं कि हर रिश्ते की नींव होती है विश्वास। कोई रिश्ता तभी मजबूत हो सकता है जब एक दूसरे पर आपको पूरी तरह से यकीन हो। अपने रिश्ते को हेल्दी बनाने के लिए और गहराई से जानने के लिए एक दूसरे पर भरोसा करना बहुत जरूरी है और ये भरोसा ही वो होता है जो एक स्पेशल बॉन्ड बनाता है। तो इसीलिए आप अपने पार्टनर पर, आप जिससे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, उस पर भरोसा बनाए रखिए। और अगर सामने वाला आप पर भरोसा करता है ना दिल से, तो आप उसके भरोसे को कभी ना तोड़े, क्योंकि ये ट्रस्ट अगर एक बार टूट गया तो जुड़े नहीं जुड़ता है यार। क्योंकि कहा ना, हर रिश्ते की नींव होती है यकीन। और इस तरह से आप किसी को गहराई से जान सकते हैं। फिलहाल वक्त गाने का है, शो इश्क बाजियां, मैं हूं इश्क वाली की।

0: ए भाई दर देख के चलो।
1: फिल्म मेरा नाम जोकर का ये गाना इशारा करता है कि सड़क नियम सिर्फ गाड़ी चलाने वालों के लिए नहीं है बल्कि पैदल चलने वालों के लिए भी है। इसीलिए राइट लेफ्ट राइट देखकर ही रोड पार करें, वो भी जीब्रा क्रॉसिंग से।
0: आगे भी नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी।
1: सड़क के किनारे हमेशा अपने सीधे हाथ की तरफ चलें, वो भी बिना फोन इस्तेमाल किए हुए, ताकि आपके परिवार को कभी इस फिल्म का दूसरा गाना ना गाना पड़े।
0: जाने कहां गए वो दिन।
2: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जनहित में जारी

ऐ काश कि हम होश में आने ना पाए। इसी गाने के साथ फिर से स्वागत है शो इश्क बाजियां, मैं हूं इश्क वाली गीत और सेगमेंट है दिल दियां गल्ला। बातें चल रही हैं कि कैसे अपने रिश्ते को गहराई से जाने। कहते हैं कि जब किसी से प्यार होता है तो उस पर आप पूरा अधिकार जमा सकते हैं, लेकिन अधिकार तो जमा रहे हैं आप, लेकिन इसके साथ साथ ये भी जान लीजिएगा कि अधिकार के चक्कर में कहीं आप उसकी आजादी तो नहीं छीन रहे। जिसे भी आप प्यार करते हैं उसे आजादी देना बहुत जरूरी है। अगर वो आपका है तो आप भले ही उसे कितनी आजादी दे दीजिए, वो हमेशा आपका ही रहेगा, हमेशा आपके पास ही लौटेगा। तो इसीलिए रिश्ते में ना आजादी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप उसकी आजादी छीन लेते हैं तो यकीनन उस रिश्ते का अंत हो ही जाता है एक दिन। और साथ ही साथ एक कम्युनिकेशन गैप होता है ना, उसको भी आप फिल कर सकते हैं और इस तरह से आप अपने पार्टनर को गहराई से जान सकते हैं, रिश्ते को गहराई से जान सकते हैं। और अपनी बातों को मैं विराम दूंगी क्योंकि समय सीमा समाप्त हो गई है और मैं ऐसे ही खास से टॉपिक के साथ आपसे मिलने वाली हूं। लेकिन अभी दीजिए इजाजत, सुनते रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM, कुछ हटके खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और प्यार बांटते रहिए।

0: साइबर ठगी से बचने के लिए अपनाएं कुछ सरल उपाय।
1: अपने बैंक या डिजिटल खातों के बारे में किसी अनजान व्यक्ति को जानकारी ना दें। किसी प्रकार के मैसेज या अनजान लिंक में क्लिक ना करें। रेडियो महारानी 89.6 द्वारा

यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये स्टेशन रेडियो महारानी है।

0: स्टार्स पर सेव वाटर सेव सिनेमैटिक वाइब। अगर पानी नहीं होता तो बॉलीवुड के कितने गाने अधूरे रह जाते। जैक और रोज आज भी टाइटैनिक घुमा रहे होते। वीरू किसकी टंकी पर चढ़ के मौसी को मनाता। और ये गाना कभी नहीं बन पाता। रेडियो महारानी 89.6 देता है पानी बचाने का सबसे स्ट्रॉन्ग बहाना। जल है तो एंटरटेनमेंट का कल है। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।
1: ओ करम खुदाया है, ओ करम खुदाया है।

0: मैं यमराज तुम्हें लेने आया हूँ।
1: ओ पाजी, तुसी भी हेलमेट पाया हो है?
0: ओए खोत्या, ये मुकुट है, पर तूने हेलमेट पहना होता तो मुझे यहाँ नहीं आना पड़ता।
2: हर साल 52,000 से भी ज्यादा लोग सिर्फ हेलमेट ना पहनने की वजह से अपनी जान गंवा देते हैं। इसीलिए इन हजारों में नहीं लाखों में एक बने नो हेलमेट तो नो टू व्हीलर सवारी। 89.6 FM रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: क्या आप जानते हैं हमारी किशोर दा को क्यों था पौधों से प्यार?
1: मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता।
0: और देवानंद को ब्लू और ब्लैक कपड़े पहनने से क्यों था इनकार?
2: अपना दिल तो आवारा।
0: जानिए ऐसे ही किस्से सुनहरे दौर की सपना के साथ। रात बाकी बात बाकी।

उम्र है जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है। जोरों से भागती दुनिया में बेहिसाब पाना और खोना है। बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है। थक गई हूँ भागते भागते खुद से, अब माँ की गोद में सर रख के सोना है। बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है। खेलते हैं लोग यहाँ सिर्फ दिल से, अब टूटा उनका ये खिलौना है। बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है। नापते हैं ये मुझे वक्त के हिसाब से, जो दिया वक्त तो आधा चौथाई पौना है। बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है।

बोरियत को याद दिला दे उसकी नानी। आप सुन रहे हैं फरीदाबाद का अपना रेडियो महारानी 89.6 FM। कुछ हटके

0: I hate water wasting रे, जाके टंकी बंद कर।
1: सावधान, पानी की टंकी भर गई है, कृपया मोटर बंद कीजिए।
2: रिड्यूस, रीयूज, रीसाइकिल, यही है वो RRR जिन्हें फॉलो करके हमारा शहर एनवायरनमेंट से ऑस्कर जीत सकता है। पर ये 3R आखिर है क्या? रेडियो महारानी आपको आसान भाषा में समझाता है। रिड्यूस यानी प्लास्टिक से बनी चीजों का कम से कम इस्तेमाल, रीयूज यानी जो दोबारा काम आ सके सिर्फ उसी प्लास्टिक का इस्तेमाल, रिसाइकिल यानी वेस्ट प्लास्टिक को फेंकने के लिए सिर्फ ब्लू डस्टबिन का इस्तेमाल।
3: FM 89.6 का रेजोल्यूशन यही है कि सिंगल यूज प्लास्टिक अब ऑप्शन में ही नहीं है।
4: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जनहित में जारी।

0: ए भाई दर देख के चलो।
1: फिल्म मेरा नाम जोकर का ये गाना इशारा करता है कि सड़क नियम सिर्फ गाड़ी चलाने वालों के लिए नहीं है बल्कि पैदल चलने वालों के लिए भी है। इसीलिए राइट लेफ्ट राइट देखकर ही रोड पार करें, वो भी जीब्रा क्रॉसिंग से।
0: आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी।
1: सड़क के किनारे हमेशा अपने सीधे हाथ की तरफ चलें, वो भी बिना फोन इस्तेमाल किए हुए, ताकि आपके परिवार को कभी इस फिल्म का दूसरा गाना ना गाना पड़े।
0: जाने कहां गए वो दिन।
2: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जनहित में जारी।
3: पुष्पा, आई हेट वाटर वेस्टिंग रे, जा जाके टंकी बंद कर।

0: सड़क सुरक्षा नियमों को अगर अपनाओगे तो खुद के साथ साथ दूसरों की भी जान बचाओगे, क्योंकि दुर्घटना की है तीन यार, नशा, नींद और रफ्तार।
1: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।
2: बोरियत को याद दिला दे उसकी नानी। आप सुन रहे हैं फरीदाबाद का अपना रेडियो महारानी
3: 89.6 FM
4: कुछ हटके।

0: मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा माँ।
1: अभी भी टाइम है बेटा जी, गाड़ी में फ्यूल और सड़क किनारे कूड़ा जलाना छोड़ दे।
2: A few moments later।
0: माँ, मुझे सब दिखाई दे रहा है।
1: बेटा जी, जितना जल्दी निकालोगे सॉल्यूशन, उतना ही कम होगा पॉल्यूशन। रेडियो महारानी द्वारा की गई ही इको फ्रेंडली घोषणा, ताकि इस प्लेनेट पर हम देख पाएं अपना ब्राइट फ्यूचर।

0: क्या आप जानते हैं हमारे किशोर दा को क्यों था पौधों से प्यार?
1: मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता।
0: और देवानंद को ब्लू और ब्लैक कपड़े पहनने से क्यों था इनकार?
2: मैं अपना दिल तो आवारा।
0: जानिए ऐसे ही किस्से सुनहरे दौर की सपना के साथ रात बाकी बात बाकी में।
2: बहुत भोला है बेचारा, न जाने किसे पे आएगा।
3: सदा सुरक्षित रहो, अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
4: जिंदगी के भी ना कुछ रूल्स होते हैं जिन्हें अगर फॉलो नहीं किया तो सीधे डिटेंशन। लेन डिसिप्लिन तो मेंटेन करना इज अ मस्ट। राइट का मतलब राइट, लेफ्ट का मतलब लेफ्ट। इतना भी रॉकेट साइंस नहीं है मेरी जान। बाइक पे दबंगगिरी करने से कूल तो बहुत लगते हैं, बट अगर यही दबंगगिरी तुम्हारी नेक्स्ट हॉस्पिटल ब्लॉक का रीजन बन गया ना, तो पूरा स्वैग टपरी का चाय बन जाएगा। और हाँ, हेलमेट हमेशा ऑन, सीट बेल्ट हमेशा टाइट, वरना मोए मोए मोमेंट तो गारंटीड है बाबू मोशाय। और अगर रील स्क्रॉल या सेल्फी लेने का ज्यादा ही मन कर रहा है तो साइड में रोक कर करो। याद रखो, रोड रूल्स फॉलो करोगे तो टेंशन फ्री और मस्त राइड गारंटीड है।

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: हाँ तो अर्ज किया है।
2: अर्ज
1: अभी करते हैं, सुनो
0: इरशाद।
1: स्पैम कॉल करके आजकल दिमाग खा जाते हैं।
0: वाह वाह वाह वाह,
1: कोई फर्जी रिश्तेदार तो कोई फर्जी ऑफिसर बनकर हमें डांट देते हैं।
0: तुम अभी इसी लायक।
1: चुप रहो, आगे सुनो। मैं कहता हूँ कि बैंक की डिटेल्स OTP सब दे दूंगा।
3: अच्छा, बस मेरी शायरी सुन लो।
0: फिर
1: ये सुनते ही पहली फुर्सत में वो फोन काट देते हैं।
0: अरे वाह, तुम्हारी शायरी का कुछ तो फायदा हुआ। अब तुम बोलते रहो, हम चलते हैं।
1: अरे,

बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है। जोरों से भागती दुनिया में बेहिसाब पाना और खोना है। बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है। थक गई हूँ भागते भागते खुद से, अब माँ की गोद में सर रख के सोना है। बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है। खेलते हैं लोग यहाँ सिर्फ दिल से, अब टूटा उनका ये खिलौना है। बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है। नापते हैं ये मुझे वक्त के हिसाब से, जो दिया वक्त तो आधा चौथाई पौना है। बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है।

0: मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा माँ।
1: अभी भी टाइम है बेटा जी, गाड़ी में फ्यूल और सड़क किनारे कूड़ा जलाना छोड़ दे।
2: A few moments later,
0: माँ, मुझे सब दिखाई दे रहा है।
1: बेटा जी, जितना जल्दी निकालोगे सॉल्यूशन, उतना ही कम होगा पॉल्यूशन। रेडियो महारानी द्वारा की गई ये इको फ्रेंडली घोषणा ताकि इस प्लेनेट पर हम देख पाए अपना ब्राइट फ्यूचर।
3: बोरियत को याद दिला दे उसकी नानी। आप सुन रहे हैं फरीदाबाद का अपना रेडियो महारानी 89.6 FM।

0: क्या आप जानते हैं हमारे किशोर दा को क्यों था पौधों से प्यार?
1: मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता।
0: और देवानंद को ब्लू और ब्लैक कपड़े पहनने से क्यों था इनकार?
2: मैं अपना दिल को आवारा।
0: जानिए ऐसे ही किस्से सुनहरे दौर की सपना के साथ, रात बाकी बात बाकी।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
1: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
2: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
3: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।
4: पुष्पा, आई हेट वाटर वेस्टिंग रे, जा जाके टंकी बंद कर।

0: पीछे तुम ही कहो ये कोई बात है।
1: मैं यमराज तुम्हें लेने आया हूँ।
2: ओ पाजी, तुसी भी हेलमेट पाया हुए है।
1: ओए खोत्या, ये मुकुट है, पर तूने हेलमेट पहना होता तो मुझे यहाँ नहीं आना पड़ता।
3: हर साल 52,000 से भी ज्यादा लोग सिर्फ हेलमेट ना पहनने की वजह से अपनी जान गंवा देते हैं। इसीलिए इन हजारों में नहीं लाखों में एक बने नो हेलमेट तो नो टू व्हीलर सवारी। 89.6 FM रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

वॉल्स पर सेव वाटर सेव सिनेमैटिक वाइब। अगर पानी नहीं होता तो बॉलीवुड के कितने गाने अधूरे रह जाते। जैक और रोज आज भी टाइटैनिक घुमा रहे होते। वीरू किसकी टंकी पर चढ़ के मौसी को मनाता। और ये गाना कभी नहीं बन पाता। रेडियो महारानी 89.6 देता है पानी बचाने का सबसे स्ट्रॉन्ग बहाना। जल है तो एंटरटेनमेंट का कल है। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: 89.6 FM.
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

0: जिंदगी का सफर कितना भी हसीन हो, एक गलती और सब खत्म।
1: ये सड़कें तुम्हारी कहानियाँ नहीं सुनती, इन्हें सिर्फ तुम्हारी समझदारी दिखती है। इसलिए हाई स्पीड में गाड़ी चलाने से पहले एक बार जरूर सोचे, आपको किसी न्यूज़पेपर के पेज की हाईलाइट बनना है या अपनी खुद की कहानी का राइटर।
2: आपकी सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके। रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
4: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
1: OTP शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
0: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: कबीर, ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं,
1: काम तो वही करेगा।
2: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
0: पर महंगा हेलमेट, थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
2: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
3: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
4: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, फोन की स्क्रीन भले ही छोटी है पर उसने जिंदगी के सबसे बड़े पल छुपा लिए हैं।

0: सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो सफर की कद्र करते हैं। कभी कभी एक छोटी सी लापरवाही पूरी कहानी बदल देती है। हेलमेट कोई बोझ नहीं, यह आपकी समझदारी का सबसे बड़ा सबूत है।
1: तो अगली बार सफर पर निकलने से पहले इस छोटी सी समझदारी को अपने सिर पर जरूर रखिए, क्योंकि आपकी एक सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी।
2: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: शाम जब तुम घर लौटते हो, माँ की नजरें दरवाजे पर टिकी रहती है। पापा के सवालों में सख्ती से ज्यादा फिक्र होती है और छोटे भाई की वो मुस्कान जो सिर्फ तुम्हें देखकर खिल उठती है। सोचो अगर कभी ये मुस्कान इंतजार में ही रह जाए।
1: सफर लंबा हो या छोटा, हेलमेट पहने, हाई स्पीड में गाड़ी ना चलाएं और अपनों की हंसी को बचाएं। हेलमेट सिर्फ आपकी सुरक्षा नहीं, अपनों की खुशियों की गारंटी है।
2: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, जिंदगी हर दिन एक नया सवाल पूछती है और हर बार तुम्हारा जवाब होना चाहिए मैं रेडी हूँ। हिम्मत रखो, हर दिन कुछ बढ़िया होने वाला है क्योंकि ये दुनिया तुम्हारी है, बस खुद पे यकीन रखो।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: वो खिड़की पर बैठी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका इंतजार इंतजार ही न रह जाए।
2: सफर पर निकलने से पहले बस एक छोटी सी चीज मत भूलिए, हेलमेट। आपकी एक सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बदल सकती है।

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, कभी किसी के आंसुओं का मजाक मत बनाओ।
2: जो दिल से लगे उसे कह दो हाय हाय।
1: थोड़ा समझो, थोड़ा सुनो, क्योंकि आपका एक प्यारा सा शब्द उनके लिए सब कुछ बदल सकता है। इसलिए रेडियो महारानी कहता है, दिल की सुनो, दिल से।

0: है शाम जब तुम घर लौटते हो, माँ की नजरें दरवाजे पर टिकी रहती है। पापा के सवालों में सख्ती से ज्यादा फिक्र होती है और छोटे भाई की वो मुस्कान जो सिर्फ तुम्हें देखकर खिल उठती है। सोचो अगर कभी ये मुस्कान इंतजार में ही रह जाए।
1: सफर लंबा हो या छोटा, हेलमेट पहने, हाई स्पीड में गाड़ी ना चलाएं और अपनों की हंसी को बचाएं। हेलमेट सिर्फ आपकी सुरक्षा नहीं, अपनों की खुशियों की गारंटी है।
2: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।
3: हरियाणवी गानों की मस्ती में झूमना सा है तो सुनो फरीदाबाद का अपना रेडियो महारानी 89.0।

0: कबीर, ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
1: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
0: पर महंगा हेलमेट, थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
1: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
2: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। क्या हम सब बदल गए हैं? इतना बदल गए हैं कि किसी की सांसें हमारी जिंदगी में कोई मायने ही नहीं रखती।
1: हमें तो बस किसी भी कीमत पर अपनी मंजिल तक पहुंचना है, पर क्या वो कीमत एम्बुलेंस में फंसी एक जान भी हो सकती है?
0: ऐसा मत कीजिए, क्योंकि आपके चंद पलों की देरी किसी की ठहरती जिंदगी में जान डाल सकती है। इसीलिए एम्बुलेंस का सायरन सुनकर हमें अपनी मंजिल से ज्यादा किसी की जिंदगी की कीमत समझनी चाहिए।

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, फोन की स्क्रीन भले ही छोटी है पर उसने जिंदगी के सबसे बड़े पल छुपा लिए हैं।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: वो खिड़की पर बैठी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका इंतजार इंतजार ही न रह जाए।
0: सफर पर निकलने से पहले बस एक छोटी सी चीज मत भूलिए, हेलमेट। आपकी एक सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बदल सकती है।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
1: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
2: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
3: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: दियारा, जिनके कंधों पर बचपन बीता, आज उन्हीं बूढ़े कंधों को अकेला मत छोड़ो, क्योंकि उनका साथ ही हमारा सुकून है।

0: जिंदगी का सफर कितना भी हसीन हो, एक गलती और सब खत्म।
1: ये सड़कें तुम्हारी कहानियाँ नहीं सुनती, इन्हें सिर्फ तुम्हारी समझदारी दिखती है। इसलिए हाई स्पीड में गाड़ी चलाने से पहले एक बार जरूर सोचे, आपको किसी न्यूज़पेपर के पेज की हाईलाइट बनना है या अपनी खुद की कहानी का राइटर।
2: आपकी सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। एक तेज हॉर्न की ट्रैफिक में सन्नाटा सा कर गई जब एम्बुलेंस के हॉर्न की आवाज कानों में पड़ गई। आज फिर एक जिंदगी इस ट्रैफिक में अपनी सांसों के लिए लड़ रही है जनाब। एम्बुलेंस को रास्ता देकर आप पूरा कर सकते हैं लाखों जिंदगियों के जीने का ख्वाब, क्योंकि एक छोटी सी मदद किसी की जिंदगी को बचा सकती है।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बने। रेडियो महारानी 89.6 एफएम द्वारा जनहित में जारी।
2: डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, गाना चला दो, गाना चला दो।

0: बड़ा मजा। जिवाले बाबू मेरा गाना चला दो, जिवाले बाबू मेरा गाना चला दो, जिवाले बाबू मेरा गाना चला दो, गाना चला दो, गाना चला दो।
1: अरे आजा बेबी आजा तेरा गाना बजा दूं, आजा बेबी आजा तेरा गाना बजा दूं, आजा बेबी आजा तेरा गाना बजा दूं, गाना बजा दूं, गाना बजा दूं, बजा दूं, आजा बेबी आजा, बजा दूं, आजा बेबी आजा, बजा दूं, गाना बजा दूं।
2: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
3: डियर आप, ज्यादा चिल्लाने से बात समझाई नहीं जाती, सिर्फ दिल दूर हो जाते हैं।
4: तो मेरी राय, उल्टी पुल्टी बातें,
3: इसलिए आज से ही आवाज़ धीमी और बात गहरी, फिर देखिए जिंदगी कितनी खूबसूरत लगती है।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही। यह होगी साइबर क्राइम से जान।
1: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
2: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: मंजिल सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो सफर की कद्र करते हैं। कभी कभी एक छोटी सी लापरवाही पूरी कहानी बदल देती है। हेलमेट कोई बोझ नहीं, यह आपकी समझदारी का सबसे बड़ा सबूत है।
1: तो अगली बार सफर पर निकलने से पहले इस छोटी सी समझदारी को अपने सिर पर जरूर रखिए, क्योंकि आपकी एक सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी।
2: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

दिल तेरा लेके ही तो लिख बेबी किसी से भी पूछ लौंडा टू मच बोली में थोड़ा रियान टच जितने भी रूमर सुने तूने अपनी सहेलियों से मेरे बारे में वो सारे सच बेबी मैं हूँ वो जिसके बारे में चेतावनी देती होगी तुझे तेरी माँ BAD शाह नाम बदल दियो मेरा बेबी जो ना कर रहा दी तेरी ना।

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, कभी किसी के आंसुओं का मजाक मत बनाओ।
2: जो दिल से लगे उसे कह दो हाय हाय।
1: थोड़ा समझो, थोड़ा सुनो, क्योंकि आपका एक प्यारा सा शब्द उनके लिए सब कुछ बदल सकता है। इसलिए रेडियो महारानी कहता है, दिल की सुनो, दिल से जी।

0: Life on Wheels, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। मैं हूं एम्बुलेंस, हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती है। कुछ को मिल जाती हैं सांसें यहां, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां आगे के लम्हे जीना चाहती हैं।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 एफएम द्वारा जनहित में जारी।
2: कबीर, ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है,
3: कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं,
2: काम तो वही करेगा।
3: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
2: पर महंगा हेलमेट, थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
3: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई, अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
4: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 एफएम, कुछ हटके।

0: शुरू हो जाओ।
1: हाँ तो शुरू होते हैं और अर्ज करते हैं।
0: अर्ज नहीं होता, अर्ज अर्ज।
1: शायरी पे ध्यान लगाओ।
0: इरशाद।
1: रोडवेज बस जैसा अपना हाल है यारों।
0: मेरा नहीं तुम्हारा ही होगा,
1: सबका ये। सब कुछ टूटा फूटा है फिर भी अपना रुतबा है यारों।
0: ये बात तो सही है।
1: और बस की याद आती है जब भी लाइफ में कुछ समझ नहीं पाता हूँ।
0: कैसे कैसे?
1: कंडक्टर बोलता है आगे बढ़ो आगे बढ़ो, तो मैं मोटिवेट हो जाता।
0: अरे यार वो तुम्हें कह रहा था कि मुंह उठाकर बस से उतरो और आगे बढ़ो, अब तुम बोलते रहो मैं तो चली मेरी बस आ गई।
1: सुनो सुनो, हेलो

0: अरे अरे रुक जाओ जरा, कैलेंडर चेक किया क्या आज? क्योंकि आज की तारीख सिर्फ डेट नहीं, फुल ऑन फिल्मी अपडेट है बॉस। कभी इसी दिन किसी हीरो ने एंट्री मारी थी ऐसे कि पूरा थिएटर सीटी मार उठा था।
1: मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिश।
0: और कभी किसी ने प्यार का ऐसा सीन दिया कि लोगों ने बारिश का वेट ही करना शुरू कर दिया।
2: प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है।
0: और कभी किसी ने ऐसा स्टाइल मारा कि आज तक वो उस टाइम का ट्रेंड बन गया।
2: आवारा हूँ, आवारा हूँ।
0: समझे या और समझाऊं? ये तारीख सिंपल नहीं है, ये तो फुल ऑन फिल्मी गोल्ड माइन है। तो सुनने के लिए सिनेमा का स्वैग, सुनना न भूले सिनेमा का कैलेंडर विद आरजे मोनिक, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 एफएम, कुछ हटके।
3: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये स्टेशन रेडियो महारानी है।

0: 89.6 FM।
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही। यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
1: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
2: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: ए भाई डर देख के चलो।
1: फिल्म मेरा नाम जोकर का ये गाना इशारा करता है कि सड़क नियम सिर्फ गाड़ी चलाने वालों के लिए नहीं है बल्कि पैदल चलने वालों के लिए भी है। इसीलिए राइट लेफ्ट राइट देखकर ही रोड पार करें, वो भी जीब्रा क्रॉसिंग से।
0: आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी।
1: सड़क के किनारे हमेशा अपने सीधे हाथ की तरफ चलें, वो भी बिना फोन इस्तेमाल किए हुए, ताकि आपके परिवार को कभी इस फिल्म का दूसरा गाना न गाना पड़े।
0: जाने कहां गए वो दिन।
2: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जनहित में जारी। रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
3: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
4: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
5: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।
6: झूठी खाई।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। मैं हूं एम्बुलेंस, हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती है। कुछ को मिल जाती हैं सांसें यहां, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां आगे के लम्हे जीना चाहती हैं।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बने। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी। मोरने

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही। यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
1: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
2: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

हर वीक, फिर भी जहाँ से गुजरूं हर बंदी के मुंह से निकले चीख। हाथ पकड़ कर दिल में लगा, जो कहती है करके दिखा, सुनने में आया है तुम मरती है।

0: आप हमसे हमारा आईलाइनर मांग लेते, नेल पेंट मांग लेते, काजल या मस्कारा मांग लेते, यहाँ तक कि प्लेट में पड़े लास्ट दो मोमोज भी मांग लेते। अरे हम आपको खुशी खुशी दे देते, पर आपने तो हमारे घर में बची लास्ट पानी की बोतल ही मांग ली।
1: अब सही टाइमर करो शुरू और पानी वेस्ट होने से बचा लो गुरु।

0: झुमका लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। मैं हूं एम्बुलेंस, हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती है। कुछ को मिल जाती हैं सांसें यहां, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां आगे के लम्हे जीना चाहती हैं।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: Oh my god! Special offer! Get XYZ brand clothes worth ₹5,999 and just ₹599! Click on the link now.
1: ठहरो जरा, रुको जरा, ऑनलाइन खरीदारी में रखो थोड़ी समझदारी, सुरक्षित वेबसाइट से करो अपनी खरीदारी, फर्जी वेबसाइट से बचो, साइबर अपराधियों के जाल से बचो, वरना होगी बहुत परेशानी।
2: रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: कबीर, ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
1: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
0: पर महंगा हेलमेट थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
1: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं, बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
2: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। मैं हूं एम्बुलेंस, हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती है। कुछ को मिल जाती हैं सांसें यहां, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां आगे के लम्हे जीना चाहती हैं।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही। यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
1: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
2: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: हर शाम जब तुम घर लौटते हो, माँ की नजरें दरवाजे पर टिकी रहती है। पापा के सवालों में सख्ती से ज्यादा फिक्र होती है, और छोटे भाई की वो मुस्कान जो सिर्फ तुम्हें देखकर खिल उठती है। सोचो अगर कभी ये मुस्कान इंतजार में ही रह जाए।
1: सफर लंबा हो या छोटा, हेलमेट पहने, हाई स्पीड में गाड़ी ना चलाएं और अपनों की हंसी को बचाएं। हेलमेट सिर्फ आपकी सुरक्षा नहीं, अपनों की खुशियों की गारंटी है।
2: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। मैं हूं एम्बुलेंस, हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती है। कुछ को मिल जाती हैं सांसें यहां, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां आगे के लम्हे जीना चाहती हैं।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही। यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
1: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
2: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। मैं हूं एम्बुलेंस, हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती है। कुछ को मिल जाती हैं सांसें यहां, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां आगे के लम्हे जीना चाहती हैं।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: अरे अरे रुक जाओ जरा, कैलेंडर चेक किया क्या आज? क्योंकि आज की तारीख सिर्फ डेट नहीं, फुल ऑन फिल्मी अपडेट है बॉस। कभी इसी दिन किसी हीरो ने एंट्री मारी थी ऐसे कि पूरा थिएटर सीटी मार उठा था।
1: मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिश।
0: और कभी किसी ने प्यार का ऐसा सीन दिया कि लोगों ने बारिश का वेट ही करना शुरू कर दिया।
2: प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है।
0: और कभी किसी ने ऐसा स्टाइल मारा कि आज तक वो उस टाइम का ट्रेंड बन गया।
2: आवारा हूँ, आवारा हूँ।
0: समझे या और समझाऊं? ये तारीख सिंपल नहीं है, ये तो फुल ऑन फिल्मी गोल्ड माइन है। तो सुनने के लिए सिनेमा का स्वैग, सुनना न भूले सिनेमा का कैलेंडर विद आरजे मोनिक, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 एफएम, कुछ हटके।
3: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये स्टेशन रेडियो महारानी है।

0: 89.6 FM
1: कुछ छक्के
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

0: ज्यादा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: वो खिड़की पर बैठी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका इंतजार इंतजार ही न रह जाए।
0: सफर पर निकलने से पहले बस एक छोटी सी चीज मत भूलिए, हेलमेट। आपकी एक सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बदल सकती है।

0: अर्ज किया है।
1: ओहो, अर्ज होता है अर्ज।
0: कर रहे हैं आप, सुनो तो
1: इरशाद।
0: स्कैम कॉल करने वालों का फोन हमारे नंबर पर आ गया।
2: तुम्हारे नंबर पे?
0: हाँ जी।
2: अच्छा,
0: और उन्होंने पूछा क्या?
1: क्या पूछा?
0: हाँ, पैसे दे दो वरना कार ठोकने के जुर्म में आपका बेटा जेल जाएगा, उन्होंने ये बताया।

0: हमने कहा भाई सिंगल हूँ मैं, ना तो मेरा कोई बेटा है ना मेरी कोई कार है।
1: अच्छा,
0: हमारी लाइफ में खटारा जी साइकिल है, वो भी बेकार है।
1: बिल्कुल तुम्हारी तरह। ओ पागल, तुम्हें कहना चाहिए था वो भी उधार ली हुई है।
0: नहीं नहीं, रेंट पे है, ईएमआई पे।
1: अब तुम बोलते रहो, हम सबको बता कर आते हैं कि स्कैम कॉल्स को वैसे ही इग्नोर करें जैसे तुम्हारी क्रश तुम्हारी कॉल को करती है।
0: इज्जत का फालूदा कर दिया यार।
1: बाय।
0: सुनो तो, कहाँ चली?

0: कोई हमसे।
1: कबीर, ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
2: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
1: पर महंगा हेलमेट, थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
2: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
3: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए। सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: अरे भाई इतनी तेज रफ्तार में कहाँ जा रहा है?
1: भाई मैं तो लंबी रेस का घोड़ा हूँ, रफ्तार से ही जाऊँगा।
0: अरे भाई रुक तो जा, धीरे चलेगा तो दूर तक जाएगा, वरना हॉस्पिटल के बिल ही भरता रह जाएगा।
2: सड़क पर चलते वक्त स्पीड का रखें खास ध्यान, किसी भी लापरवाही से मत बनिए हॉस्पिटल के मेहमान, क्योंकि आपकी सुरक्षा है आपकी जिम्मेदारी। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं।
1: व्हील्स ऑफ लाइफ, व्हील्स ऑफ होप, एम्बुलेंस जो उम्मीद की किरण लाती है और जिंदगी को बचाती है। इसीलिए जब भी सड़क पर चलती हुई एम्बुलेंस को देखें, उसे सबसे पहले रास्ता दें।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही। यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
1: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
2: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: अरे ओ सांबा, कौन सा रेडियो चैनल सुनता है रे?
1: सरदार रेडियो महारानी 89.6 FM।
2: अच्छा है।

श्रीमद् भगवद गीता से हमें सीखने को मिलता है कि परिवर्तन निश्चित है और यही संसार का नियम है, यानी कि आपका जीवन कभी भी बदल सकता है। और जैसे सर्दी के बाद गर्मी और गर्मी के बाद वर्षा ऋतु, ऐसे ही चलता रहता है। इस प्रकार संसार में परिवर्तन निश्चित है और यही संसार का नियम है।

0: पहले तो भवसिंधु पार उतर जाता है। रेडियो महारानी पर आप सुन रहे हैं स्पिरिचुअल लीडर श्री हितामृत जी के विचार।
1: आपको अपने साधक जीवन का एक छोटा सा अनुभव बांट रहा हूँ। श्री रामसुखदास जी की एक पुस्तक पढ़ रहा था किसी दिन मैं, और श्री स्वामी जी ने अपने जीवन का एक अनुभव उसमें कहा था कि हमारे जीवन में, हमारे साधन काल में एक क्षण ऐसा आया जब हमने अपने मन में ये संकल्प किया कि अब हम कोई संकल्प नहीं करेंगे। मन करेगा तो करेगा, पर हम उसके संग नहीं चल देंगे, हम उसके साथ नहीं चलेंगे, चाहे वो संकल्प पारमार्थिक संकल्प ही क्यों ना हो। यहाँ के रसिकों ने कहा है, परमार्थ व्यवहार बनो कि ना बनो, अंजन है मम नयन सदा भगवत सन। स्वामी जी ने कहा चाहे वो पारमार्थिक संकल्प भी क्यों ना हो, हम कोई संकल्प नहीं करेंगे, बस अपने अपने श्री हरि की इच्छा में हमने अपनी सब इच्छा मिला दी, अब राजी हैं हम उसी में और जिसमें तेरी रजा है। और मैं कहता हूँ भक्ति की सबसे सरलतम व्याख्या यही है कि प्रभु की इच्छा में अपनी इच्छा मिला दी जाए। हमारे महाप्रभु जी तो रसगान का आरंभ यहीं से करते हैं, जोई जोई प्यारो करें

प्यारे, जोई जोई प्यारो करे सोई मोय भावे। ये भक्ति की सरलतम व्याख्या है। और स्वामी जी ने आगे लिखा कि भाई अब हमें तत्व प्राप्ति के अतिरिक्त कुछ और नहीं करना है। और जाने उस एक पंक्ति में कैसी शक्ति थी, कैसी ऊर्जा थी कि वो शब्द मेरे भीतर गए, उन शब्दों ने समय आने पर अपना प्रभाव दिखाया। तो भक्ति मुझे लगता है यही है भाई, इसी को समर्पण कहते हैं। भक्ति का प्राण समर्पण है। और यही समर्पण जब अपने मन की कोई इच्छा ना रहे, और मन इच्छा करे तो करने दीजिए, आप मन के पीछे मत चलिए।

अमृत मोह सिंधु की धारा, काढ़ दया कर कर्म ही पारा। रोगी वैद्य से कह रहा है कि मुझ पर कृपा करो और मैं डूबता जा रहा हूँ इस मोह सिंधु की धारा में, किसी प्रकार मुझे पार करो। हों अति दीन महा दुख पावत, लोग कुटुंब को मुंह ना लावत। क्या आवश्यक है जीवन में अपनी ये झांकी देखना, क्या आवश्यक है कि हम अपनी ऐसी दुर्दशा जीवन में देखें। ये जो समय है ना आपके पास, ये जो जीवन है आपके पास, यही आपकी निधि है, यही आपकी संपत्ति है। कबीर जी ने तो एक बड़ा विस्तृत प्रसंग कहा है, मैं प्रयास करूंगा कल लेकर आऊं कबीर जी की वाणी का वो प्रसंग। वो कहते हैं कि भाई कर सको तो नित्य करो, नित्य नहीं करो तो सप्ताह में करो, नहीं तो एक मास में, नहीं तो एक वर्ष में। इस प्रकार उन्होंने बड़ा सुंदर रूपक दिया है जीव को प्रबोध देने के लिए। जो समय है ना, यही आपकी संपत्ति है, इसका सदुपयोग करिए। महीना में 30 दिन होते हैं ना, तो 3 दिन जाकर समझिए धाम में रहना है। लेकिन धाम में कैसे रहना है, साधक की भांति रहना है। श्री डोंगरे जी महाराज ये बात कहते थे कि तीर्थ का प्रसाद तभी मिलता है, तीर्थ सेवन का फल लाभ तभी है जब आप तप पूर्वक तीर्थ में रहें। और यहां की बात करूं तो मैं तो आपको सदा कहता हूं कि भाई आपको, मुझे तो प्रियालाल ने अपने घर में रखा है। ये राधा मोहन का निज मंदिर है ये वृंदावन धाम। यहां तो एक ही विधि है बसने की कि बस के वृंदा विपिन में इतनो बड़ो सयान, जुगल चरण के भजन बिन निमिष न दीजे जान। आप कहीं भी रहते हो, कितने भी काल के लिए आप वृंदावन आते हो, पर यहां पर उपासक बनकर रहिए, यहां पर साधक बनकर रहिए। भजन रसमयी विपिन धर, समझ बसे जो कोए, प्रेम बीज तिही खेत ते तब ही अंकुर होए। और समय रहते चेत जाइए, सबसे अमूल्य निधि, सबसे अमूल्य संपत्ति आपका जीवन है। और जीवन क्या है, जन्म से मृत्यु के बीच के समय को ही जीवन कहते हैं। ये समय आपकी संपत्ति है, इसका सदुपयोग करिए। इसका कुछ हिस्सा अवश्य भगवत भजन में लगाइए, इसका कुछ हिस्सा अवश्य आत्मचिंतन में लगाइए। नहीं तो भाई यही झांकी है कि हों अति दीन महा दुख पावत और लोग कुटुंब को न मुंह लावत। बड़े बड़े घरों में देखा है भाई मैंने कि जो घर के वयोवृद्ध जन होते हैं वो घर के एक कोने में पड़े रहते हैं, कोई उनके निकट भी नहीं जाना चाहता। उस वृद्ध व्यक्ति को और किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है, भोजन वो अब अधिक कर नहीं सकता, वस्त्र आभूषण का कोई सुख रहा नहीं। उस वृद्ध को तो केवल इतना चाहिए कि कोई दो घड़ी उसके उसके पास बैठकर प्रेम से बात कर ले, और वो दो घड़ी प्रेम से बात करने वाला कोई नहीं होता। और जीव अपनी दुर्दशा का विचार करके रोता है, पर अब पछताए हो तो क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, जब रसना थकी न बोल्यो जाई, जब ऐसी स्थिति आए तब इसका विचार करने का क्या लाभ है। मैं भाई बल देकर एक बात कहा करता हूं, सही निर्णय तभी सही है जब वो सही समय पर लिया जाए। अगर समय चूका तो कितना भी सही निर्णय क्यों ना हो, भजन करने से ज्यादा सही निर्णय कोई नहीं है। लेकिन समय चूक जाने पर यदि आप भजन करना आरंभ करते हैं तो उसका वो लाभ नहीं होता जो होना चाहिए। और कोई कहे कि भाई आप संत लोग कहते हैं कि अंत समय भगवान नाम का स्मरण करने से गति हो जाती है, अरे गति तो हो जाती है, गति तो हो जाती है। अरे ये जीवन मिला इसका सुख तो पाते, इसका आनंद तो लेते। ये जीवन का एक एक दिन सुख स्वरूप हो जाता, जीवन का एक एक क्षण उत्सव स्वरूप हो जाता यदि समय रहते चेत जाते, समय रहते गुरु के चरणों से लगकर और भगवत भजन करना आरंभ कर देते। नहीं तो भाई गलितम मुंडम, शंकराचार्य कहते हैं ना, अरे मूड मती, जब समय चला जाएगा मुख में दांत नहीं रहेंगे, चेहरे पर झुर्रियां पड़ जाएंगी, तेरा कोई अपना तेरे निकट नहीं आएगा। क्यों उस समय की, क्यों उस अपनी दुर्दशा की प्रतीक्षा करता है।

और फिर कहते हैं मेरी बात सुहात न काहू ताते उपजत है उर्दाहू। अब मेरी बात भी किसी को नहीं सुहाती और अपनी ये दुर्दशा देखकर मेरा हृदय और जलता है, ताते उपजत है उर दाहू। और ऐसे भयंकर दुख की स्थिति में भजन होता है? सुख में प्रभु भूल जाते हैं, दुख में भजन होता नहीं। दुख में